एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक्षमत 1948 के आश्विन मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 7 अक्टूबर 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और ईएफटीए के बीच TEPA पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
1: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें रोगी और स्वस्थ पशुओं के पहचान की। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, उत्पादन की दृष्टि से पशु स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। एक स्वस्थ पशु से ही अच्छे और स्वस्थ बच्चे, उनके बछड़ा बछिया और अधिक दूध उत्पादन की आशा की जा सकती है, जिससे पशुपालक को अधिक से अधिक संख्या में लाभ प्राप्त हो। एक पशुपालक के लिए स्वस्थ पशु लाभकारी होता है। पशु के बीमार होने के कारणों में गलत ढंग से पशु का पालन पोषण करना, पशु प्रबंध में ध्यान ना देना, पशु पोषण की कमी जैसे असंतुलित आहार, वातावरण, मौसम का बदलना, दूषित पानी व्यवस्था, पेट में कीड़ों यानी कृमि का होना, जीवाणुओं विषाणुओं और कीटाणुओं का संक्रमण होना प्रमुख है। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, अब हम रोगी और स्वस्थ पशुओं के पहचान की बातें करते हैं। स्वस्थ पशु हमेशा सजग और सतर्क रहता है, रोगी पशु उतना स्वस्थ नहीं रहता और सुस्त रहता है। स्वस्थ पशुओं की चमड़ी चमकीली होती है, रोगी पशु इतना सतर्क नहीं होता और पशु के पीठ छूने से चमड़ी थरथराती है, जबकि रोगी पशु में कोई चेतना नहीं होती। स्वस्थ पशु सीधी तरह उठता बैठता है, जबकि रोगी पशुओं को उठने बैठने में कठिनाई होती है। किसान भाइयों, स्वस्थ पशुओं की आंखें चमकीली होंगी और साफ होंगी, जबकि रोगी पशु की आंख में कीचड़ होता है। स्वस्थ पशुओं की सांसें सामान्य गति से चलती हैं, जबकि रोगी पशुओं की सांसें असामान्य रहती हैं। स्वस्थ पशु चारा सामान्य रूप से खाते हैं, जबकि रोगी पशु चारा कम या बिल्कुल ही नहीं खाते। स्वस्थ पशु जुगाली की क्रिया चबा चबा कर करते हैं और रोगी पशु जुगाली कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं। ग्रामीण भाइयों, स्वस्थ पशु पानी सदैव की भांति पीते हैं, बीमार पशु पानी कम अथवा नहीं पीते हैं। इसके साथ ही नाड़ी की गति सामान्य होती है, रोगी पशु में नाड़ी की गति मंद या तेज चलती है। स्वस्थ पशु अपने शरीर पर मक्खियां नहीं बैठने देता, जबकि शरीर पर मक्खियां बैठने पर पशु ध्यान नहीं देता है। ग्रामीण भाइयों, रोगी पशु की चिकित्सा में उनकी उचित देखभाल और रखरखाव का विशेष महत्व होता है। बिना उचित रखरखाव और देखभाल के औषधि भी कारगर नहीं होती है। पशु के सही प्रकार से रखरखाव और पौष्टिक चारा देने से उनमें रोग रोधक क्षमता का विकास होता है और पशु स्वस्थ रहता है। पशुपालकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, सफाई और विश्राम व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दें। पशु के रहने के स्थान, बिछावन, स्वच्छ हवा और गंदे पानी के निकासी और सूर्य के प्रकाश की अच्छी व्यवस्था रखें। बीमार पशु को पूरा विश्राम दें और उसके शरीर पर खरहरा करें, जिससे गंदगी निकल सके। समुचित आहार, चारा और दाना की व्यवस्था रखें। पेट खराब होने पर पतला आहार दें। आहार का तापक्रम भी पशु के तापमान से मिलता जुलता हो। किसान भाइयों, रोगी पशु की देखरेख के लिए उसे सबसे पहले स्वस्थ पशुओं से अलग कर स्वच्छ और हवादार स्थान पर रखना चाहिए। शुद्ध और ताजी हवा के लिए खिड़की और रोशनदान खुला रखना चाहिए। रोगी पशु को अधिक गर्मी और अधिक सर्दी से बचाया जाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पशु के पीने के लिए ताजे और शुद्ध पानी का प्रबंध करना चाहिए। किसान भाइयों, पशुशाला में पानी की उचित निकास व्यवस्था की जानी चाहिए। पशु के बिछावन पर्याप्त मोटा, स्वच्छ और मुलायम होना चाहिए। पशु को बांधने की जगह पर पर्याप्त सफाई का ध्यान दें और मक्खी मच्छर से बचाव के लिए आवश्यक कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहना चाहिए। रोगी पशु को डराना अथवा मारना नहीं चाहिए और पशु को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन चारा नहीं खिलाया जाना चाहिए। पशु को हल्का पौष्टिक और पाचक आहार दिया जाना चाहिए। बरसीम, जई, दूब, घास और हरे चारे तथा जौ का दाना ठीक होता है। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें रोगी और स्वस्थ पशुओं के पहचान और देखभाल की। इसके साथ ही हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें में रोगी एवं स्वस्थ पशुओं की पहचान, प्रतिमा वर्मा से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
2: एपिसोड नंबर 290 290।

लंका दहन करके पवन सुत हनुमान सीता जी का समाचार लेकर समुद्र के इस पार आ चुके हैं। प्रभु से निवेदन करते हैं, हे करुणा निधि, अशोक वाटिका में सीता माता का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, अतः शीघ्र ही चलकर दुष्टों का नाश करके उन्हें ले आइए। जनक नंदिनी के क्लेश का वर्णन सुनकर श्री राम की आंखों में अश्रु उमड़ आए। बोले, मन वचन और तन से जिसे केवल मेरा ही आसरा है, उस पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। हे पुत्र, तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला कोई भी देव, मनुष्य अथवा अन्य तनधारी नहीं है। मैं तुमसे कभी उरी नहीं हो सकता। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हनुमान उनके चरणों में आ गिरते हैं।

शिष्टाचार जीवन का दर्पण है, जिससे हमारे व्यक्तित्व का स्वभाव दिखाई देता है। शिष्टाचार के माध्यम से ही मनुष्य का प्रथम परिचय समाज को होता है। अच्छा या बुरा दूसरों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यह हमारे उस व्यवहार पर निर्भर करता है जो हम दूसरों से करते हैं। शिष्ट व्यवहार का समाज पर अच्छा प्रभाव होता है। दूसरों की सद्भावना, आत्मीयता और सहभागिता की प्राप्ति होती है, साथ ही समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार दूसरों में घृणा द्वेष पैदा कर देता है। अशिष्ट व्यक्ति भक्ति को शायद ही कोई आत्मीय सहयोगी मिलता हो। रिपीट, अशिष्ट व्यक्ति को शायद ही कोई आत्मीय सहयोगी मिलता हो। अशिष्टता से अपने भी पराये बन जाते हैं, सहयोगी भी पीछा छुड़ाने लगते हैं, यहाँ तक कि दूसरे लोग व्यक्तित्व के विकास को अवरुद्ध कर देते हैं, साथ ही हमें समाज में अकेला छोड़ देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य में कुछ विशेषताएं अर्जित की जा सकती हैं जो जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए बड़ी उपयोगी और आवश्यक है। शिष्टाचार और सद्व्यवहार से विरोधियों को भी अपना बनाया जा सकता है। यह वह अमृत है जिससे कटुता और शत्रुता मिट जाती है। शिष्टाचार व्यवहार की वह रीति नीति है जिसमें व्यक्ति और समाज ही आंतरिक सभ्यता और संस्कृति के दर्शन होते हैं। परस्पर बातचीत, संबोधन से लेकर दूसरों की सेवा, त्याग, आदर, भावनाएं, ये सब शिष्टाचार के ही मापदंड हैं। जिस पर सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है वही शिष्टाचार है। एक दूसरे के प्रति सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग शिष्टाचार के मूलाधार हैं। इन मूल भावनाओं से प्रेरित होकर दूसरों के प्रति नम्र, विनयशील, आदरपूर्ण, उदार आचरण ही शिष्टाचार होता है। शिष्टाचार का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, जितना हमारे जीवन का व्यवहार है उससे कहीं ज्यादा। समाज में जहां तहां हमारा दूसरे व्यक्ति से संपर्क होता है वहीं शिष्टाचार की आवश्यकता पड़ती है। घर में परिवार के छोटे से लेकर बड़े तक की आवश्यकता पड़ती है। सभी सदस्यों में शिष्टाचार होना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन, कार्य, व्यापार, मिलना जुलना, सभी में शिष्ट व्यवहार की आवश्यकता होती है। शिष्ट व्यवहार, सदाचार, ये शिष्टाचार के ही अंग हैं। शिष्टाचारी मन, वचन, कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाते। वह दुर्वचन नहीं बोलते हैं, ना ही किसी को दुख देते हैं, ना ही उसका बुरा चाहते हैं। किसी के दिल को ठेस पहुंचे ऐसी वाणी वो नहीं बोलते हैं और ना ही ऐसा कर्म करते हैं। विनय, मधुरता, इस तरह अभिमान की शिष्टाचार में गुंजाइश नहीं होती है। नम्रता, विनयशीलता, सद्गुण शिष्टाचार के आधार हैं। इतना ही नहीं, शिष्टाचार को संपदा, समृद्धि बढ़ाने के साथ ही उसकी विभिन्नता और नम्रता, विनयशीलता भी बढ़ती जाती है। जिस तरह फूलों के बोझ से वृक्ष नीचे झुक जाते हैं, उसी तरह ऐसे व्यक्तियों की लौलिक संपदाएं ऐश्वर्य के बढ़ने पर नम्रता और विनयशीलता भी बढ़ जाती है। चिंतन के इन क्षणों में हमें यह सोचना आवश्यक है कि हमारे किसी भी तरह के व्यवहार से किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी का दिल ना दुखे। हम अपने अच्छे आचरण से हम अपना काम संवारते रहें, दूसरों को संवारते रहें, दूसरों को खुशी प्रदान करते रहें।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है, FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन सुरेश वाडकरों कविता कृष्णकूट मूर्ति की आवाज़ में आराधना। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता मिर्गी, कारण लक्षण एवं सावधानियाँ। भेंटवार्ता कारण डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, और इनसे बातचीत करेंगे शर्मिला वर्मा।

0: बताओ। मैं हूँ शर्मिला, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित है हमारा यह कार्यक्रम। दोस्तों, यदि चलते चलते कोई गिर पड़े, बेहोश हो जाए, विचित्र तरीके से कांपने लगे, उसके हाथ पैर अकड़ जाएं, तो हम घबरा से जाते हैं कि अब क्या करें। मेडिकल साइंस इसे मिर्गी के नाम से जानता है। लोग कई बार लोकलाज के भय से इस बीमारी को छिपा भी लेते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ लोग इलाज ही नहीं करवाते, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसलिए आज हम इसी विषय पर बातें करेंगे, यानी मिर्गी लक्षण, कारण एवं बचाव पर। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सर। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: सर, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि मिर्गी क्या है।
1: मिर्गी देखिए कोई बीमारी नहीं, बल्कि बीमारी का लक्षण है
0: जी।
1: मिर्गी किसी भी बीमारी में, बहुत सी बीमारी में उसका लक्षण मिर्गी के रूप में परिलक्षित होता है
0: जी।
1: तो हम लोग को समझना चाहिए कि आखिर मिर्गी किसको कहेंगे
0: जी। सर,
1: तो दो तीन फैक्टर मिर्गी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा मूवमेंट जो उस आदमी के बस में ना हो, इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट।
0: अच्छा।
1: एपिसोडिक हो, बार बार हो और रोके न रुके। ये आदमी बेहोश हो भी सकता है या होश में भी रह सकता है
0: जी।
1: तो एपिसोडिक, पैरोक्सिज्मल, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एपिलेप्सी
0: जी। सर, मिर्गी के दौरे पड़ने की वजह क्या है?
1: हमारा शरीर जो है सो ब्रेन से कंट्रोल होता है
0: जी।
1: हाथ कैसे चलेगा, मुंह कैसे चलेगा, सबका सिग्नल हमारा ब्रेन देता है, उसके बाद ही इसका मूवमेंट हो पाता है
0: जी।
1: पैरालिसिस वाले व्यक्ति को आप देखते होंगे कि ब्रेन तो चाह रहा है कि मेरा हाथ चले, मेरा पैर चले, लेकिन नहीं चलता है
0: जी।
1: तो ब्रेन से लेकर के शरीर के आखिरी अंग तक, हाथ पैर तक, जो अगर कोई कहीं कमी आ जाए, उसका ट्रांसमिशन ना हो पाए, तो इसको है सो लकवा बोलेंगे
0: जी।
1: लेकिन अगर ब्रेन से ही गलत सिग्नल अपने आप बिना उसकी इच्छा के उत्पन्न होने लगे तो उसको एपिलेप्सी बोलेंगे।
0: अच्छा। सर, क्या यह जेनेटिक बीमारी है और अगर समय पर इसका इलाज न हो तो घातक भी सिद्ध हो सकता है?
1: कुछ ही एपिलेप्सी जेनेटिक होता है
0: जी।
1: अधिकतर एपिलेप्सी का इलाज है और उसको इलाज से सफलतापूर्वक उसका है सो इलाज करके उसको ठीक किया जाता है। जनरली एपिलेप्सी बच्चों की उम्र में ही शुरू होता है। बड़ों में एपिलेप्सी होने का अलग कारण हो सकता है
0: जी।
1: दिमाग में चोट लग जाना या थक्का जम जाना या गांठ पड़ जाना, टीबी का गांठ हो सकता है, कैंसर का गांठ हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तो या तो उस गांठ को हम दवा से ठीक करेंगे या नहीं तो उसको ऑपरेशन से ठीक करेंगे
0: जी।
1: लेकिन ठीक तो करेंगे ही करेंगे
0: जी।
1: इसलिए ये पूरी तरह से 99% केसेज में इलाज वाली बीमारी है। इसका इलाज पॉसिबल है और डिफरेंट तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। पहले उसको पहचान के, उसका कारण जान के, उस कारण का इलाज करने से उसका इलाज होगा
0: जी।
1: तो इसमें डरने की बात नहीं है, इसको सामने आने की बात है। इसमें कोई लोक लाज की बात नहीं है, कोई भगवान का दिया हुआ श्राप नहीं है
0: जी। कोई
1: सभी बीमारियों की तरह एक बीमारी है, लेकिन सौभाग्य से ऐसी बीमारी है जो ठीक हो जाता है
0: जी। श्रोताओं, जैसा कि सर ने अभी बताया कि यह क्योरेबल डिजीज है, यानी कि इसका इलाज संभव है, तो आप इस बीमारी को छिपाए नहीं, लोकलाज या किसी भी जादू टोने जैसी बातों में बिल्कुल ना आए, और जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे इसका अपने घर परिवार में या खुद में, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सर, हम राह चलते होते हैं और अचानक हमारे सामने कोई व्यक्ति गिर जाता है, लड़खड़ा के गिर जाता है, तो कैसे हम जाने कि हम मिर्गी का ही दौरा है? और मिर्गी का दौरा अगर किसी व्यक्ति को पड़ गया तो तत्काल हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग जूते सुंघाने जैसे कार्य करते हैं, तो कितना उचित है
1: ये? पूर्णतः अनुचित है
0: जी।
1: जूता सुंघाना, मुंह में चम्मच डाल देना
0: जी, सर कुछ लोग चम्मच
1: या और किसी इसी तरह का कुछ जो इमेच्योर एक्टिविटी करना मिर्गी के पेशेंट के लिए इस एक्टिविटी के चलते घातक हो सकता है
0: जी।
1: मिर्गी से अपने आप घातक नहीं हो सकता है। तो किसी को अगर मिर्गी का दौरा पड़ा है
0: जी,
1: तो सबसे पहला काम हमको ये करना चाहिए कि उसको सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। रोड पर गिर गया तो किनारे कीजिए, कोई गाड़ी मोटर से धक्का न लग जाए। कुआं के पास गिर गया तो अलग कीजिए, कुआं से नीचे के अंदर न चला जाए। छत पर गिर गया, बस में बैठा हुआ है कहीं पे, वहां पे अगर मुर्गी का दौरा पड़ गया है तो उसको गिरने से बचाइए। 2-3 मिनट के अंदर खुद ब खुद वो होश में उसको आना है
0: जी।
1: ये ऐसा दौरा 2-3 मिनट से ज्यादा जनरली नहीं चलता है। और इस बीच अगर आप उसको जूता सुहाते हैं, मुंह में चम्मच डालते हैं और या भी और कुछ भी काम करते हैं, तो आप जो 2-3 मिनट समय बर्बाद कर रहे हैं इसके चलते वो अपने आप होश में आ जा रहा है
0: जी।
1: और आपको लगता है कि हम जूता सुहाने में
0: जी जी बिल्कुल
1: इसके लिए आया है, उससे नहीं आया है। नहीं भी जूता सुहाते तो उतना ही देर में होश में आता
0: जी।
1: तो होश में आने का कारण आपका जूता सुहाना या मुंह में चम्मच डालना नहीं है। दूसरा प्रिकॉशन ये लेना चाहिए, उसका सांस की नली जो है, एयरवे है
0: जी,
1: वो सांस लेने में उसको कठिनाई ना हो, क्लियर होना चाहिए
0: जी।
1: अगर सिर मुड़ा हुआ है तो सीधा कर लीजिए। मुंह से झाग फेन आ रहा है तो एक तरफ मुंह कर दीजिए कि वो झाग फेन उसके सांस के नली में
0: नहीं फंसे,
1: न चला जाए, या उसको उलट के रख लीजिए कि उसका जो लार जो आ रहा है वो नीचे चूते चला जाए, उसका सांस की नली है सो अवरुद्ध न हो, इसका हमको ध्यान रखना है।
0: सर,
1: तो हम लोग को दो चीज का ध्यान रखना है
0: जी।
1: एक उसको फिजिकल इंजुरी ना हो, कहीं चोट ना लगे, उसके सांस का नली अवरुद्ध ना हो, उसका ध्यान रखना है। और कोई भी जूता सुहाना चम्मच डालने वाली एक्टिविटी मत कीजिए
0: जी सर। अच्छा,
1: सबसे पहले पेशेंट को जब अटैक आने वाला होता है तो उसको कुछ अलग सेंसेशन होने लगता है, उसको पता चल जाता है कि अब हमको दौरा पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: इस फेज को ऑरा बोलते हैं
0: जी।
1: ये कुछ ही सेकंड का होता है, 30 सेकंड।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में भेंटवार्ता, मिर्गी कारण लक्षण डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव से, और इनसे बातचीत कर रही थी शर्मिला वर्मा। हम आकाशवाणी के डाल्टन गंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही पलों में।

0: प्रतिवार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तथा स्विट्जरलैण्डदेशस्य राष्ट्रपतिः गी पामलः च अद्य भारतमण्डपम् इत्यत्र द्वितीयं भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलनं सम्बोधयिष्यतः। भारत ईएफटीए व्यापारार्थिक सहमति सन्धेः प्रथमवार्षिकोत्सवस्य अवसरे सम्मेलनमिदम् आयोज्यते। अस्मिन् सम्मेलने भारतस्य तथा ईएफटीए संघटने अन्तर्भूतानां स्विट्जरलैण्ड, नॉर्वे, आइसलैण्ड, लिक्टेन्स्टाइन चेत्येतेषां देशानां वरिष्ठाः प्रशासकीयाधिकारिणः, उद्योगक्षेत्रस्य नेतारः, प्रमुखहितधारिणश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। सम्मेलनस्य उद्देश्यम् आर्थिक सहकारं सुदृढीकर्तुं, व्यावसायिक सहमतिं प्रवर्धयितुं तथा व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी सहकार नवोन्मेष चेत्येतेषु क्षेत्रेषु नूतनानाम् अवसराणां सृजनमस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सार्वजनिक जीवन यात्रा अद्यैव आरब्धा आसीत्, यस्याः अद्य 25 वर्षाणि पूर्णानि भवन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अथ भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः च अद्य विकसित भारत संकल्प सभां सम्बोधयिष्यतः। प्रधानमन्त्रिणः तथा भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य सम्बोधनाभ्यां सह दलस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः अपि उत्तर प्रदेशस्य विभिन्नेभ्यः क्षेत्रेभ्यः दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बहुमाध्यम सम्बद्ध परिवहन योजनां सुव्यवस्थितां कर्तुं एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य स्थापनायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्नस्य मन्त्रिमण्डलोपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् इदं प्राधिकरणं दशवर्षीय योजनावधिम् आधृत्य दीर्घकालिकं राष्ट्रिय परिवहन महायोजनापत्रं सज्जीकरिष्यति। सः उक्तवान् यत् इदं देशे एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन योजनायै शीर्ष संस्थारूपेण कार्यं करिष्यति। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन लघु मध्यमोद्यमेषु स्वामित्व निवेशाय 10,000 कोटि रूप्यकाणां लघु मध्यमोद्यम विकास निधेः स्थापनायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारत घाना देशयोर्मध्ये वैज्ञानिकानुसन्धानस्य, शैक्षणिक क्षेत्रस्य क्षमतावर्धनस्य, कृष्यनुसन्धानस्य तथा शिक्षायाश्च क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं द्वयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानं जातम्। विदेशमन्त्रिणः डॉ एस जयशंकरस्य घानायात्रायाः समये एतयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानम् अभवत्। डॉ जयशंकरस्य घानादेशस्य विदेशमन्त्रिणः सैम ओकुरजीतो अब्लक्वा इत्यस्य च मध्ये भारत घाना देशयोः व्यापक सहमतिं सुदृढीकर्तुं विस्तृतं विचार विनिमयं जातम्। ध्यातव्यमिदं यत् विदेशमन्त्रिणः इयं यात्रा अस्य मासस्य 10 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरासु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। भारतेन ह्यः रात्रौ लखनऊ नगरे क्रीड्यमाने 1/20 प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां वेस्ट इंडीज दलं 8 स्तोभिः पराजितम्। अनेन विजयेन भारतं 5 स्पर्धात्मिकायां श्रृंखलायां 1-0 इत्यन्तरेण अग्रे अस्ति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
2: सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के कार्य शामिल हैं। इन्हें चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। दोनों देश दक्षिण दक्षिण सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुडजेटो अब्लाक्वा के साथ समझौतों का आदान प्रदान किया। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कालाकोट और राजौरी सेक्टरों का दौरा कर परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में सेना ने बताया कि सैनिकों ने उन्हें नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनाई गई सतर्कता, प्रशिक्षण, तालमेल और नवीन प्रथाओं सहित प्रमुख परिचालन तैयारियों की जानकारी दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001 Mr. Modi was first sworn in as the Chief Minister of Gujarat. He became Prime Minister in May 2014. To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy.
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं।
5: ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कंप्लीटिंग 25 इयर्स एज द हेड ऑफ अ गवर्नमेंट। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंटिन्यू सर्विस टू द नेशन द कैबिनेट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड पास द रेजोल्यूशन। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन गुजरात द प्राइम मिनिस्टर ब्रॉट अबाउट सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस थ्रू हिज वर्क्स एंड पॉलिसीज फॉर विच ही वॉज ऑनर्ड अराउंड द वर्ल्ड। द इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय हिम लेटर बिकम इंपॉर्टेंट टेम्पलेट फॉर द कंट्री। दस द गुजरात मॉडल गेन रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन ग्लोबली and several of its successful approaches were subsequently implemented across India.
3: और भारत भर में उसकी implementation हुई।
4: He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of the vitality, vibrancy and maturity of the democracy. Mr. Vaishnav said that Prime Minister Modi has created history that is unique in any democratic country. He said there are few countries in the world where the people have repeatedly extended their support to a single leader. The minister said this support has been given because of his style of functioning, his right policies and his clear and good intentions. The Bharatiya Janata Party and Prime Minister Narendra Modi have always pursued public service, national service and the spirit of putting the nation first and the nation above all with clear intentions and clear policies. The minister highlighted 10 major points of this cabinet resolution. The first point is the expansion of the vision of development from Gujarat to the entire country. He said Prime Minister Narendra Modi introduced several changes in Gujarat through his programs and policies for which Mr. Modi was honored across the world. The Gujarat model was recognized and appreciated across the world and was subsequently implemented across India. To mark the occasion, BJP launched nationwide celebratory campaign called Seva Sankalp Abhiyan. Running from September 17 to October 17th, the initiative features nationwide public welfare programs, blood donation drives and cultural yatras connecting Vadnagar PM Modi's birthplace to Varanasi, his parliamentary constituency. Prime Minister Narendra Modi emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Prime Minister Modi interacted with Global System for Mobile Communications Association GSMA board members at Seva Tirth yesterday ahead of the India Mobile Congress. The India Mobile Congress is scheduled to be held from 7th to the 10th of this month in New Delhi. Mr. Modi stressed that democratization of technology is essential to ensure that no section of society is left behind. President Draupadi Murmu is currently on a three-day official visit to Himachal Pradesh. On arriving in Bilaspur yesterday, she attended the first convocation ceremony of AIIMS Bilaspur, where she conferred medals and degrees upon meritorious students. On the second day of her visit today, the President is scheduled to visit the Atal Tunnel, Rohtang. Government has notified the schedule for permissible works under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VVG Ramji Act 2025, providing for 375 permissible works under the new Rural Works Framework. Minister of Rural Development said that the new schedule represents a 41% expansion over the 266 works under the previous framework. The works have been reorganized around four thematic pillars, including water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works for extreme weather events and disaster preparedness. India defeated West Indies by 8 wickets at the opening T20I in Lucknow last night to take a 1-0 lead in the 5-match series. Put into bat, West Indies were bowled out for 171 in 19.1 overs. Sherfane Rutherford top scored 56, while Shai Hope contributed 52. And that is the end of this news bulletin.
6: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए आपको बताते हैं प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन समय में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 7:15 पर सुनेंगे पलाश लोकगीतों का ये कार्यक्रम मधु मंसूरी साथियों की आवाज़ में। तरी दरीज की आवाज़ में आप सुनेंगे स्वर सरिता। समाचार प्रभात 8:00 आप सुनेंगे दिल्ली से। 8:15 पर सुनेंगे दिल्ली से मॉर्निंग न्यूज। रांची से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 8:30 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन। जो हर गुलामों का समय होगा 9:00। 9:30 पर

सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10 बजे का समय होगा दिल्ली से हिंदी में समाचार का। 10:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से। मुंबई से आप सुनेंगे 10:10 पर विविध भारती में सेहतनामा। 11 बजे का समय होगा रंग तरंग का और 12 बजे यादों की महफिल। 1 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 1:05 पर। 1:10 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर हम चलेंगे मुंबई जहां से आप सुनेंगे विविध भारती में सुरीला सफर। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा दो बजे। 2:15 पर सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार दोपहर की सभा में। 2:23 पर सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सदाबहार नाग में। 2:55 पर हम चलेंगे रांची जहाँ से हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 3 बजे का समय होगा विविध भारती का। 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से। 4:02 पर आप चलेंगे मुंबई जहाँ से आप सुनेंगे विविध भारती में आज के मेहमान। प्रादेशिक समाचार का समय होगा रांची से 5 बजे। 5:02 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में छाया गीत। शाम 5:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

0: शाम 5:30 पर सुनेंगे घर आंगन महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 6:00, 6:02 पर ग्रामीण सभा। खेती बाड़ी अब सुनेंगे शाम 6:30 पर। 7:00 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का। जिले में आजकल का समय होगा 7:10 पर। 7:15 पर सुनेंगे सूर संध्या में फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कल्याणी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम 7:45 पर, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता अपेंडिक्स कार्यम निदान। भेंट वार्ता का डॉक्टर सुनील कुमार पांडे और इनसे बातचीत करेंगे संजय कुमार मिश्रा। चितपट संगीत आप सुनेंगे रात्रि के 8:00। 8:10 पर सुनेंगे भारतीय वायुसेना के पी वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना के चीफ कॉम्बियर स्टाफ के मार्शल अमरजीत सिंह का संदेश। चितपट संगीत का समय होगा रात्रि के 8:17 पर। 8:30 पर सुनेंगे नई सोच नया कदम भेंट वार्ता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों से भेंट वार्ताकार होंगे अनिरुद्ध महतो, इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। 8:45 पर सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा दिल्ली से 9:00। 9:15 पर सुनेंगे उर्दू में समाचार। 9:30 पर सुनेंगे भारती में आज के फनकार रजनीगंधा का समय होगा 10:00। 10:30 पर सुनेंगे एक रंग एक ही फनकार। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से। 11:05 पर सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से। और हम अपने सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। तो ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश मधु मंसूरी साथियों की आवाज में।
1: राग भोटांग के इस नागपुरी लोकगीत में भी स्वर है मधु मंसूरी हंसमुख एवं साथियों का। कहा जा रहा है गांव के लोग आपस में राम लक्ष्मण एवं जानकी के विषय में बातें कर रहे हैं। जिस तरह राम हैं उसी तरह लक्ष्मण भी हैं। जानकी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तीनों की अपनी अनुपम सुंदरता है। राम सांवले हैं तो लक्ष्मण गोरे। जानकी भी बेहद सुंदर एवं दुलारी है। आगे कहा जा रहा है किसने मैना और तोता को पाला है और किसने सिकरा पक्षी को पाला है। जवाब में कहा जा रहा है माँ ने मैना, बाबा ने तोता और सैया ने सिकरा पक्षी को पाला है।

ये नागपुरी लोकगीत भी मधु मंसूरी हंसमुख एवं साथियों की ही आवाज में है। झारखंड की सुंदरता का वखान करते हुए कवि कह रहा है, अखंड

झारखंड में नया सवेरा हो गया है। कोयल, स्वर्णरेखा, शंख, ककरी, कांची, दामोदर जैसी नदियां निश्चल बहने लगी हैं और एकता का संदेश दे रही हैं। अब हमें भेदभाव भूलकर एक साथ रहना है। यहाँ बसने वाली जाति जनजाति सभी एक हैं। सबके सुख दुख में सहभागी बनकर झारखंड को मजबूत और समृद्ध बनाने का प्रयास करना है। आइए प्रकृति से भी हम

राग भिनसरिया के इस नागपुरी लोकगीत में कहा जा रहा है, वृंदावन में खजूर के पेड़ बहुत हैं, चलो हम वहां जाएंगे। खजूर के पेड़ ना अधिक बड़े हैं और ना अधिक छोटे, इसके फल ना भींगते हैं और ना ही सड़ते हैं, पर पकने पर खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये नागपुरी लोकगीत सुनिए मधु मंसूरी हंसमुख एवं साथियों की आवाज में।

राग जदूर के इस मुंडारी आंदोलन गीत में बिरसा मुंडा के बारे बताया जा रहा है। चलकत गांव में बिरसा सूर्य के समान उदित हुए, यहीं बड़े हुए। बलशाली और बुद्धिमान बिरसा ने पूरे छोटा नागपुर को रोशन किया। सुगना मुंडा के घर में बिरसा का जन्म हुआ। वे अपने संग साथियों के साथ धूल धूसरित होकर खेले, बड़े होकर किताबी ज्ञान पाकर अपना एक संगठन बनाया। अपने देश मुंडा देश को बचाने के लिए, उन्हें दुश्मनों से डर नहीं लगता है। अपने देश को आजाद करने के लिए बिरसा को अपने

0: गीत राग जदुर पर आधारित है। इस गीत में भगवान बिरसा के जीवन का वर्णन है। कहा जा रहा है, तमाड़ परगना के उलीहातु गांव में बिरसा का जन्म हुआ। घनघोर जंगल के बीच चलकत गांव में उन्होंने उलगुलान किया। सर्वदा के गिरजा घर में तीर चलाकर बिरसा ने खूंटी में हलचल मचा दी। डिप्टी कमिश्नर ने बिरसा का पीछा किया। इस पर वे डुम्बारी पहाड़ पर चढ़ गए। अंग्रेजों ने पहाड़ के नीचे से उन पर गोलियां चलाई, जिसमें कई महिला पुरुष मारे गए। इसी बीच में एक बच्चे को अपनी मृत माता का दूध पीता देख अंग्रेज मेम साहब को दया आ गई। उसने अपने लोगों से कहा, ये क्या हो गया? ये बहुत दुखदाई है। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ।
1: तामा,

अन्य आदिवासियों की तरह ही मुंडा जनजाति के लोग अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर थे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग जंगली जानवरों के शिकार करने तथा अपनी खुटकट्टी जमीन की रक्षा करने के लिए करते थे। राग मागे के इस आंदोलन गीत में ये कहा जा रहा है कि उली हाथों के बिरसा मुंडा तीर से ही बातें करते हैं, एटके के गया मुंडा फरसा से ही बातें करते हैं। वे अपने गांव, अपने प्रदेश की रक्षा के लिए तीर और फरसा से ही बातें करते हैं। अपनी खुटकटी जमीन और अपनी धन संपत्ति की रक्षा के लिए वे तीर से ही बातें करते हैं।

ये नागपुरी लोकगीत भी मधु मंसूरी हंसमुख एवं साथियों की ही आवाज में है। झारखंड की सुंदरता का बखान करते हुए कवि कह रहा है, अखंड झारखंड में नया सवेरा हो गया है। कोयल, स्वर्णरेखा, शंख, ककरी, कांची, दामोदर जैसी नदियां निश्चल बहने लगी हैं और एकता का संदेश दे रही हैं। अब हमें भेदभाव भूलकर एक साथ रहना है। यहाँ बसने वाली जाति जनजाति सभी एक हैं। सबके सुख दुख में सहभागी बनकर झारखंड को मजबूत और समृद्ध बनाने का प्रयास करना है। आइए प्रकृति से भी हम कुछ सीखें।

अभी आप सुन रहे थे मधु मंसूरियम साथियों की आवाज़ में पलाश लोकगीतों का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज का केंद्र है। आइए सुनते हैं तलेदर जी की आवाज़ में स्वर सरिता सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत तलत अजीज की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात अब से कुछ ही पलों में।

चार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिग्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद अ ऑटो मेट्रो।
2: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
5: इन कार्यों को 4 विषयगत स्तंभों, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

0: है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन। दिल्ली में आराम, हानि रहित बेदाग, जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है कि आवाज परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात की। एक रिपोर्ट।
4: गोवा देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष

0: और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से ये दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया, दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
0: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years as head of a government. Union Cabinet passes resolution to commemorate this landmark achievement. Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat G. Ramji scheme, marking 41% expansion from previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members of Global System for Mobile Communications Association, says technology must become a tool for inclusive and sustainable development. RBI to announce bi-monthly monetary policy this morning. IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets in the first T20 international, taking 1-0 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years.

0: योजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
1: For Goa, a state with strong maritime heritage, extensive waterways and the Mormugao port, Sagarmala is creating new opportunities by strengthening port infrastructure, inland waterways and

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में विभिन्न विभागों के कई बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है।

0: मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आज देशव्यापी सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन, रांची समेत राज्यभर में भव्य तैयारियां। राज्य में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए चुनाव आयोग की बड़ी पहल। आज से 9 अक्टूबर तक सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष डिजिटाइजेशन कैंप। साहिबगंज बरहड़वा रेलखंड पर सकरी गली और महाराजपुर के बीच प्रभावित डाउन लाइन पर परिचालन बहाल। आज से सामान्य रूप से दौड़ेंगी सभी ट्रेनें। और जेएससीएस स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच के लिए भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें आज पहुंचेंगी रांची। सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े 3 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर आज देशभर में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड में भी इस अभियान के तहत सभी जिलों में विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। राज्य में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्देश दिया है कि 7, 8 और 9 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष डिजिटाइजेशन कैंप लगाए जाएं। श्री कुमार ने बताया कि इसके साथ ही 10 अक्टूबर को मेगा हेल्प डेस्क का आयोजन होगा।
1: 10 अक्टूबर का एक मेगा हेल्प डेस्क कैंप करा रहे हैं ताकि प्रत्येक वोटर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। वहां पर बीएलओ भी रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के BLA2 भी रहेंगे। इससे कितना भी इश्यू होगा उसका शॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद तो ऐसा भी वोटर के पास चर्चा होगा, उनका जन्म कहाँ हुई थी, उनका माता पिता का भारत में कहाँ जन्म हुई थी, उसके बारे में भी वहां पर चर्चा होगी। फिर नया वोटर है, इनका 18 उम्र हो रही है 1 अक्टूबर 2026 में, उनका भी चर्चा करके उनका भी लेने के लिए किया जाएगी।
0: प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में आयोजित भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है।
2: यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ निराशा ही मिली, और जो उन्होंने घोषणा पत्र में जितनी बातें बोली थी वो बिल्कुल जमीन पर जीरो है। न स्वास्थ्य सेवा है, न शिक्षा है, न सड़क और न ही सिंचाई के मामले में। इसलिए यहाँ पर रहने वाला हर गरीब हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सब परेशान, इसलिए कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होगी।
0: पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल से यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। साहिबगंज बरहड़वा रेलखंड के सकरी गली और महाराजपुर स्टेशनों के बीच प्रभावित डाउन लाइन पर पुनर्बहाली का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। मालदा के मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा जांच के बाद इस ट्रैक पर परिचालन शुरू कर दिया गया है।
3: करीब एक हफ्ते की मेहनत के बाद करीब 800 कर्मचारी और जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं उन्होंने दिन रात 24/7 वहां पर मेहनत की और काफी टेक्निकल इनपुट दिया जिससे कि वहां पर जो बैंक का प्रोटेक्शन है वो संभव हो गई। और उसकी वजह से पहली ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन एक चालू कर दी है, बाकी ट्रेन भी आज चालू कर दी गई है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल रांची के विभिन्न दुर्गा पूजा और शांति समितियों के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। सदस्यों ने मुख्यमंत्री को मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट कर पूजा उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल ने सुचारू व्यवस्था और जिला प्रशासन के पूर्ण सहयोग के लिए राज्य सरकार की सराहना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची

0: इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज में वन्य जीव सप्ताह के तहत कोटाल पोखर के एक विद्यालय में जलीय जीव संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने गंगा डॉल्फिन को स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान बताते हुए इसके संरक्षण पर जोर दिया।
1: वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है। सेशन गैंजेटिक डॉल्फिन पे आधारित था, तो हमें ये इंश्योर करना रहता है कि जो डेथ हुआ है वो नेचुरल डेथ हुआ हो। हर स्पीसीज में पॉपुलेशन स्टेबल रहता है, इसीलिए हम पॉपुलेशन लगातार काउंट करते हैं। नेचुरल डेथ से हमें कोई बुरा नहीं कह सकते, यहाँ का पॉपुलेशन स्टेबल है और अच्छा ग्रो करता है।
0: आज दुनिया भर में वर्ल्ड फाइनेंशियल डे मनाया जा रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि वित्तीय नियोजन यानी सही फाइनेंशियल प्लानिंग जीवन के हर मोड़ पर कितनी जरूरी है, फिर चाहे वह बच्चों की पढ़ाई हो, रोजमर्रा के खर्च हो या रिटायरमेंट का सुरक्षित भविष्य। हमारे राज्य झारखंड के लोगों के लिए यह जागरूकता क्यों आवश्यक है, सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
2: संपदा से समृद्ध झारखंड की धरती जितनी अमीर है, यहाँ के आम लोगों को आर्थिक रूप से उतना ही समृद्ध बनाने के लिए सही वित्तीय नियोजन की जरूरत है। राज्य के ग्रामीण इलाकों से लेकर रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहरों तक अब लोग सिर्फ पारंपरिक बचत से आगे बढ़कर निवेश की अहमियत को समझ रहे हैं। चाहे खेती किसानी से होने वाली आय हो या नौकरी पेशा वर्ग की कमाई, सही जगह निवेश ना होने के कारण भविष्य की जरूरतें जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक खर्चे एक बड़ा बोझ बन जाते हैं। वित्तीय जानकारों का मानना है कि सही समय पर लिया गया छोटा सा निवेश का फैसला भी बुढ़ापे की लाठी बन सकता है। आज वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे पर जरूरत इस बात की है कि झारखंड का हर नागरिक अपनी कमाई को सही दिशा दे, ताकि हमारा राज्य न सिर्फ संसाधनों में बल्कि हर घर की आर्थिक स्थिति में भी आत्मनिर्भर बन सके। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
0: मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के कई हिस्सों के लिए आज विशेष अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। रांची के जेएससीएस स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत और वेस्टइंडीज टी20 मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज दोनों टीमें रांची पहुंच रही हैं। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मैच के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और खिलाड़ियों सहित प्रशंसकों की त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद किया गया है।
3: स्टेडियम में इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी कुछ सुधार किया गया है। साथ ही साथ जो इस बार जो टिकट काउंटर की जो बैरिकेडिंग है उसमें भी काफी सुधार हुआ है, और साथ ही साथ हमारी जो क्राउड चैनलिंग है, इमरजेंसी एग्जिट उसको कैसे हैंडल करना है, ट्रैफिक डाइवर्जेंस किस तरीके से करने हैं, साथ ही साथ एक गेट का क्राउड दूसरे गेट तक ना पहुंचे क्योंकि जो व्यवस्था है वो खराब दिखती है, उस चीज को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी20 मैच से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आज भी ऑनलाइन मिलेंगी टिकट, भारत और वेस्टइंडीज की टीम रांची पहुंचेगी। प्रभात खबर लिखता है, रांची की सबसे सस्ती टिकट लखनऊ से 4 गुना तो इंदौर से 600 रुपए ज्यादा। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सीएम का निर्देश, त्योहारों पर राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखें। दैनिक जागरण ने लिखा है, बीआईटी मेसरा में छात्र को खेलते समय लगा करंट, भड़का आक्रोश। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में विभिन्न विभागों के कई बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आज देशव्यापी सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन, रांची समेत राज्यभर में भव्य तैयारियां। राज्य में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए चुनाव आयोग की बड़ी पहल, आज से 9 अक्टूबर तक सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष डिजिटाइजेशन कैंप। साहिबगंज बरहवा रेलखंड पर सकरी गली और महाराजपुर के बीच प्रभावित डाउन लाइन पर परिचालन बहाल। आज से सामान्य रूप से दौड़ेंगी सभी ट्रेनें। और जेएससीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच के लिए भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें आज पहुंचेंगी रांची। सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाएं और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 8:47 हो चुके हैं और समय हो चला है गीत गुंजन का। तो ये सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल तुझको दिया का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे तेरी कसम का ये गाना, और इसी गीत के साथ गीत गुंजन से हमें आगे दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन, पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं जोहार पलामू अब से कुछ ही पलों में।

जोहार पलामू सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार से। हमारे आज के सुविचार इस प्रकार से हैं, कहते हैं पढ़ाई बोझ नहीं अवसर है आगे बढ़ने का, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो विद्यार्थी अनुशासन में रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो हमें शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, हमें पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। हम बातें और भी करेंगे मगर सुनते ये प्यारा सा गाना।

तो आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहर पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं आज का इतिहास, यानी कि 7 अक्टूबर के इतिहास में देश और दुनिया की कई महत्वपूर्ण घटनाएं। जी हां, 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में

थी। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायद के खिलाफ ऑपरेशन एंटरिंग फ्रीडम के तहत युद्ध की शुरुआत की थी। 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। 7 अक्टूबर 1571 को लेफ्टिनेंट के इतिहास युद्ध में कैथोलिक देशों के संघ ने ओटोमन साम्राज्य की नौसेना को हराया था। 7 अक्टूबर 1907 को स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन करने वाली प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी यानी का जन्म हुआ था। 7 अक्टूबर 1914 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और ठुमरी की रानी के रूप में विख्यात बेगम अख्तर का जन्म फैजाबाद में हुआ था। 7 अक्टूबर 1708 को सिखों के 10वें गुरु महान योद्धा और कवि गुरु गोविंद सिंह जी की ज्योति ज्योता सामना में निधन हुआ था। तो ये थी हमारी आज की इतिहास में ये बातें, हम बातें और भी करेंगे, मैं सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं स्वास्थ्य के प्रति हम किस प्रकार से सचेत रहें। जी हाँ, जिस तरह के मौसम में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उस प्रकार से हमें अपने खान पान में भी उतार चढ़ाव रखना होगा। बदलते मौसम में सेहतमंद रहने के लिए हमें ताज़ा, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए। हमेशा घर का बना ताज़ा और गर्म खाना खाना चाहिए। हल्की चीज़ें जैसे आहार में मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया और हल्की सब्जियां जैसे लौकी, तुरई हमें शामिल करना चाहिए। मौसमी फल जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें बहुत ज़्यादा हो, बढ़ाने की क्षमता हो, उसे हमें खाना चाहिए। इस मौसम में जैसे मौसम में बदलाव आता है, उसके अनुसार हमें प्यास भी लगती है, तो प्यास लगने पर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना या समान पानी हमें पीते रहना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए, तो तला भुना और जंक फूड, जहाँ ज़्यादा तेल मसाले वाले खाना और फास्ट फूड पाचन को धीमी करता है। बासी खाना, फ्रिज में रखा या पुराना बासी खाना भी हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं।

चीज़ें जैसे बहुत ठंडे पेय पदार्थ हैं, शीतल पेय पदार्थ से हमें दूरी बनाना चाहिए। तो बदलते मौसम में अपने खान पान के साथ साथ हमें अपनी त्वचा का भी ख्याल रखना चाहिए।

स्थान वन के साथ साथ हमें अपने मौसम के अनुसार अपने त्वचा का भी ध्यान तो रखना पड़ता है। बदलते मौसम में त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने के लिए हमें अपने स्किन केयर रूटीन में हल्का बदलाव बहुत जरूरी होता है। जैसे कि बदलते मौसम में दिन में 2 बार किसी हल्के और या सल्फेट मुक्त फेस वाश से हमें चेहरा साफ करना चाहिए, ताकि हम त्वचा की नमी को बनाए रखें और हमारे जो रोम छिद्र है वो बंद ना हो। हल्के और हल्का मॉइस्चराइजर, भारी भरकम क्रीम के बजाय हमें थोड़ा हल्का मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। सनस्क्रीन ना छोड़ें, अगर धूप हो तो थोड़ा इसे यूज करें, और नहीं तो फिर बादली हुई किरणों से भी हमें बचाव करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत सनस्क्रीन लगा कर हम चल सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में सबसे ज़्यादा जरूरी है पानी पीना। शरीर और त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में बहुत ज़्यादा, यानी कि अपने जितना आपके शरीर को चाहिए उतना पानी आपको पूरा पीना है। साथ ही साथ हमें प्राकृतिक से मिला हुआ जो फल है, जैसे नींबू, नारियल, इनका भी हमें सेवन करते रहना चाहिए। और इस प्रकार से अपने खान पान के साथ साथ हम अपने त्वचा का भी ख्याल रखकर अपने आप को एक सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। तो हम बातें और भी करेंगे, वह सुनते हैं प्यारा सा गाना।

तो श्रोताओ, इसी गीत के साथ हमें जो है प्लामों से आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर था पिंकी कुमारी का और संयोजक थे श्री प्रशांत गौरव। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, कड़ी संख्या 1388।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
1: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
1: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू। लिखते हैं, सादर नमस्कार,
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
1: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
2: सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
2: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की ध्वनि अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
1: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
2: जी।
1: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी, जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही।
2: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी

0: कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं शुरू करते हैं
1: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी, पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा?
0: अजीत जी, सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे।
1: जी, राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
1: और श्रोताओं, उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी, श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
0: अजीत जी, ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
1: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है।
0: जी।
1: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
0: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गाँव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
1: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
0: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
0: एक बच्चा पढ़ाना,
1: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
0: पर्यावरण की रक्षा करना,
1: ईमानदारी से अपना काम करना
0: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
1: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
1: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
0: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है?
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
0: NCERT की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: हल्पल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी। सचमुच

0: ऐसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम।
1: ओहो, मैं तो थक गई।
2: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
2: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं अभी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
2: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
3: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
3: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
2: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
2: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
2: पेड़ हंसने लगा।
4: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं बस। सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
2: सिमरन ने आंखें झुका ली।
1: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
2: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
1: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
5: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तो और,
1: बस बस, मैं समझ गई।
2: वो सोचने लगी,
1: परिश्रम से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
2: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
0: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी।
6: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी, सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना। है ना ये हमारा अपना काम। तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
7: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्का बल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
2: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
2: साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: भाई वाह, कमाल। पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
2: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था।

0: हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है। इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
1: फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
2: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
1: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
3: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होते हैं, ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
2: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा? इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
3: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
2: क्यों?
3: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
2: हो।
3: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
1: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए सक्कर में कर दिया जाए।
3: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
1: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
3: थैंक यू।
0: साथियों, विश्वेश्वरैया के सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और सक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
4: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
0: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
5: किसने खींची चेन?
2: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
3: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
5: व्हाट? क्या मजाक है? ये आप कैसे कह सकते हैं?
3: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
5: आइए आइए, देखते हैं।
3: आइए, हम भी चलते हैं।
5: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए। अगर बात आपकी गलत निकली ना, तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
3: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
0: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
3: आइए सर, आइए देख लीजिए।
5: अभी तक तो यहाँ भी ठीक ही है।

0: आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहां पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहां पटरियां उखड़ी हुई हैं। मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
1: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है, तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
0: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
2: We are so thankful to you. It's amazing. May I know your name, please?
1: I am Dr. Moksh Gundam Vishweshwaraiya.
2: Oh, the engineer in chief of Mysore State.
3: Aur railway sachiv bhi.
0: Namaskar sir.
4: See.
1: Ji sir. Main wahi hoon.
2: Namaskar sir. Namaskar. We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you.
1: धन्यवाद।
4: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
5: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
4: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
5: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
4: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
6: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
7: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।
8: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
9: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
6: और उमंग
5: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के काम
4: और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
6: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
7: जी मैं रमेश, पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

अभी आप सुने थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अब से खुशी पलों में

0: Party. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष और पिछले 12 वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी लगातार जनसेवा के लिए समर्पित रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्रीय सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों की भी सराहना की। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण

0: मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पूर्व में शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज ऐसे मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as the head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as the Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as the Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as the Chief Minister of Gujarat. He became the Prime Minister in May 2014. To mark the occasion, Prime Minister Narendra Modi and BJP National President Nitin Naveen will address the Viksit Bharat Sankalp Sabha today. Several senior party leaders will join the program virtually from different parts of Uttar Pradesh. Vice President C.P. Radhakrishnan and Defence Minister Rajnath Singh have greeted Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years in public service. Bhutanese Prime Minister Tsering Tobgay has also lauded Prime Minister Narendra Modi's 25 years in public service, describing India's development journey under his leadership as increasingly significant, not only for India, but also for its neighbours and the wider global south. The 10th edition of India Mobile Congress will begin at Yashobhoomi in New Delhi today. With the theme Scale Without Boundaries, it will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the event tomorrow. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will address the second India-EFTA Prosperity Summit 2026 at Bharat Mandapam today to mark the first anniversary of the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement. The summit will bring together senior government officials, industry leaders and key stakeholders from India and the EFTA states Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein to further strengthen economic cooperation, foster business partnerships and unlock new opportunities.

0: बातें तो बहुत सी आपने की है, अब पढ़ाई से आपका कैसा नाता था, कैसा रिश्ता था?
1: हाँ जी, देखिए पढ़ाई में तो थोड़ा सा मैं मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ता था लेकिन हो ही नहीं पाता था मेरे से। मैं भूल जाता था चीजें, जैसे तारे जमी पे जो प्रॉब्लम था ना उस बच्चे का, कई बार मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था।
0: अच्छा
1: हाँ, आप मुझे बोल दो कुछ लिखने के लिए ना, तो कभी मैं हर्षी लिख दूं, कभी दीर्घी लिख दूं, किसी हिंदी में भी, तो था ये, मैं चीजें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार। तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी हो गई कि ये मेरे को पीटते भी हैं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, मुझे SST बहुत अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ये सारे सब्जेक्ट सही लगते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की, अरे नहीं नहीं नहीं ये आर्ट ले लेगा तो क्या ही करेगा जीवन में। दो तीन आंटी भी थी, वो लोग भी कि नहीं नहीं नहीं नहीं इसको साइंस साइंस लिवाओ।
0: और कहीं ना कहीं आपका सपना अभिनय में आने का था,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ
0: उस
1: जी,
0: तरफ रुझान शुरू से था।
1: हाँ। और जब भी कोई इस तरह की बातें करता था ना कि मेरे जो गोल है, एम है, उससे हटके बातें होती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना वहां से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना कहीं और है, मुझे कोई और बुला रहा है, तो मुझे क्यों इस तरफ लेके करके आ रहे हो,
0: बिल्कुल।
1: है ना। तो हमेशा मतलब 10th में भी बहुत ही कम नंबर आया, 12th में भी यही हाल था, मतलब किस तरह मैं पास हो गया।
0: अच्छा
1: अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। हाँ,
0: ओके।
1: बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने मास कॉम ले लिया था।
0: ये आपने पटना से किया?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: जी
1: तो मास कॉम इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अरे लाइट रहेगा, कैमरा रहेगा, माइक रहेगा, तो मैं थोड़ा सा ना सिनेमा के आसपास रहूंगा और थोड़ा जागरूक भी रहूंगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है
0: बिल्कुल।
1: ये सब मुझे पता होगा, तो इसलिए मैंने मास कॉम किया। और हाँ, फिर मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं, जिसको हमेशा 52-53 आ रहा हो उसके लिए।
0: लेकिन आपके पसंद के विषय अब आ गए थे, आपका पसंद कहीं ना कहीं
1: हाँ
0: आ गया
1: जी,
0: था,
1: हाँ जी, हाँ
0: इसीलिए
1: जी, हाँ
0: वो
1: जी,
0: फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं ये अब महसूस करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है एक अभिनेता के लिए। तो
0: अभी आपके पसंद का दूसरा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं, सुनने
1: देखो,
0: वाले?
1: आज तो मैं सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि विविध भारती मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैं वही सब पुरानी चीजें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं दिनों को याद करता रहूंगा और उन्हीं दिनों के गाने भी सुनता रहूंगा। तो अभी मैं अपने पसंद का गाना बताना चाहता हूँ, अंदाज फिल्म का। अंदाज का कोई भी गाना चलेगा, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, जो अक्षय कुमार और प्रियंका और लारा दत्ता की फिल्म थी।
0: जी।
1: अरब

0: अच्छा, हम आते हैं इस सवाल पे कि आपने अपना नामकरण खुद से कर लिया था, आपने अपना नाम बदल दिया
1: हाँ जी
0: है ना? वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, वो जरा बताइए कि क्यों बदला, कैसे बदला, राय की जगह रॉय, ये कहां से
1: ये
0: आया?
1: सवाल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका जवाब विविध भारती के पास है,
0: जी
1: क्योंकि लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे हम बायोस्कोप की बातें। तो एक बार उन्होंने 2 बीघा जमीन सुनाया और वो इस तरह से सुनाते थे पूरी कहानी को, फिल्म और फिल्म के पीछे की बातें, तो वो दिल को भा जाती थी। तो हमने डिसाइड किया था कि चंदन राय से मैं चंदन रॉय हो जाऊंगा, सिर्फ बिमल रॉय की वजह से। मुझे वो इतना कमाल लगा, 2 बीघा जमीन, तो इसकी ये कहानी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बचपन की बातें की थी, तो मैं ना एक छोटी सी कहानी याद करना चाहता हूँ, मैं
0: बिल्कुल
1: भूल ना जाऊँ। मेरे यहाँ ना वही जैसा मैंने कहा कि मेरे यहाँ 3 पिक्चर हॉल था, तो एक शिवम टाकीज, अमरदीप और गंगा हुआ करता था। तो रामनवमी का समय और मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी थी, ये दिल आशिकाना।
0: बहुत कमाल।
1: तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो भाई चलना है फिल्म देखने के लिए, मैंने कहा नहीं मैं तो देख चुका हूँ, तो नहीं नहीं फिर से चलते हैं। और रामनवमी का समय था, पूरे शहर में जुलूस निकला हुआ था और इवनिंग शो, तो चला गया। बट वो शो का टाइम था 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे रात तक। 10 बज गए, 11 बज गए, घर

0: तो बता देना। तो इस तरह के घर पे ना वो शुरू हो गया था, और मैं उधर ये दिल आशिकाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, इस तरह गाने चल रहे हैं और मैं एकदम सब कुछ भूल के फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म जब खत्म हुई और तब तक 12 साढ़े 12 हो चुके थे, और मेरे जैसा मैंने कहा कि मेरे एक चाचा जी फौज में हैं, तो वो ढूंढ रहे थे बाइक्स पूरे महनार में। संयोग से पटेल चौक पे मैं मिल गया उनको। मेरे सारे दोस्तों भाग गए और उन्होंने मुझे पकड़ के जो पीटा बीच चौक पे, फौजी आदमी अपना जूता खोला और जूते से पीटना शुरू कर दिया उन्होंने मुझे, बहुत पीटा। फिर उसके बाद बाइक पे बिठाया, फिर घर लेके आए। मुझे लगे यार घर पे भी सब पीटेंगे अब मुझे। पूरे घर के जो भी लोग थे सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि भाई लड़का गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर मेरी माँ जैसे मैं गया हाथ पकड़ी घर में लेके चली गई। उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। हालांकि मैं मानने वाला कहाँ था, 1-2 महीने के बाद फिर से क्योंकि पिक्चर के बिना मैं रह नहीं सकता था।
1: जी,
0: मतलब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी फिल्मों की।
1: रच बस गया था सिनेमा।
0: हाँ जी, तो ये बचपन की कहानी है। ये कहानियां आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अलावा पीछे मुड़ के देखता हूं तो यही सब शरारतें मुझे याद आती हैं
1: जी
0: आज,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: और यहीं से समझ में आता है कितना पैशन था आपको माया नगरी में आने का, सिनेमा में अपना नाम कमाने का, फिल्म जगत में अपना नाम कमाने का।
0: बिल्कुल, आप यकीन माने कि जब मैं विविध भारती सुनता था तो मुझे ये था कि यार जब मैं मुंबई जाऊंगा और एक दिन जब मेरा इंटरव्यू होगा तो इसी तरह के सवाल किए जाएंगे, तो मैंने ना 1 से 12-15 सवाल तैयार करके रखा था। यही सब सवाल मुझसे भी पूछे जाएंगे और इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा।
1: वो मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं।
0: यस, और आप यकीन माने कि मैंने बचपन में जो जो सोचा था ना, ईश्वर ने सब कुछ वही किया है। मैं उन्हीं रास्तों से गुजरा हूं। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हकीकत है या सपने में हूं मैं। ये बहुत मुश्किल है, जो आप सोचो वो हो जाए, और बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो।
1: सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे।
0: बिल्कुल, कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो, खरीद लेंगे दूसरा
1: ये
0: चादर।
1: उभरते हुए कलाकारों के लिए ये एक मिसाल है, ये कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता है कि डरे
0: बिल्कुल,
1: नहीं सपने देखने से,
0: हाँ
1: और जो चाहेंगे वो होगा,
0: हो जाएगा।
1: बस वो मेहनत की जरूरत है
0: एक ही
1: और
0: जिंदगी मिली है
1: शिद्दत।
0: ना। बिल्कुल मैम, एक ही जिंदगी मिली है, अपने हिसाब से जिएंगे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप एक समय के बाद ये तो कहेंगे कि जो मैं चाहता था वो हुआ। सफलता, असफलता तो बहुत ही सब्जेक्टिव
1: जी,
0: है ना,
1: मन की
0: और
1: खुशी।
0: मन की खुशी है। कभी ये नहीं, जैसे कई बार लोग लगते हैं कि अरे ये हासिल कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा।
1: जी
0: नहीं, वहां भी पूरा ब्लैंक ही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एक मुझे कई बार लगता है ना कि मरीचिका, मरीचिका जो होता है ना वो धूप में जो दिखता है रेगिस्तान में, यही सफलता है। होता कुछ नहीं है वहां, लोगों
1: बिल्कुल।
0: को लगता है अरे सफल, कुछ नहीं है सफलता। और मैं मुंबई में सफल असफल, नाम शोहरत पैसा, इन सब चीजों के लिए नहीं आया हूं। मुझे जब हेयर मेकअप करके स्क्रिप्ट अच्छे से समझ के मैं कैमरे के सामने होता हूं माइक लगा के, वो खुशी मैं क्या बताऊं आपको। मैं इसके लिए मुंबई में हूं, ना कि
1: बिल्कुल।
0: मुझे ये सफल होना, मुझे ये बंगला गाड़ी घोड़ा। अरे नहीं भाई, मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं सेट पे होता हूँ, एक कमाल की एनर्जी में होता हूँ। ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।
1: वो एक्शन और कट के बीच का जो लम्हा
0: ओ
1: है,
0: हो,
1: कहीं आपने कही है बात, एक्शन और कट के
0: बिल्कुल
1: बीच का
0: बिल्कुल,
1: लम्हा।
0: वही जिंदगी है मेरे लिए। वो जब एक्शन से पहले दुख दुख दुख दुख, दुख हो रहा होता है, जैसे ही एक्शन होता है तो बेसिकली वो एक्शन हमारे लिए कट होता है कि पूरी दुनिया से हमें कट जाना है, और मैं और मेरा को एक्टर बस, जैसे ही कट होता है वो मेरे लिए एक्शन होता है बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए। तो जो एक्शन और कट में जो हम जी लेते हैं ना, वो वक्त बेसिकली जब आप ध्यान में होते हो, प्राणायाम करते हो, तो वही तो है ना, आप सबसे कट के उस मोमेंट में, उस शून्य में, उस
1: जी,
0: बिंदु पे रहते हो। अब इन्हें भी
1: मेडिटेशन,
0: बिल्कुल,
1: ध्यान।
0: मैं भी इसी तरह से उसको देखता हूं और समझता हूं कि उस लम्हे को जी लूं, उस पल को जी लूं। कई बार होता है, कई बार हम चूक जाते हैं, हर बार उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पाते हैं, बट कोशिश होती है। उसके आसपास भी चला जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को जीने के लिए हम बार बार अभिनय करते हैं और पूरी जिंदगी यही करना चाहते हैं।
1: यहां पर जानना चाहेंगे आपके पसंद का एक और नगमा।
0: ये दिल आशिकाना का जो टाइटल सॉन्ग है,

0: हम बातचीत कर रहे हैं दिल से, यहाँ चंदन जी से, और हम पहुंचे थे बचपन को जीते हुए कॉलेज तक, पटना तक पहुंचे थे। तो वहां थिएटर से कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से थिएटर वहीं से शुरुआत हुई आपकी, कॉलेज में।
1: चूंकि मैं बिहार से हूँ तो मेरे यहाँ छठ, दिवाली, दशहरा ये सब बहुत धूमधाम से होता है। तो मेरे गांव में सब लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्ले लिखते थे और उसको खेलते थे। नाटक खेला जाता था हमारे यहाँ। ये बाद में समझ में आया मुझे कि नाटक ना लोड लेने की चीज़ नहीं है, इसको खेलना है, नाटक खेलना है, पात्र को खेलना है, उसको एंजॉय करना है। तो हमारे गांव में खुद से धनंजय चाचा जी थे, वो नाटक लिखते थे और वही पुरानी फिल्मों वाली नाटक, सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक,
0: जी
1: कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले लिखते थे वो।
0: जी
1: मैं उसमें बाल कलाकार के रूप में काम करता था और पूरी पूरी रात स्वेटर मफलर डाल के मंच के सबसे आगे बैठा रहता था। पूरा नाटक सुबह के 6-7 बजे तक बैठ के देखते रहता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है, मुझे मजा आ रहा है। तो बाल कलाकार के रूप में मैंने नाटक शुरू किया
0: जी
1: करना प्ले। फिर स्कूल में एनुअल डे पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे कुछ कुछ होता था, लेकिन एक बढ़िया से प्ले थिएटर थोड़ा गंभीरता के साथ वो पटना कॉलेज में जब आया तो शुरू किया। वहाँ पे एक कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, तो इन दोनों जगह पे हम प्ले करते थे और ज़्यादातर हम वहाँ पे स्ट्रीट प्ले किया करते थे।
0: अच्छा,
1: गांधी गांधी मैदान में,
0: नुक्कड़ नाटक जिसे
1: हाँ
0: कहते
1: जी,
0: हैं।
1: गांधी मैदान में सरस मेला और पुस्तक मेला लगता था, उसमें करते थे। और हालांकि मुझे थिएटर से एक समय पे मैं बहुत क्लियर था कि भाई थिएटर लंबे टाइम तक तो मैं करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि थिएटर कर्मी की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी नहीं है। कई बार वो वापस जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। तो मुझे लगता है यार ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जीऊँगा मैं। बहुत अच्छा रंगकर्मी, बहुत शिद्दत के साथ वो काम करते थे, लेकिन मुझे ना डर लगता था कि यार ऐसी, मतलब ऐसा कलाकार नहीं बनना मुझे। करेक्ट। तो मुझे ये था कि थिएटर में सिर्फ इसलिए करूं कि क्राफ्ट सीख लूं, तरीका सीख लूं, उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था। हालांकि अगर आप किसी थिएटर में जाएं और उसको बोलें कि भाई मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, तो वो लोग बहुत बुरा मानते थे। उनको ये लग रहा था कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमें थिएटर से क्रांति करना है, बदलाव करना है। और मैं अपने मकसद में बहुत, मेरा सॉर्टेड था कि भाई मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे आप सिखाओ कैसे मंच पे रहना है, कैसे ऑडियंस रहना है, कैसे मतलब बेसिकली करेक्टर को कैसे हम उसके आसपास जा सकें,
0: जी
1: है ना, करेक्टर कैसे अपने अंदर ला सकें, ये सीखना था मुझे। तो फिर कॉलेज खत्म करने के बाद पटना में मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहां पर JNU में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट, उसके साथ जुड़ा। उसके साथ भी मैंने कई खूबसूरत प्ले किए। साथ ही साथ मैंने NSD रिपेटरी में भी कुछ काम किया। आसिफ अली हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी वो NSD में फैकल्टी हैं, उनके साथ भी कई सारे प्ले किया। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरू रहा। मतलब थिएटर ऐसा था कि एक ऐसी लत थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। हालांकि जब से मैं मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में था थिएटर कभी छूटा नहीं। कई बार चूंकि मैं दैनिक जागरण में जॉब करता था,
0: बिल्कुल
1: तो अगर प्ले का टाइम दोपहर का दे दिया रिहर्सल का, तो आप तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पूरे दिन आपका ऑफिस में गुजरता था।
0: बिल्कुल
1: तो मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को ऐसे हाथ में जो कच्चा पट्टी होता है ना बांध के मैंने भेज दिया था फोटो कि भाई मेरा हाथ टूट गया है तो मैं टाइपिंग तो अब कैसे कर पाऊंगा, है ना, और इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी अब तो नहीं आ पाऊंगा। और
0: अच्छा
1: मैं उस 1 महीने में राग दरबारी, एक प्ले था श्री लाल शुक्ल ने लिखा है, तो वो प्ले मैंने किया। तो इस तरह की चीज़ें मैं करता रहा, है ना। मेरे लिए थिएटर प्ले बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय।
0: तो पत्रकारिता की जॉब जो आपने की
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: नौकरी की है, वो भी इसीलिए की ताकि आप मुंबई आ सके, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वो वहां पर कैसे आप पत्रकारिता में कैसे जुड़े, और
1: हाँ
0: उसके
1: जी,
0: बाद वहां से रास्ता मुंबई के लिए कैसे बनाया?
1: तो ये था कि मुझे मुंबई जाना है, जाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे अपने पास तो है नहीं, घर वाले से मांग नहीं सकता क्योंकि आप 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हो, मम्मी पापा की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
0: बिल्कुल
1: मेरे अलावा। और ये थोड़ा बड़ा अजीब भी लगेगा कि मुंबई मुझे जाना है तो मैं क्यों ही पैसा किसी से मांगू। तो तो मैंने किया जॉब दैनिक जागरण में। आईएमसी में जाने का एक ही था उद्देश्य कि वहाँ जॉब मिल जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, और हो भी गया दैनिक जागरण में। और वहाँ पर मुझे 11,800 रुपया मुझे मिलता था, और हालांकि कभी 11,800 शायद एक दो बार ही मिला होगा, क्योंकि कई बार छुट्टी मैं ले ही लेता था प्ले के सिलसिले में, तो कभी मेरे पूरे पैसे नहीं आते थे, है ना। और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ पैसे 3-4 महीने के लिए हो गए मुंबई में जाने के लिए, तो वैसे ही मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं आ गया मुंबई। गरीब रथ पकड़ा था निजामुद्दीन से, 7 अक्टूबर 2017 को आ गया था मैं।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल डेट याद है
1: हाँ जी,
0: एकदम।
1: उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
0: और वो जो कदम आपके पड़े थे मुंबई में, उसकी याद, वो जो पहला दिन था, उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए कि बस अब मैं मुंबई आ गया हूं, तो कैसा रहा? पहले से प्लान करके आए थे कहाँ रहना है, किस तरह से वो दिन गुजरा, क्या प्लानिंग थी? अगर उस पहले दिन को याद करते हैं आप, मुंबई के पहले दिन को।
1: पहले दिन तो ये था कि एक ऐसा लड़का जो इस महानगर में आकर के एकदम, जैसे होता है ना कोई बदहवास गुमसुम सा लड़का किसी चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, अफरा तफरी मचा हुआ है, उस तरह से मैं महसूस करता हूँ अभी खुद को जब पीछे मुड़ के देखता हूँ। तो कुछ भी आइडिया नहीं था, आज मतलब 8-9 साल पहले की बात है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ लगता क्या हिम्मत था उस लड़के में। आज का चंदन तो नहीं आता, है ना,
0: जी
1: 50 चीज़ें सोचता। उस समय कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे लगा कि क्या होगा, बुरी से बुरी चीज़ों के लिए मैं तैयार था। मुंबई आया और बांद्रा रेलवे स्टेशन, वहाँ उतरा, और सबसे पहले मतलब थोड़ा सा ये था कि सब लोग चले जाएं, इस धरती पे पहली बार आया हूँ तो एक बार उसको थोड़ा सा नमन कर लूँ, प्रणाम कर लूँ।
0: अच्छा
1: तो मेरे बॉगी में जितने भी लोग थे वो सब उतर गए। उसके बाद जब देखा कि सब लोग उतर गए हैं, फिर मैं चुपके से अपना इधर रुमाल नीचे गिराया ताकि कोई देख न ले कि ये क्या कर रहा। फिर रुमाल के बहाने अच्छे से उस धरती को प्रणाम किया कि अब तो आ गया हूँ, जो होगा अब आपके हवाले, आ गया हूँ तो रख लेना अपने पास, वापस
0: बिल्कुल
1: जाने मत देना। और मन में ये भी विश्वास था कि आया हूँ तो अब सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। तो बस फिर उसके बाद से शुरू हो गया, रोज सुबह उठ के वही सत्तू पी के चावल दाल खा के निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और ये था कि अगर इस महीने काम नहीं लिया
0: जी
1: तो फिर अगले महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हर महीने और हर दिन ये सोच के निकलता था कि आज मुझे एक दिन का भी काम मुझे ले लेना है। और उस समय तो टीवी में वो क्राइम अलर्ट, फियर फाइल्स, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, तो मैं कहीं चोर बन जाता, कभी पुलिस बन जाता, कभी ड्राइवर बन जाता, कभी नौकर बन जाता। तो एक दो दिन, 3 दिन अगर महीने में मुझे काम मिल भी गया तो उससे मेरे महीने भर का गुजारा हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था मेरा।
0: और कहीं आपने कहा है कि वो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं,
1: हाँ जी,
0: स्ट्रगल नहीं था वो काम करना या ऑडिशंस की तलाश करना, वो कहीं ना कहीं मजेदार था आपके लिए,
1: मजेदार तो
0: ये
1: बिल्कुल
0: जीवन
1: था, बिल्कुल था।
0: है
1: वो
0: ना, उसको आप स्ट्रगल की तरह नहीं
1: कभी
0: लेते।
1: भी नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि अगर वो दिन नहीं होते मेरी जिंदगी में
0: जी
1: तो मैं आज जितनी मजबूती के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, या मुंबई में हूँ, या कभी ऑडिशन पे या कहीं सेट पे जाता हूँ,
0: जी
1: ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता।
0: जी
1: तो वो दिन बहुत जरूरी थे, वो
0: बिल्कुल
1: अनुभव बहुत जरूरी था। तभी तो आज जब चीजें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत ज्यादा उड़ता नहीं हूँ, उछलता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वैसे दिन भी देखे हैं कि सच में मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था
0: अच्छा
1: क्योंकि वहाँ भरपेट अच्छा खाना मुझे मिल जाए,
0: जी
1: है ना। और जाता क्या था, एक दो दिन रुक ही जाता था मैं वहाँ
0: ओके
1: कि 2-3 दिन में जितना भरपेट खा लूँ ताकि फिर से मैं वापस जब रामनगर वर्सोवा में जाऊँ तो मेरे पास ताकत हो ऑडिशन के लिए, पैदल चलने के लिए। मैं पैदल बहुत चलता था,
0: जी
1: वर्सोवा विलेज से निकलता था यारी रोड होते हुए रामनगर, फिर वहाँ से 7 बंगला होते हुए, 4 बंगला सिग्नल के पास भी महाड़ा में कुछ ऑडिशन होते थे, वहाँ से होते हुए फिर इन्फिनिटी या फिर उधर यशराज लेन होते हुए शशि सुमित, ये सब मैं चक्कर लगाया करता था, और
0: अच्छा
1: सब पैदल क्योंकि ऑटो के पैसे बड़े महंगे मेरे लिए हो जाते थे।
0: बिल्कुल
1: तो मैं पैदल ही निकलता, कहीं पसीने से तर बतर हो गया तो रिसेप्शन पे 5-10 मिनट रुक के पसीने सुखा के अच्छे से उनसे थोड़ा पानी पी करके फिर मैं ऑडिशन देता था, और ये बदस्तूर चलता रहा। कमाल की बात यह है कि मेरे जूते बड़े गंदे हो गए थे, पुराने थे। अच्छा मैं ये सब बात सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने देखा है, भोगा है, मेरे आसपास वाले सब जानते हैं, इसलिए ये सब चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके माध्यम से श्रोता को बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे जूते बड़े गंदे थे, बहुत पुराने हो गए थे।
0: अच्छा,
1: तो मैं एक गया जूता लेने के लिए, अंधेरी स्टेशन के सामने एक शोरूम था उसमें।
0: अच्छा।
1: तो मैंने दुकानदार को बोला कि एक ऐसा जूता दो जो फटे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पैदल चलना होता है। मैं रोज 12 से 15 20 किलोमीटर चलता था ऑडिशन के लिए, तो और ऐसा दो कि वो ऑलरेडी गंदा ही दिखे।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो एक भूरा कलर का जूता मैंने पसंद किया।
0: अच्छा।
1: उसमें सोल वगैरह कुछ नहीं था, तो वो जूता मैंने लिए और वही पहन करके पूरा ऑडिशन घूमते रहता था मैं।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह की दीवानगी और पागलपन था। और एक बार रघुवीर सर की जो मैडम है रोशनी मैम, उन्होंने देखा कि भाई तेरे जूते बड़े अजीब से हैं यार, तो उन्होंने रघुवीर सर के दो तीन जूते मुझे दिए जो पुराने, मतलब जो नहीं पहनते थे वो।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे दो जूते दिए थे, तो वही दो जूते फिर समझिए कि बहुत काम आया। फिर एक डेढ़ दो साल तक वही जूते पहन पहन के मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं आज यहाँ बैठा हूं ना, तो सिर्फ इसमें मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मदद है,
0: आशीर्वाद है,
1: आशीर्वाद है। अगर वो लोग नहीं साथ में होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
0: चलिए यहाँ सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
1: ओके।
0: कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप?
1: तो विविध भारती पे जब आप पहले हेलो फरमाइश वगैरह सुनते थे ना, तो एक गाने का बहुत ज्यादा फरमाइश आता था, तो वो गाना आज भी मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो है मोहरा फिल्म का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैंने कहा था ना, मैं सारे बचपन के सारे गाने लेकर के
0: बिल्कुल सुनवाते हैं गीत।
1: हाँ जी।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आप

0: आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा सारा साथ
4: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें साझा करेंगे, सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
4: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
4: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: विविध भारती
2: रंग तरंग।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। ये है बेगम अख्तर की आवाज, शायर शकील बदायूनी, संगीत खैर।

बेगम अख्तर की आवाज में ये गजल आपने सुनी, और अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजों में ये गीत। लेस्ली लेविस का लिखा हुआ गाना, संगीत लेस्ली लेविस और श्री जयदेव का, एल्बम का नाम आत्मा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आशा भोसले की आवाज मजरू सुल्तानपुरी के बोल एल्बम आपकी आशा।

अलीशाज लव नोट्स, ये एल्बम का नाम है। अलीशा चिनॉय की आवाज, नितिन रायकवार के बोल, संगीत है संदीप चौटा का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: देखा है तेरी आंखों को, ये एल्बम का नाम है, आवाज, गीत और संगीत जयवालिया का।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें साहिर होशियारपुरी के शब्द हैं, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

0: बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब आपको सुनवाते हैं वेणुगोपाल गोस्वामी की आवाज में, ये पारंपरिक रचना, संगीत भी वेणुगोपाल का है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: रीटा गांगुली की आवाज, संगीत विश्वमोहन भट्ट का।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति परवीन सुल्ताना और जगजीत कौर की आवाजें माया गोविंद के बोल खय्याम का संगीत एल्बम रजिया सुल्तान।

झुमगा ने को जाए झुम्मा दिन की लड़िया कारी कारी प्यारी प्यारी मस्तवारी रत नारी लाग तक सारी न्यारी कजदारी अखिया राजे महाराजे सब साजे बाजे गाजे लाए भेंट उपहार तलवार ने के धनिया धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे कतीर कचाई ताता सही ताता सही झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झुम झ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों के कार्यान्वयन, निर्णय लेने में दृढ़ता, पारदर्शिता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के

0: मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जलंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 72,906 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आरडी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम बुलंदी।
1: बोल हाय भंस, हाय लेट्स गो।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवाते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गानों को। लीजिए अब सुनिए अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म का गाना, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
4: यादों की महफिल इस कार्यक्रम का अगला गाना अग्नि परीक्षा, इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, योगेश के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: येसुदास और आशा भोंसले की आवाजों में लीजिए अब सुनिए योगेश का लिखा हुआ गाना। बप्पी लाहिरी का संगीत, फिल्म का नाम है अपने पराए।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए दो प्रेमी, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: छनकी के ना
2: छनकी छनकी।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम हम 5।

लीजिए अब सुनिए हरजाई फिल्म का गाना। आवाज किशोर कुमार की है, विठल भाई पटेल ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बंदिश फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
2: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह

सेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह

0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना आवश्यक है। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति में लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद आज प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। ये बढ़ोतरी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के उद्देश्य से की गई है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज लगभग 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 72,827 पर, जबकि निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 22,659 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He said that over the past 12 years, the situation has changed completely.
2: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
1: Home Minister Amit Shah has hailed the completion of 25 years of Prime Minister Modi's public service and described it as a golden and historic day. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha Seva Jyoti Yatra in Gurugram today, he stated that under Prime Minister Modi's leadership, significant work was accomplished, including the abrogation of Article 370, the elimination of nationalism, and the elevation of the country's infrastructure to the highest level. The Reserve Bank of India, RBI, today raised key benchmark repo rate by 25 basis points to 5.5% in a bid to tame rising inflation amidst global uncertainties. Announcing the bi-monthly monetary policy, RBI Governor Sanjay Malhotra said, "The Monetary Policy Committee unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points."
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%. The MPC also decided to change the stance to calibrated tightening by a majority of

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अनुभव को बताया अपनी सबसे बड़ी पूंजी। झारखंड भर में उत्साह के साथ सुनी गई प्रधानमंत्री की बात। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने विभागीय कार्यों में सुस्ती बरतने वालों पर दिखाई सख्ती। मेदिनीनगर के कार्यपालक, सहायक और कनीय अभियंता को जारी किया शो कॉज। जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। दो शातिर आरोपी पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। राज्य के कई हिस्सों में आज वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की दी चेतावनी। और भारत वेस्टइंडीज महामुकाबले के लिए आज रांची पहुंचेंगे क्रिकेट के धुरंधर। सुरक्षा सख्त, ट्रैफिक एसपी ने जारी की रूट और पार्किंग एडवाइजरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का अटूट विश्वास और कार्यकर्ताओं का समर्पण उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर उन्होंने 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अनुभव को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताया।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: इधर झारखंड में भी सेवा ज्योति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सभा का भव्य आयोजन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इसी कड़ी में रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक कार्यकाल की सराहना की।
3: देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 12

0: साल के अंदर 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। आयुष्मान भारत, इसमें 9 करोड़ 32 लाख लोग अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा लिए। पिछले 6 सालों से गरीबों को 5-5 केजी राशन, यही मोदी है। स्काई रूट, हमारे युवाओं ने प्रधानमंत्री के मोटिवेशन से स्पेस में झंडा गाड़ दिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम आपको एक उदाहरण दिखा रहे हैं कि कैसे इस विजन को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: झारखंड के सुदूर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में पक्की सड़कों का जाल अब विकास की नई कहानी लिख रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भारी भरकम बजट से मंजूर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण से राज्य के आकांक्षी जिलों को बड़ी सौगात मिली है। इसी कड़ी में उग्रवाद और दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे लातेहार जिले के प्रभावित इलाकों में अब महज 100 की आबादी वाली छोटी बस्तियां भी हर मौसम में चलने वाली बारहमासी सड़कों से जुड़ सकेंगी। योजना के इसी महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब तक करीब 8 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनी है और इनमें से करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें पिछले 10-11 साल में बनी है।
2: लातेहार में अब तक 40.5 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और लगभग 900 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें मंजूर की जा चुकी हैं। विशेष जनजाति योजना के तहत दुर्गम पहाड़ी गांवों तक भी पक्की राह पहुंच रही हैं। नई सड़कों के बनने से ग्रामीण काफी उत्साहित हैं।
4: पहले तो बहुत जर्जर स्थिति में हमारा क्षेत्र का ये जो बाईपास रोड था, लेकिन अभी सड़क बनने से हमारा क्षेत्र का एक विकास का पैमाना देखा जा सकता है और आगमन का साधन बहुत अच्छा हो गया है। हम लोग कॉलेज या शहर की ओर जाते हैं तो सेफ्टी तरीके से आना जाना, कोई परेशानी पैसा है नहीं।
5: हमारे गांव में सड़क पहले खराब थी, अब पीएम जुजवाई से बन गया है तो आने जाने में सुविधा अच्छा से।
2: मनिका, हिरहंज और बालूमात जैसे इलाकों में पुलों और सड़कों की नई मंजूर योजनाओं से आने वाले दिनों में लातेहार की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री के जन सेवा से देश सेवा के संकल्प को धरातल पर उतारती यह योजना लातेहार के आदिवासियों के जीवन को सुगम बना रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए लातेहार से संजय तिवारी के साथ रांची से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
1: आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की है। मंत्री ने जल जीवन मिशन की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए मेदिनीनगर के कार्यपालक, सहायक और कनीय अभियंता को शो कॉज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित की योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: इस समीक्षा बैठक में अभियंताओं के साथ साथ संवेदकों को भी बुलाया गया, दोनों को संयुक्त बैठक रखे थे और उसमें साफ साफ निर्देश दिया गया है कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई कार्रवाइयां भी कल निर्देश दिए हैं, योजनाओं को रिसाइन करने का भी निर्देश दिया है। शेष बचे को दिसंबर तक का अवसर दिया है, दिसंबर तक अगर अनुपालन साक्षर नहीं हुआ फिर बैठक करके कार्रवाई करेंगे।
1: जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में मरीन ड्राइव पर कल रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस एक फायरिंग कांड के आरोपी मोहन यादव और अजीत मंडल को हथियार बरामदगी के लिए ले गई थी। इसी दौरान उन्होंने भागने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। CTSP ललित मीणा ने इसकी पुष्टि की है।
7: चोट लगी, गोली लगी और दिन दहाड़े अराजकता का

0: माहौल पैदा करना चाह रहे थे और मैसेज एकदम क्लियर है कि सप्ताह भर के अंदर अंदर जिस तरीके से पुलिस ने उनको खोज निकाला, इस प्रकार से अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कहीं पे भी चला जाएगा, कहीं पे भी अपना छुपने की प्रयास करेगा या कुछ अपना अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेगा तो छोड़ दिया जाएगा, उसको कम से कम समय में उस पर कार्रवाई भी होगी।
1: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स लगभग 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 72,906 पर और निफ्टी 89 अंक गिरकर 22,687 पर आ गया था। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,31,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के कई हिस्सों के लिए आज विशेष अलर्ट जारी किया है। राज्य में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका है, साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। रांची के जेएससीएस स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज टी20 मैच के लिए आज दोपहर बाद दोनों टीमें राजधानी पहुंच रही हैं। मैच को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि 9 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अनुभव को बताया अपनी सबसे बड़ी पूंजी। झारखंड भर में उत्साह के साथ सुनी गई प्रधानमंत्री की बात। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने विभागीय कार्यों में सुस्ती बरतने वालों पर दिखाई सख्ती। मेदिनीनगर के कार्यपालक, सहायक और कनीय अभियंता को जारी किया शो कॉज। जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 2 शातिर आरोपी पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। राज्य के कई हिस्सों में आज वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की दी चेतावनी। और भारत वेस्टइंडीज महामुकाबले के लिए आज रांची पहुंचेंगे क्रिकेट के धुरंधर। सुरक्षा सख्त, ट्रैफिक एसपी ने जारी की रूट और पार्किंग एडवाइजरी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

कुछ इसी तरह की कहानियां हमने भी अपनी दादी नानी और अपने पुरखों से सुनी और उन कहानियों को सुनने में बड़ा आनंद आता था और आनंद के साथ साथ हमें कई बातों की सीख भी तो मिलती थी ना, इसीलिए तो वो कहानियां बनाई और सुनाई जाती थी। एक साथी ने बहुत सुंदर बात लिखी है, उनकी ये बातें हमारे दिल को छू गई। लिखा है कि सुनना यानी श्रवण केवल एक शारीरिक क्रिया मात्र नहीं है बल्कि ज्ञानार्जन और आत्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। हमारे देश में अनादिकाल से श्रुति परंपरा रही है, गुरु द्वारा कहे जाने वाले वेदों और उपनिषदों के मंत्रों और ऋचाओं को सुनकर अपने उनके गूढ़ अर्थ समझकर चेतना में आत्मसात किया जाता था और एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ उस मंत्र में छुपे गूढ़ अर्थ और भावना से तादात्म्य स्थापित होता था। गुरु के द्वारा कहे जाने वाले मंत्रों के भाषा प्रवाह, आरोह अवरोह और अभिव्यक्ति के सूक्ष्म भेदों को बहुत गहराई से आत्मसात किया जाता था, जिससे सुनने वाले को वाक सिद्धि यानी प्रभावशाली रूप से अपनी बात कहने की कला में निखार आ जाता है। बहुत सुंदर बात आपकी। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना और सुनना ही व्यक्तित्व का परिचायक है। संक्षिप्तता में पूर्णता प्रकाशित करती वाणी कहनी चाहिए, भाषा में शालीनता परिपक्वता परमावश्यक है। एक साथी लिख रहे हैं कि अधिक बोलने से शब्दों का महत्व कम हो जाता है और अनजाने में दूरी बढ़ जाती है, पर ज्यादा सुनने से हम बेहतर श्रोता बनते हैं और दूसरे को समझने के साथ उसके मन की बात भी जान पाते हैं, इसलिए अधिक सुनना समझदार होने की निशानी है। और एक साथी ने तो ये बात लिखी है कि मैंने तो एक कप चाय बना ली है और सुरीला सफर प्रोग्राम सुन रही हूँ। धन्यवाद आपका। चलिए अब बाबू आना सुनते जाना, ये गाना संगीत किसका है आप बताइए।

0: ना जाना
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
0: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
0: बाबू आना, सुनते जाना।

जा रे तू पीस जाके गरम मसाला। तू जा जा घर

जुमरू फिल्म का गाना, इसमें संगीत किशोर कुमार का। एक साथी की बात, पहले हर परिवार में रिश्तेदारी में कहानी सुनाने वाले हुआ करते थे, जो बड़े तन्मय होकर कहानी सुनाते थे, और कहानी अगर एक दिन में खत्म ना हो तो फिर दूसरे दिन शुरू होती थी, और हम सभी भी सुनते थे, क्योंकि कहते हैं कि अधूरी कहानी सुनने पर रास्ता भटकने का डर रहता है, इसलिए पूरी कहानी सुनना जरूरी है। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अगर चांदी है तो सुनना सोना है। एक अच्छा वक्ता होने के साथ आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनकर आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। ये हुनर न केवल हमें एक बेहतरीन इंसान बनाता है, बल्कि समाज में संवादहीनता की खाई को भी पाटता है। केवल सुनना एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें आवाजें हमारे कानों तक पहुंचती है। ध्यान से सुनना ये एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। इसमें हम सामने वाले के शब्दों के साथ साथ उसकी भावनाओं, लहजे और अनकही बातों, यानी कि बॉडी लैंग्वेज को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए सुनना एक हुनर या कला कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वारंट फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत, दो कलाकार कौन है आप बताइए।

देव आनंद और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रही हैं कि सुनना जहां एक बड़ी कला है, वहीं समय पर सटीक उत्तर देना भी उतना ही जरूरी है, वरना लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी या सहमति समझ लेते हैं। सुनने और जवाब देने का संतुलन, पहले सामने वाले की बात को पूरे धैर्य और ध्यान से सुने ताकि आप उसके संदर्भ को पूरी तरह समझ सके। जब बात पूरी हो जाए तो अपनी बात को स्पष्ट और संयम के साथ रखें ताकि गलतफहमी ना फैले। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि सुनना सुनाना जीवन के दो अनमोल पहलू है जो हमारे दिलों को आपस में जोड़ने वाला नाजुक रेशम धागा है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तब दूसरों के अस्तित्व को, उनके जज्बात को, एहसासों को अपनाते हैं, निःशब्द मान्यता देते हैं, तो दूसरी ओर सुनना यानी खुद की भावनाएं, अनुभव और सपनों को आवाज का लहजा देकर दूसरों तक पहुंचा देना, दिल में उतार देना ही, जिससे मन हल्का हो जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि जब मैं घर पर ही हूं और धर्म पत्नी कहे कि सुनिए जी, तो एक बार मैं न सुनने की एक्टिंग करता हूं, फिर कहती है सुनिए जी, ये सुनकर मैं आनंदित होकर प्यार से कहता हूं कहिए जी। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक चुप, और ये आगे लिख रहे हैं कि आगे क्या है मैं भूल गई हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करना है, न बोलने की न चुप रहने की। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं, सुजाता फिल्म का गाना, एस डी बर्मन की आवाज़।

सुजाता फिल्म का गाना सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया गया। एक साथी लिख रहे हैं कि एक प्यारी सी बात, कम बोलना कमजोरी नहीं एक खूबसूरत समझदारी है, जब शब्द कम होते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, बस उसे सुनने वाला दिल चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सुनना अमूल्य वरदान है, भगवान की तरफ से सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, सुनाना ये जरूरी नहीं है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि बिना सोचे बहुत ज्यादा बोलने पर वह बगुले वाली हालत हो जाएगी, मुंह से आया हुआ आहार जमीन पर गिर जाएगा। बगुला आसमान में चोंच में मछली पकड़ कर ले जा रहा था, किसी ने देखा और चिल्ला कर कहा, अरे बगुला सांप पकड़ा है कि मछली? बगुला सिर्फ सांप सुना, फटाक से बोलने के लिए मुंह खोला और मछली जमीन पर गिर गई। ये कहानी भी है और एक इसमें संदेश भी छुपा है। एक हमारे साथी की बात यह है कि कम कुछ सुनो और सुनाओ। मेरा मानना है कि यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं तो एक अच्छे श्रोता भी बनिए, ये नहीं बस अपनी ढपली और अपना राग। तो ये बात इन्होंने लिखी है, धन्यवाद। और अगला गाना सुहाग फिल्म का ये गाना है, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और परवीन बाबी पर फिल्माया गया है। शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

एक साथी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि सच कहें तो रेडियो से हमें सुनने का संस्कार मिलता है। हम 24 घंटे लगातार बोल नहीं सकते, मगर सुन जरूर सकते हैं। शायद इसलिए कुदरत ने हमें दो कान और एक जिह्वा प्रदान की है। सुनना भी वास्तव में एक कला ही है। प्रकृति के नजदीक खामोशी से सुनिए तो सही, न जाने कितनी मधुर दिव्य आवाजें आपको अथाह असीम शांति और सुकून देती हुई महसूस होंगी। किसी फूल पर मंडराते हुए मधुकर के गुंजन, मंद मंद समीर में घुलती हुई रागिनी, बहते दरिया की लहरों की अटखेलियां की स्वर लहरियां, किसी गौरी की चूड़ियों की खनक और पांवों में बसती पायल के सरगम, कहने का अभिप्राय यही है कि अच्छा सुनने का कौशल हमें मानसिक अवसाद से राहत दिलाता है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, किसी को बुरा लगे या भला, पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और एक साथी लिख रहे हैं कि इस समय मेरे ऑफिस में रखे रेडियो पर हाथ रखकर मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मैं बचपन से रेडियो पर विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनता था, आज भी सुनता हूं और आगे भी अंतिम सांसों तक सुनता रहूंगा। और एक साथी हमारे ये बात लिख रहे हैं कि हमें तो विविध भारती जो भी सुनाती हम चुपचाप सुनते रहते हैं और कहते भी हैं, लिखते भी हैं, क्योंकि विविध भारती हमारी अपनी है। आपके इस प्यार के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सावन भादो फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए।

एक हमारे साथी ने बहुत सटीक बात लिखी, लिखते हैं कि अगर देखा जाए तो हमारी सारी मन स्थिति सुनने पर ही निर्भर करती है। दूर बैठे किसी का फोन भी आ जाए और कोई अच्छी खबर देते तो हम खुश हो जाते हैं, परेशानी कम हो जाती है। सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ सुनने पर ही तो निर्भर होता है। सबसे पहले अगर कोई मन स्थिति को बदलने में सक्षम है तो वो हमारी श्रवण शक्ति ही है। वहीं किसी सुंदर भजन या गीत को सुन ले तो मन आनंद से भर जाता है। कितनी सही बात है ना कि सुनकर ही तो हमें मन को, हमारे मन को खुशी मिलती है, और कोई बुरी खबर सुन ले तो मन उदास भी हो जाता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना, शब्दों को सुनना भर नहीं, उसकी आवाज में छिपी उदासी को सुनना है, उसकी खामोशी में ठहरे अनगिनत सवालों को सुनना है। सामने वाला जब अपनी कहानी कहता है तो वो केवल शब्द नहीं कहता, वह अपने भीतर की परतें खोलता है, अपनी खुशियां, अपनी शिकायतें, अपने अनकहे एहसास हमारे सामने रख देता है। इसलिए खामोशी से किसी को सुनना बेहद जरूरी है। चलिए अगला गीत अब सुनते हैं, रोटी फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल के वृद्ध माता पिता जिनके बच्चे बाहर हैं और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी बातें सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे में रिश्तेदार और पड़ोसियों को इतना तो करना चाहिए कि उनके पास बैठकर इत्मीनान से उनकी बातें सुने और उनको भी कोई साथी मिलेगा और उपयोगी बातें सुनने को मिलेगी। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज के

में प्रत्येक इंसान में जो एक चीज गायब दिखती है वो है सुनना। इंसान नहीं जानता कि सुनना भी एक तीर्थ है। ये विडंबना है कि हर इंसान सिर्फ बोल रहा है, सुनना बिल्कुल अनचाही सी चीज हो गई है, एक सच जो इंसान नहीं जानता। जिसने सिर्फ और सिर्फ बोलने को तरजीह दी और सुनना छोड़ दिया, उसने अनजाने में धीरज, गहराई और रिश्तों का मोल खो दिया है। चलिए अगला और अंतिम गाना, उजाला फिल्म का गाना है ये, शम्मी कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गाना।

यही था आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अंतिम गाना, और आपने इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक ध्यान से सुना और विषय को लेकर बहुत सारी बातें आपने लिखी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आपको ये सुनाना चाहते हैं कि अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन ये भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति

0: यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
1: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को

0: नियंत्रित करने के लिए लगभग चार वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
2: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
1: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
4: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
3: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
5: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
3: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
0: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर. सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बहुरानी फिल्म का गाना. लता मंगेशकर की आवाज, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत सी रामचंद्र का.

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: बीन का जादू, ये फिल्म का नाम है। सुमन कल्याणपुर की आवाज, बी डी मिश्रा का लिखा हुआ गाना, संगीत एस एन त्रिपाठी का।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: हर हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम कमाल हो गया है।
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा ज्योति यात्रा के तहत विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। साक्षी के बौद्ध मंदिर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक पूर्णिमा साहू और सांसद विद्युत वरण महतो समेत भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर मशाल यात्रा भी निकाली गयी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री को 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी।
2: गुजरात के मुख्यमंत्री लाल से लेकर भारत के प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण योजना जो देश में चलाई, जो स्वर्णिम काल है।
1: बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने सेवा ज्योति यात्रा सह विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया। सर्किट हाउस के सामने मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफर और उपलब्धियों का उल्लेख किया। पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने सर्किट हाउस चौक का नाम बदलकर विकसित भारत चौक करने की घोषणा की। पूर्व विधायक बिरंची नारायण भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गढ़वा के टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का ऑनलाइन संबोधन सुना। राष्ट्रगान और गीत के बाद वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में ज्योति मशाल जलाकर देश के प्रति निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने की शपथ ली गई। कोडरमा ब्लॉक मैदान में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में विधायक डॉ. नीरा यादव समेत बड़ी संख्या में महिलाएं और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड स्थित दूधमटिया में आज वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में शुरू हुई यह मुहिम अब 2000 से अधिक गांवों तक पहुंच चुकी है और लोगों में वृक्ष तथा जंगलों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है।
3: चूंकि जंगल से ही हमें सब चीज मिलता है तो इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। इनके संरक्षण को लेकर के ही जो हम लोग का अभियान है वृक्ष रक्षा बंधन का है, उसके क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये यहाँ पर 31वां साल इसका चल रहा है और निश्चित रूप से इससे जो लोगों को प्रेरणा मिलती है वृक्षों को बचाने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को अपने आसपास के पेड़ों को जरूर बचाना चाहिए।
1: पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्यों और भुगतान से जुड़े एनसीसीएफ विवाद को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने दो पूर्व परीक्षा नियंत्रक

0: भुगतान नहीं होने पर समाहरणालय घेराव की चेतावनी दी गई है। साहिबगंज में पेंशन फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। न्यायालय से प्राप्त इश्तेहार बोरियो थाना क्षेत्र के तेलुमांझी टोला निवासी अनवारुल अंसारी और बरा बयासी तुमकी टोला निवासी रोहित कुमार साह के घर पर चस्पा दिया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों को जांच के दौरान प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सखी सहेली के लिए कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सखियों को सहेलियों को चंचल वर्मा का नमस्कार
2: और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: तो कैसी हैं मंदाकिनी जी?
2: भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
1: मेरे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वाले भी खुश होंगे और अभी जो ये माहौल चल रहा है उत्सव का, तैयारियों का, इसमें लगे होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल लगे होंगे। और देखिए, उत्सव तो हर बात में है। अभी हमारे देश की जो चार बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है उसका भी पूरा देश जो है उत्सव मना रहा है ना। देखिए, चार बेटियां 400 मीटर की चार चार जिम्मेदारियों को लेकर, एक तिरंगे का सपना था उनका।
1: क्या बात!
2: और यही थी भारत की महिला जिन्होंने 4x400 मीटर रिले टीम की जो कहानी हमारे देश को दी है, जिस पर आज हम गर्व कर रहे हैं। किरण जी हैं वो, किरण पहल ने दौड़ की शुरुआत की और उसके बाद MR पुवम्मा, फिर प्राची चौधरी और आखिर चरण में विथ्या रामराज ने मोर्चा संभाला। और चंचल, शुरुआत में भारत तीसरे स्थान पर था लेकिन पुवम्मा ने रफ्तार बढ़ाकर टीम को आगे पहुंचाया और प्राची ने उसकी बढ़त को कायम रखा। और आखिरी 400 मीटर में विथ्या पर सबसे बड़ा दबाव था और बहरीन की धाविका लगातार करीब आ रही थी, लेकिन विथ्या ने आखिरी पलों में हिम्मत नहीं छोड़ी और कुल मिलाकर इन चार बेटियों ने 3 मिनट में 29.69 सेकंड में पूरा किया अपना राउंड और स्वर्ण पदक जीत लिया।
1: तो हम भी बधाई देते हैं इन चारों बेटियों को और देश की सभी बेटियों को जो इतनी लंबी दौड़ लगाने का, ऊंची छलांग लगाने का, पंख फैलाकर उड़ने का सपना देख रही हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे खूबसूरत बात यह है चंचल कि इन चारों की कहानी अलग है, संघर्ष बिल्कुल अलग है ना, लेकिन मंजिल एक थी। क्या? कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना। और ये जो जीत है हर उस लड़की के लिए, हर उस महिला के लिए, युवती के लिए, स्त्री के लिए एक संदेश है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर कदम रुकते नहीं है, हौसला बनाए रखती हैं बेटियां, तो मंजिल की रफ्तार बिल्कुल आप पा सकती हैं।
1: और इसमें सबसे बड़े साथ की जरूरत होती है परिवार के, तो बेटियों का हौसला बढ़ाइए, उनके हौसले को कभी भी गिरने मत दीजिए। और बता देते हैं कि आज किस विषय पर सखी सहेलियां बात होगी। तो महत्वाकांक्षा की बात होगी और जब महत्वाकांक्षी

0: होती हैं, बेटियां या कोई भी, तो उनका भविष्य निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है, इस बारे में बात होगी। और आज साड़ियों का दिन है, यानी बुधवार के दिन हम किसी एक खास साड़ी की बात करते हैं, तो नंदना साड़ी की बात की जाएगी। और फिर हम हमारे जो श्रोता हैं किसी एक शब्द पर अपने विचार हमें देने वाले हैं, तो वो शब्द है प्रकृति। यानी
1: क्या बात है,
0: शब्द हमारा और विचार आपके।
1: बिल्कुल, तो प्रकृति के बारे में ये बताइए कि वो आप प्रकृति से प्रेम कितना करते हैं। अभी आप प्रकृति का डेफिनेशन तो लिख देंगे कि प्रकृति ये है, हम आप प्रकृति से कितना प्यार करते हैं, आपने अपने जीवन में कितने पौधे लगाए, पेड़ लगाए कि नहीं, अपने घरों के आसपास आपने प्रकृति को स्थान दिया कि नहीं।
0: और प्रकृति का अर्थ हर जगह जाकर थोड़ा सा बदल जाता है। हम कहते हैं ना कि भाई आग की प्रकृति है जलाना, तो यहाँ भी प्रकृति का अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं ना कि तीन तरह की प्रकृति के शरीर होते हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। तो प्रकृति का जो शब्द है वो वहीं कहीं कहीं उसका अर्थ भी बदलता है।
1: आप इसको बड़े डेफिनेशन में ले सकते हैं। अब हमारे श्रोता किस अर्थ में प्रकृति को लेकर अपने विचार लिखेंगे, उसका हमें इंतजार रहेगा।
0: बिल्कुल, इसके अलावा विश्व कपास दिवस है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और गुड़ की मिठाई, यानी कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान उनका होता है, वो गुड़ की मिठाइयां किस तरह बनाते हैं, खाते हैं, इस पर बात होगी। लेकिन मिठाई की बात और मीठा सा गीत ना हो
1: बिल्कुल ये गीत होना चाहिए।

0: हाँ जी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा।
1: और हमारे जो साथी हैं सुनने वाले, वो भी हर जगह हमारे साथ होंगे। बहुत सारे संदेश वो हमें भेज रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण के बारे में। तो मंदाकिनी जी, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कुछ बड़ा सोचना या बड़ी अपेक्षाएं रखना। और देखा जाए तो एक सफल इंसान बनने के लिए ये जरूरी भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर हम एक दायरे में सिमट कर रह जाते हैं ना, तो किसी बड़े लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाता है।
0: मुश्किल हो जाता है। और चंचल, महत्वाकांक्षा या आवेग दोनों ही जो है हमारी एनर्जी होते हैं। बस दोनों में फर्क इतना ही है कि महत्वाकांक्षा में एक दिशा होती है और आवेग जब आता है तो उसमें गति होती है। और जब गति बिना दिशा के हो जाती है तो भविष्य नहीं बनता, बिखर जाता है। और महत्वाकांक्षा अकेली भी खतरनाक हो सकती है। तो परेशानी कब शुरू होती है? तब शुरू होती है जब महत्वाकांक्षा कब और कैसे को भूलकर सिर्फ क्या चाहिए पर अटक जाती।
1: बहुत सही बात बताई आपने मंदाकिनी जी। और इसी तरह की बड़ी इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं अगर आपकी हैं, जैसे भाई आपको इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, या बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने, इस तरह की जो भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कई बार ये जिंदगी में बोझ भी बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: भविष्य आदमी भविष्य की तरफ एक कल्पना के चित्र में ही जीने लगता है। उसे लगता है कि जब वो मिल जाएगा तब मुझे खुशी होगी। और वो जो दिन है ना कि ये मिलने पर खुशी होगी या ये महत्वाकांक्षा पूरी होने पे खुशी होगी, वो दिन जिंदगी में कभी भी नहीं
0: आता नहीं है। क्योंकि हम वैसी मेहनत नहीं करते ना चंचल, उस दिशा में हम अपना कार्य कर नहीं रहे होते, केवल ख्वाबों की दुनिया में बैठे होते हैं। इसलिए निराधार जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो हमें थकाती हैं, क्योंकि हम हर दिन खुद को असफल महसूस करते हैं। और आवेग जो है महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आवेग का अर्थ ही है बिना सोचे तुरंत एक्शन रिएक्शन दे देना, प्रतिक्रिया दे देना।
1: और इसीलिए केवल आवेग में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमें बहुत ज्यादा भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हर थोड़े समय के बाद अपने करियर की फील्ड को बदल लेना, जॉब को बदलना, दिखावे में आकर ईएमआई की सुविधाओं चीजें लेते जाना, गुस्से में इस्तीफा दे देना अपने नौकरी पर, किसी से रिश्ता तोड़ देना। तो आवेग में किसी भी तरह का निर्णय हो, चाहे वो निजी तौर पर हो या आपके कामकाजी तौर पर हो, ये आपको तकलीफ तो देगा ही देगा।
0: बिल्कुल देगा। और आपका जो एक हर्डल आपकी जिंदगी में हमेशा आती रहेगी आपके इस व्यवहार से भी। ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान यही है चंचल, कि महत्वाकांक्षा में अनुशासन को हम जोड़ें। सबसे बड़ी बात है कि भविष्य न तो सिर्फ सपने देखने से बनता है और न ही जोश से बनता है। एक सूत्र याद रखें हम कि महत्वाकांक्षा दिशा है, अनुशासन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, और आवेग जो है वो स्पीड ब्रेकर है।
1: हाँ, यानी कि जब भी आवेग आए तो थोड़ा थम जाइए, रुक जाइए, अपनी गति को धीमा कर दीजिए। और महत्वाकांक्षा सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल,
1: असली महत्वाकांक्षा शोर नहीं करती, वो चुपचाप से रोज हमें जगाती है। क्योंकि हमारी अगर कोई सच्ची महत्वाकांक्षा है तो वही हमारा भविष्य बना सकती है, अगर तीन चीजों से हम उसको जोड़ दें, अनुशासन, धैर्य और भविष्य।
0: बिल्कुल। और भविष्य में कुछ अच्छे आपको नतीजे चाहिए तो अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा छोटा कर लें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। 5 साल का लक्ष्य सीधे न देकर उसे 6 महीने के टुकड़ों में तोड़कर आप तैयारी कर सकते हैं, है ना।
1: और कोई भी बड़ा फैसला अगर आपको लेना है, जैसे नौकरी छोड़ना है, कोई बड़ा निवेश करना है, किसी को गुस्से में जवाब देना, इन सब के लिए अपने आप को हमेशा 2 से 3 दिन का समय दे देना चाहिए कि चलिए थोड़ा रुक जाए, फिर ये काम करेंगे। अगर नौकरी छोड़ने का झट से मन में विचार आया तो नहीं, कुछ रुक जाते हैं, आज ही नहीं छोड़ना। कोई बहुत बड़ा निवेश करने का सोचा, तब भी थोड़ा रुक जाइए। तो जैसे शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं ना, तो वहाँ बहुत जल्दी अप डाउन आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो कोई भी बड़ा निर्णय है, थोड़ा सा रोक लें अपने आप को, क्योंकि मनोविज्ञान भी कहता है कि 90% आवेग जो है वो 72 घंटे में मर जाता है। इसी तरह से कोई बड़ा नुकसान अगर हमारा होने वाला है तो उससे भी हम बच जाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही बात कही। शेयर बाजार की तरह जो सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है ना, उस तरह से हमारे विचार भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अगर आपका फैसला जो है दृढ़ है तो वो कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, अटल होगा वो इरादा। तो भविष्य बनाने वाले काम का 80% समय बोरिंग होता है। रोज वही अभ्यास है, वही बचत है, वही पढ़ाई है, लेकिन जो व्यक्ति इस बोरियत को सह गया वो ही आगे निकल जाता है।
1: बिल्कुल। हर इंसान सोचता है कि बड़ा आदमी बनना है, ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, ना ही फैंटेसी है। महत्वाकांक्षा होती है हमारे भविष्य का नक्शा बनाना। और जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और नियोजनबद्ध तरीके से उस पर काम भी करते हैं, तो वही महत्वाकांक्षा है जो हमारा भविष्य बनाती है। क्योंकि इसमें क्या, कब, कैसे,
0: तीनों तीनों चीजें आती है। बिल्कुल, हाँ। बहुत अच्छी बात कही चंचल तूने। और पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था?
1: क्या कहा?
0: जो हमारे कितने बड़े आइडियल हैं, आज हाँ। भी
1: हम सबके लिए किसी ना किसी तरह से वो प्रेरणा के।
0: बिल्कुल, उन्होंने कहा था सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद न आने थे।
1: क्या बात,
0: मतलब सपना बड़ा रखो पर उसे पूरा करने के लिए रोज नींद कुर्बान करने की तैयारी में भी रखो।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से हमें अगर इसे आसानी से समझना चाहे तो महत्वाकांक्षा हमें गाड़ी में बिठाती है और आवेग उसका स्टेयरिंग छीन लेता है और अनुशासन जो है वो हमें
0: मंजिल तक पहुंचा देता है। और इसलिए बड़ा सोचो पर आज के छोटे फैसले को हल्के में मत लो, क्योंकि भविष्य कल नहीं बनता, वो आज के आवेग पर काबू पाने से बनता है।
1: और देखिए हमारे साथी लिख रहे हैं कि महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण, महत्वाकांक्षा है वो जीवन को आगे बढ़ने के लिए दिशा देती है। सपने तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें मेहनत, धैर्य और सही दिशा का साथ मिलता है। भविष्य अचानक से नहीं बनता, वो आज के छोटे छोटे प्रयासों और निर्णयों से आकार लेता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण उन्होंने भी दिया है और आगे लिख रहे हैं कि साधारण परिस्थितियों से आगे बढ़कर उन्होंने भी अपने ज्ञान, परिश्रम, दृढ़ संकल्प के बल पर ही देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्राप्त किया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और उनका जीवन तो हमें सिखाता है चंचल,
1: हाँ।
0: कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, बड़े सपने और निरंतर प्रयास ही हमारा भविष्य बदल सकते हैं।
1: और भी आगे संदेश हैं?
0: बस अभी तो हमने इतने ही पढ़े हैं, एक गाना सुन ले ताकि कार्यक्रम की थोड़ी दिशा बदल जाए।
2: वो है कि मर कर भी तुमको जुदा

0: चंचल।
1: हाँ, तो बड़ा प्यारा गीत तुमने सुनवाया अभी, और हमारे श्रोता भी बहुत पसंद करते हैं इस गीत को, और साथ ही हमारी जो सखियां हैं वो पसंद करती हैं नंदना साड़ी को भी।
2: हाँ, और कई सखियां ऐसी भी हैं जिन्हें नंदना साड़ी के बारे में नहीं पता था। हमारी एक सखी ने लिखा भी है कि इस साड़ी के बारे में, भैया इसका नाम जो है उन्होंने
1: पहली
2: पहली
1: बार
2: बार सुना
1: सुना
2: है।
1: है।
2: तो चलिए बताते हैं कि नंदना साड़ी या नंदना प्रिंट मध्य प्रदेश के कोई एकदम गुमनाम 400 साल पुरानी ये कला है। और ये साड़ी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुरा और उम्मेदपुरा गाँव की एक कला है, और इसे वहीं के खास समुदाय के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से आज भी जिंदा रखा हुआ है।
1: तो ये नंदना जो प्रिंट है कोई बुनाई नहीं है चंचल, बल्कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और डाबू रेजिस्ट प्रिंट की एक तकनीक है। यानी पहले के समय में कुछ खास जनजाति की महिलाओं के मोटे सूती घाघरे लेंगे इसी प्रिंट के बनते थे, पर अब साड़ी, सूट, दुपट्टा, बेडशीट और सब इसी से बनने भी लग गए हैं। साथ ही नंदना साड़ी की खासियत यही है कि ये 100% प्राकृतिक और इको फ्रेंडली है। इसमें केमिकल नहीं लगता, इसके रंग बनते हैं नील यानी इंडिगो, अनार के छिलके, हरड़ा, अलेजरीन और लोहे के जंग जैसी चीजों से ये साड़ी बनती है, और कपड़े को नरम करने के लिए अरंडी के तेल और सोडा के पानी में इसको गलाया जाता है।
2: और देखिए ना, हमारी एक सखी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो कहती हैं कि मैं गुस्ताखी के लिए माफी मांगते हुए अपनी सखियों को इस सखी सहेली के मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी
1: क्या?
2: कि साड़ी के बारे में मेरा ये कहना है कि गूगल से हमें सभी तरह की जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से हम सभी बांटेंगे तो वो ज्यादा परफेक्ट होती है। तो अगर किसी के पास इस टाइप की साड़ी या इस टाइप के कपड़े होते हैं तो वो अपनी बात को साझा करें, और ये बड़ी अच्छी बात लिखी इन्होंने।
1: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात, इन्होंने हमारी बात कह दी एक तरह से। हम भी अपनी सखियों से अक्सर कहते हैं कि भाई आपके पास ये नंदना या कोई भी साड़ी है तो उसका जिक्र कीजिए। अभी भी हम कहेंगे अगर आपके पास नंदना साड़ी है और या आप कभी लेने गई थी, आपको पसंद आई, आपने किसी को गिफ्ट दी, तो उसका जिक्र अभी आप कर सकती हैं, तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे।
2: तो ये जो साड़ी है इसका लॉट जो है वो लगभग 800 मीटर का होता है, और इसे तैयार करने में करीब करीब 18 स्टेप और 20 25 से 30 दिन की मेहनत लग जाती है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कपड़े को गलाना, अरंडी के तेल में भिगोना, तो सोडे से धुलाई करना, हरड़ा का पाउडर लगाना, बिछलाई यानी कि गोंद और मिट्टी की छपाई होती है ना, उसको रोकना, ब्लॉक की छपाई, नील में रंगाई, धूप में सुखाना, फिर अंत में धुलाई, और इतने स्टेप से होकर जब ये गुजरता है ना, तभी कपड़ा जो है वो पक्का
1: पक्का होता है। यानी ये वो हीना की तरह हो गई कि पिसकर ही हीना जो है रंग लाती है, है ना। और नंदना में पारंपरिक रूप से चार मुख्य बूटे होते हैं, और हर डिजाइन और मोटिफ का अलग मतलब होता है। मिर्ची का मतलब है तीखापन और बुरी नजर से बचाओ, तो चंपाकली का मतलब है कि इसे खास समुदाय की अविवाहित लड़कियां पहनती थी। अंबा का मतलब है कि इसे साड़ी और गर्भावस्था के समय शुभ माना जाता था। और जलम यानी बूटा का मतलब है, तो आजकल इनमें अमरूद, यूकेलिप्टिस, सागवान, नीम के पत्तों के इको प्रिंट भी बन।
2: और इस साड़ी में जो है रंग का विज्ञान और इसकी मान्यताएं वो भी अलग अलग हैं। नीले और हरे रंग जो हैं

0: वो इसीलिए खेत में जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए होता है ताकि वो गंदा कम दिखे।
1: अच्छा।
0: और नील को सबसे शुभ भी माना जाता है, इसीलिए कारीगर भी ये मानते हैं कि गाय जो है वो नील का पानी पीती है तो ताकतवर बनती है, और नील के लगे हाथ से खाना खाने से पेट की बीमारियां भी नहीं होती, कुछ पारंपरिक मान्यता है वहां।
1: अच्छा, ऐसा। तो ये साड़ी बनाते समय इन सब बातों का भी ख्याल रखते हैं। और नंदना साड़ी में जितनी बारीकी से काम किया जाता है तो साड़ी की कीमत भी उतनी ज्यादा, यानी एक असली हाथ की बनी नंदना साड़ी 2500 से लेकर 8 से 10 हजार तक की होती है। और पहले तारापुर उमेदपुरा में लगभग 100 से ज्यादा परिवार ये काम करते थे, और अब सिर्फ 8-10 परिवार ही बचे हैं, क्योंकि ये बहुत थकाऊ और समय लेने वाला काम है, और बाजार में इसका केमिकल प्रिंट भी मुश्किल से मिलता होगा, तो कम लोग अब इसको बनाते हैं।
0: हाँ, क्योंकि कई बार कारीगरों को भी लगता है ना कि मेहनत बहुत ज्यादा है और उसकी अपेक्षा में जो दाम है वो उनको नहीं मिल पाते, और इस तरह से जो बहुत सारी कलाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हम सभी को मिलकर इनको बढ़ावा देना चाहिए, और इसीलिए सरकार अभी से GI टैग दिलाने की प्रक्रिया में है और इसका जरिया बना रही है। बनवारी जरिया, पवन जरिया को राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 और स्टेट अवार्ड 2002 और 2022 में भी मिल चुका है। व्यवसाय, राजनीति, फिल्म जगत, हर क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इस साड़ी को अपनी पसंद में शुमार करती हैं।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर है नंदना साड़ी। तो हमारी सखियां बताएं कि उनके पास नंदना साड़ी है भी कि नहीं।
0: तो हम एक गीत सुन लें।
1: हाँ।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
1: बिल्कुल, तो चंचल बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस इन दिनों हम मना रहे हैं, विश्व कपास दिवस, और इसकी बड़ी महत्ता है। हम सभी जानते हैं कि ये दिन जो है आज के दिन खास मनाया जाता है, और कपास को सफेद सोने के नाम से भी हम जानते हैं।
0: हाँ।
1: क्योंकि ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी है।
0: सही कहा मंदाकिनी जी, और इस दिन का आयोजन, इसकी जो पहल की गई थी वो 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में हुई, जब विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय में पहली बार कपास दिवस मनाया गया था। और इसे शुरू करने की मांग अफ्रीका के 4 सबसे कम विकसित कपास उत्पादक देशों ने की थी। ये 4 देश हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। और इन देशों ने कॉटन फोर भी कहा जाता है। आगे चलकर बाद में कोट डी या आईवोर भी इसमें शामिल हो गए।
1: हाँ बिल्कुल, 30 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और एक प्रस्ताव पारित करके 7 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाने का फैसला किया। और ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कपास दुनिया के 5 महाद्वीपों में करीब 75 से ज्यादा देशों में उगाई जाती है
0: जी।
1: और दुनिया भर के 10 करोड़ परिवार सीधे कपास उत्पादन से जुड़े हैं और लगभग 28 करोड़ लोग टेक्सटाइल सेक्टर में भी काम करते हैं।
0: बिल्कुल, जब भी हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो इस बात के महत्व को हम जरूर समझें कि बहुत सारे परिवार हैं जो इससे रोजी रोटी भी कमाते हैं, और बहुत सारे कहते ना कि अलग अलग कड़ियों से होकर कोई कपड़ा हम तक पहुंच पाता है।
1: वही तो अभी आपने कहा ना कि देखिए करीब 75 से ज्यादा देशों में ये कपास होती है, कितना महत्वपूर्ण है ये और कितना रोजगार मिलता है इससे ना।
0: और बहुत सारे कम विकसित देश हैं, उनके लिए कपास का कुल निर्यात 50% तक हिस्सा है। कपास से सिर्फ कपड़ा नहीं, कपास के बीज का तेल, पशु आहार और कागज भी बनता है। महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है इसमें। कपास चुनने, उसकी प्रोसेसिंग में 40% से ज्यादा काम जो है वो महिलाएं ही करती हैं। खाद्य और कृषि संगठन का हर प्रयास हर साल जैविक कपास, कम पानी वाली खेती और किसानों को उचित दाम मिले, इसी पर होता है।
1: हाँ, और अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की, तो भारत और कपास का बहुत ही गहरा संबंध है चंचल, और इसीलिए ये दिन भारत के लिए बहुत खास है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। दुनिया की 26% कपास ही उगती है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं, और भारत की कपास को काली मिट्टी में उगने के कारण उच्च गुणवत्ता का भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, और कपास की खेती में किसानों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती है ना, वो है जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग, किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम दाम मिलना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं वो होती हैं, चुनौतियां होती हैं। इसीलिए विश्व कपास दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि कपास को सिर्फ एक वस्तु या पदार्थ या नहीं समझा जाए, बल्कि गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के साधन के रूप में भी इसको हम देखें। और वैसे भी संयुक्त राष्ट्र ने इसकी परमानेंट थीम है, स्थायी थीम जो रखी हुई है वो है कॉटन फॉर गुड, लेकिन इस साल एक उपशीर्षक इसके साथ जोड़ा गया है, यानी 2026 के लिए जो थीम है वो है कॉटन फॉर गुड, बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्टनरशिप। इसका मतलब है कपास अच्छाई के लिए व्यापार, परिवर्तन, साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण
1: करना। बिल्कुल,
0: तो चलिए अभी गीत सुन ले
1: जी।

0: बहुत ही सुंदर गीत तुमने सुनवाया है चंचल, और हमारी सखियां और सखा इस गीत का आनंद भी ले रहे होंगे जैसे कि हम प्रकृति का आनंद लेते हैं।
1: हाँ। और प्रकृति जो शब्द है ये संस्कृत का बहुत गहरा शब्द है जो प्र और क्र इनसे मिलकर, जो इसके मूल शब्द हैं उनसे मिलकर बना है, और इसके कई मतलब अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। प्रकृति का सामान्य अर्थ वैसे अगर देखा जाए तो हम सभी जो समझते हैं वो नेचर या प्रकृति कुदरत से ज्यादा समझते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और प्रकृति मतलब वो जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, जैसे पेड़ पहाड़ नदी जानवर मौसम पर्यावरण ये सब चीजें, या हम कहते हैं ना अपनी प्रकृति के बारे में कि हम अगर किसी
0: हमारी प्रकृति ये है
1: तो वो भी हमने नहीं बनाई है। प्रकृति का मतलब ही ये है जो
0: कुदरत ने बनाया है। जी, तो आज हमने शब्द जो दिया था हमारे श्रोताओं को प्रकृति, और श्रोताओं ने अपने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिसका निर्माण प्रकृति, जिसका निर्माण इंसान ने नहीं ईश्वर ने किया है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें इंसान पेड़ पौधे जीव जंतु नदियां पर्वत समुद्र वायु मिट्टी समेत प्राकृतिक प्रक्रियाएं सभी शामिल हैं। संस्कृत में प्रकृति शब्द में प्राकृ से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है मूल स्रोत या मूल आधार जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और इसे कायम बनाए रखने में हम इंसानों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति ने अपनी गोद में बिठाकर जीव को उनकी जरूरत के अनुसार सुख सुविधा दी है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम इंसानों की बनती है। इंसान का प्रकृति से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा।
1: क्या बात है, अच्छा संदेश है। और प्रकृति शब्द पर हमारे जो श्रोता हैं वो विचार अपने अपने प्रकट कर रहे हैं। एक संदेश में लिखा गया है, प्रकृति का व्यापक अर्थ है संपूर्ण भौतिक जगत ब्रह्मांड, और इसमें पेड़ पौधे नदियां पहाड़ जीव जंतु पर्यावरण शामिल है जो इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए, प्रकृति प्रदत्त है। किसी भी प्राणी वस्तु का जन्मजात गुण उसका स्वभाव या प्रकृति कहलाता है। आग की प्रकृति गर्मी देना है। मनुष्य का शरीर भी प्रकृति के पांच बुनियादी तत्वों क्षिति यानी मिट्टी, जल पावक अग्नि, गगन आकाश और समीरा यानी वायु से मिलकर बना हुआ है। साधु और बिच्छू, बिच्छू का डंक मारना उसकी प्रकृति है, और उसके बाद साधु को उसी को
0: पानी से बचाना
1: की प्रकृति।
0: बहुत सुंदर बात, इन्होंने एक शब्द से कितनी ही बातें निकाल दी जिनका हमने कहा था कि आप किस अर्थ में प्रकृति को लेते हैं। प्रकृति, एक श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर फैले पेड़ पौधे नदियां पर्वत और खुले आसमान का नाम नहीं है, बल्कि जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए पानी, और जीने के लिए भोजन भी देती है।
1: मतलब प्रकृति कहते हैं ना कि हमारे स्वभाव को प्रकृति कहा जाता है, कि भाई इस इंसान की प्रकृति है बहुत गुस्सा करना, इस इंसान की प्रकृति है बहुत नरम शांत है ना, तो हमारे स्वभाव को भी प्रकृति कहा जाता है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि प्रकृति के अलग अलग अर्थ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हो सकते हैं। प्रकृति, एक संदेश में पढ़कर सुना रही हूं मंदाकिनी, जिसमें लिखा है कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर पेड़ पौधे पर्वत नदियां खुले आसमान का नाम नहीं, बल्कि ये जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, और जीने के लिए सबसे जरूरी चीज भोजन देती है।
0: बहुत अच्छा आपने लिखा है, कम शब्दों में गहरी बात लिख दी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति बड़ा बेमिसाल मुद्दा है, प्रकृति के साथ रहना और बड़ा होना सभी को लुभाता है। शाम को अस्त हुआ सूरज के नीचे सिर पर पगड़ी बांधा गडेरिया जब अपनी भेड़ बकरियों को हांकता है तो बड़ा लुभावना लगता है। सुबह में सिर पर डोकरी लेकर निकलती है मलान कितनी बेमिसाल लगती है, जब उसके हाथों में चूड़ियां और सिर पर धानी चुनरिया उड़ी हो, गली से जब वो जाती है नैना भिरम लगती है।
1: एक संदेश में लिखा है, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, हमारी माँ के समान है। यदि प्रकृति स्वच्छ सुंदर रहेगी तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
0: वहीं श्रोता का कहना है कि हमारे घर के आसपास पेड़ बहुत ही कम है, इसलिए मैंने तो छत पर ही करीब 40 गमले रख लिए हैं, नियमित देखभाल करती हूँ और इस तरह प्रकृति के बीच कुछ समय गुजार लेती हूँ। बिल्कुल अच्छा कहा आपने, गुजर जाता है आपका वक्त ऐसे तो।
1: और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि वो प्रकृति के बीच में आनंद लेते हैं, तो भाई इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा हमारे ही हाथों में है।
0: बिल्कुल।
1: और अब हमारे हाथों में है कि
0: एक गीत सुनवा दें।

0: अब हम क्या ढूंढने वाले हैं कि गुड़ हमने कहाँ रखा है रसोई
1: हाँ
0: में?
1: भाई, और इतने मीठे मीठे गाने सुन रहे हैं, थोड़ी सी मिठाई की बात ना हो, वो भी ऐसा मीठा जो हमारे सेहत के लिए नुकसान भी ना पहुंचाए, वो थी गुड़ की।
0: गुड़, बिल्कुल वही तो हमने कहा कि गुड़ एक पारंपरिक और कहते हैं कि अपरिष्कृत जो है प्राकृतिक मीठा ठोस पदार्थ इसको माना जाता है, जिसे गन्ने के रस या ताड़ या खजूर के रस को उबालकर और गाढ़ा तैयार करके बनाया जाता है, है ना? तो ये गुड़ जो है सफेद चीनी के बिल्कुल विपरीत होता है, प्राकृतिक गुड़ है। इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और जिंक जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मौजूद रहते हैं।
1: तो चलिए क्यों ना व्यंजन भी इस कहते हैं ना कि सेहतमंद जो चीज है गुड़ उसे ही बनाया जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो गुड़ के शक्करपारे बनाने के लिए एक बाउल में एक कटोरी आटा ले लें और एक बड़ा चम्मच भर के मोयन डालें। एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ को गला दीजिए ताकि वो पहले से ही पिघल जाएगा,
0: ठीक है?
1: और गैस पर जलाकर इसको या तो पिघला भी सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं रखा है तो। इस पिघले हुए गुड़ के आटे से पानी को गूंदना है।
0: इसके पानी से आटा को गूंदना है, गुड़ के आटे से नहीं गूंदना है।
1: गुड़ का जो पानी हुआ है ना, गाड़ी गाड़ी चाशनी आपने
0: बनाई, लग रहा है कि फटाफट बनाऊं और खाऊं।
1: तो ये जो गुड़ की चाशनी बनाई थी, आपने आटा गूंद लिया और कढ़ाई में गर्म गर्म घी या तेल डालकर उसमें धीमी धीमी आंच पर तलिए तो शक्करपारे तैयार
0: हो जाएंगे। वाह क्या बात है, इच्छा हो गई है खाने की। और एक देखिए गुड़ की लापसी भी हमारे घरों में बनती है चंचल। गेहूं के दलिये को घी डालकर हल्का भूरा होने तक थोड़ा हम सेक लेते हैं, फिर उसमें गर्म पानी डालकर कुकर में एक सीटी दे देते हैं और गुड़ में पानी डालकर पिघला लें, फिर छानकर कुकर में बने दलिये में डालें, थोड़ा और पकाएं, देसी घी डालें, इलायची डालें, कुछ मेवा डालना चाहें तो डाल दें। पौष्टिक और स्वादिष्ट जो है लापसी तैयार हो जाती है और पुराने समय में गांवों में शादी ब्याह में भी ये बहुत ज्यादा बनाई जाती थी।
1: सच्ची में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
0: मीठा मिष्ठान के रूप में लापसी ही बनाई जाती थी। बचपन में हमने बहुत जगह लापसी का सेवन किया है।
1: और जब हम कहते हैं ना कि जब किसी का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो पेट को हल्का रखने के लिए भी खिचड़ी और लापसी इसी तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प होते हैं खाने के लिए। तो गुड़ की खीर के बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है कि हमारे प्रांत में छठी और जन्मदिन की नई बहू, जन्मदिन या हो या कोई नई बहू आती है तब त्योहारों पर चने की दाल पूरी गुड़ की खीर जरूर बनती है और छठ पूजा में भी जो गुड़ की खीर है वो बनाई जाती है और इसी से सूर्य देवता का भोग लगाया जाता है। तो बासमती चावल में दूध को पकाना है और जब खीर गाढ़ी हो जाए पककर तब गुड़ को अलग से पिघलाकर थोड़ी ठंडी होने पर ऊपर से पिघले हुए गुड़ को मिला देना है, फिर इलायची नारियल और किशमिश मिला देने या जो भी आप मेवे डालना चाहें वो मेवे डाल सकते हैं। इसी तरह से स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाती है। एक दूसरा तरीका इन्होंने बताया है कि गुड़ के पानी में चावल को पका सकते हैं, क्योंकि चावल पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है।
0: हाँ।
1: और जब चावल पक जाएगा तो ऊपर से गाढ़ा किया हुआ रबड़ी नुमा दूध है वो मिला दीजिए तो खीर तैयार हो जाती है। इस तरह की खीर में ये ध्यान रखा जाता है कि गर्म गर्म खीर में या दूध में जब गुड़ डाला जाता है तो फट जाता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ, मतलब बनाते समय हमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है, देखिए कि कोई चीज से किसी तरह का नुकसान नहीं हो जाए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गुड़ के पुए भी बनते हैं।
1: हाँ।
0: अरे मन हो गया है पुए खाने का। हमें अपना बचपन याद होया जहाँ हमारी माँ हमें गुड़ के पुए खिलाया करती थी। ये लिखते हैं कि आटे के साथ पिलाकर और जो मुझे पसंद है वो है पूरन पोली, जिसमें चने की दाल को भिगाकर उसको उबालकर गुड़ के साथ घी में सेकते हैं और उसमें गुड़ डालते हैं, साथ में जो सूखे मेवे पसंद हो वो डाल दें, पेस्ट तैयार करें, आटे की लोई में भरकर घी से सेके और जो बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है।
1: तो भाई इतने मीठी चीजों की बात चल रही है तो मीठा गाना भी तो होना चाहिए।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: हाँ तो चंचल, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है कि आगे हम गुड़ के लेकर क्या रेसिपी बताने वाले हैं, है ना।
1: तो गुड़ को लेकर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए। और कुछ मिठाइयां हैं जैसे गुड़ के शक्कर पारे, गुड़ का रसगुल्ला, ये इन्हें हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं इनको बड़े पसंद है। और चीनी के रसगुल्ले जो तैयार किए जाते हैं, इसमें चाशनी की जगह अगर गुड़ की चाशनी बना दी जाए तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और गुड़ की तो हम पंजीरी भी बनाते हैं, और ये पंजाबी हैं शायद लिख रहे हैं कि पंजाबी में तो ये बहुत ज्यादा बनाई जाती है। और गुड़ को भून कर इसकी पंजीरी तैयार की जाती है, घी डाला जाता है, भूना जाता है, पूरे तरीके से इसको बनाया जाता है, तो बहुत स्वादिष्ट लगती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, तो गुड़ से बनाने से वो पौष्टिक हो जाते हैं। गुड़ के गुलगुले बनाइए, और गुड़ के भजिए कह रहे हैं, और मीठे भजिए बना सकते हैं। गुड़ को गर्म पानी में पिघलाकर उसे छानकर उसमें आटा, नारियल की कतरन और इलायची डालकर घोल बनाकर तेल में पुए तल लीजिए। गुड़ और चने की दाल की पूरन पोली भी आप बना सकते हैं, है ना।
1: और इसी तरह से जब भाई चाय का समय होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को
0: 3 बजे चाय चाहिए होती है। इन्होंने मेरे मन की बात कह दी। मैं जब से सोच रही थी कि गुड़ की चाय जब हम पीते हैं, या कई बार चाय फीके रखते हैं और हाथ में गुड़ की डली लेकर भी सर्दियों के दिनों में हम लोग ऐसा चाय का सेवन करते थे, तो लिख रहे हैं कि ऐसे भी गुड़ की चाय बनाकर पी जा सकती है
1: जी। और बिना फटे स्वादिष्ट और परफेक्ट गुड़ की चाय बनाने की आसान सी विधि भी इन्होंने लिख कर भेजी है कि इसके लिए सामग्री चाहिए 2 कप चाय आप दोनों दीदियों के लिए।
0: क्या बात है।
1: 1 कप पानी, 2 कप दूध जो कि अलग से गर्म किया हुआ है, यानी कि पूरी तरह से औंटाया हुआ, खौलाया हुआ ये दूध है। चाय पत्ती चाहिए 2 छोटे चम्मच, और चाय पत्ती की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा कम कर दीजिए। आपको बहुत कड़क पीनी है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें चाहिए गुड़ थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में बनाया हुआ, 2 से 3 चम्मच चाहिए, या फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम और ज्यादा भी कर लीजिए। अदरक चाहिए 1 इंच कुचला हुआ, हरी इलायची चाहिए 2, वो भी अच्छे से कुचली हुई या पाउडर बनाया हुआ। इसे बनाने के लिए एक पैन में या सॉस पैन में 1 कप पानी डालना है, कुचला हुआ अदरक और हरी इलायची डालकर पानी को अच्छी तरह से उबलने देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चाय की पत्ती डालनी है, 2-3 मिनट तक इसे भी उबालें ताकि अच्छा रंग और स्वाद चाय पत्ती का आ जाए। अब इसमें पहले से गर्म किया हुआ दूध है वो डाल देना है। दूध को हमेशा उबाला हुआ या गर्म किया करके ठंडा किया हुआ दूध डालने से चाय फट सकती है, ऐसा उन्होंने आगे लिखकर बताया है। और दूध डालने के बाद चाय को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, फिर गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद जो कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में लाया हुआ गुड़ है वो डाल देना है, फिर अच्छी तरह से मिला लीजिए। छान कर गर्मा गर्म गुड़ की चाय का मजा
0: आनंद ले सकते हैं। तो आपने 2 कप चाय भेजी है ना, ये 2 कप मुझे ही पीने पड़ेंगे क्योंकि चंचल दीदी जो है चाय नहीं पीती है।
1: तो चलिए आपके लिए डबल चाय हो जाएगी, लेकिन मैं जो है ना गानों की मिठास से ही काम चला।
0: चलिए फिर।

0: मन ही मन में लड्डू फूटे, अगर ये लड्डू गुड़ के होंगे ना तो ज्यादा सेहतमंद होंगे।
1: और अभी तो हम गुड़ के लड्डू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि गुड़ की बात है तो लड्डू भी गुड़ के ही होंगे। गुड़ की बात निकली है तो एक श्रोता लिखते हैं, कह दूं कि दोपहर के भोजन के साथ गुड़ जरूर लेता हूं, भोजन के पूरा होने के बाद गुड़ के साथ एक रोटी खा लेता हूं, और भोजन के अंत में गुड़ खाने से पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है।
0: गुड़ ही गुड़ है,
1: गुड़ ही गुड़ है।
0: और आगे एक श्रोता लिखते हैं कि हम भी गुड़ और आटे के मालपुए खाने हैं, और आपकी बातें सुनकर हमें भी लग रहा है कि हम इसे जरूर बनाएंगे।
1: वही एक श्रोता लिख रही है कि अब सर्दियां आने वाली हैं और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है।
0: तो भाई आप जरूर गुड़ के व्यंजन का मजा लीजिए, लेकिन कार्यक्रम का समय क्योंकि पूरा हो चला है तो हमें जाने की इजाजत भी दे दीजिए।
1: बिल्कुल। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता
3: सिंह।
0: आइए सुनते हैं इस दिलचस्प बातचीत की पहली कड़ी।
4: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
5: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
4: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
5: धन्यवाद।
4: और अब हमें बताइए कि ये हनुमान अंश की कहानी ने कैसे आपके दिल में दस्तक दी, कैसे आपके मन में विचार आया?
5: तो एक तो हनुमान अंश टाइटल है और दूसरा हनुमान अंश की जो कहानी है वो श्री नीलकंठ बाबा महाराज जी के बारे में है, जो भारत के पिछले सदी के आई थिंक सबसे रिवर्ड संत आज की डेट में कहे जा सकते हैं। साईं बाबा भी थे और इसके अलावा बहुत सारे श्री अरविंदो, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जिसमें श्री नीलकंठ बाबा की जो कहानी है वो मुझे बहुत खास तौर पे इंटरेस्ट इसलिए करती है क्योंकि बहुत सादगी से भरी हुई है और किसी तरह का कोई आडंबर उनके जीवन में था नहीं
4: जी।
5: इसके अलावा वो मतलब हर तरह की चमत्कारों से वो हरदम भागते रहे और किसी एक स्थान पर रुक के उन्होंने किसी तरह का एक अपना एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य सिर्फ जगह जगह पे हनुमान जी के मंदिर बनाना और लोगों को भूखों को भोजन, भक्तों को प्रसाद, ये उनका टोटल आइडिया था। और भी उनकी कुछ सीख थी जो जीवन में देते थे पर वो आध्यात्मिक सीख होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में मुझे वो बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट करते हैं। प्लस उनकी चेहरे पे जो एक अजीब सी कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि हर व्यक्ति आभा है, कुछ तो है ऐसा जो कि हर व्यक्ति उनको देख के ना देखते ही रह जाता है, तो ये भी एक चीज थी। इसलिए मुझे लगा कि ये होना चाहिए। पर मैं खुद से उनको फॉलो करता हूँ कुछ पिछले 20 साल से, और जब मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग मेरी हल्द्वानी में थी, वहां से एक मेरे साथ भी कुछ ऐसा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं उनकी कहानी बहुत समय से फॉलो कर रहा था। हनुमान अंश टाइटल मुझे नीप करोरी गांव है उत्तर प्रदेश में जहां पे उन्होंने साधना अर्ली एज में की, वो अपने फिल्म में दिखा
4: जी, बिल्कुल।
5: तो वहां पे जब मैं गया था रिसर्च के लिए तो वहां के लोग उनको आंशिक हनुमान और आंशिक अवतार हनुमान का बोलते थे, हनुमान जी का बोलते थे, जिस वजह से मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगा और मैं उनके नाम से फिल्म नहीं बनाना चाहता था। पहले दिन से क्लियर था कि मुझे उनके नाम से फिल्म नहीं बनानी क्योंकि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो ऐसा कहीं से प्रतीत ना होने लगे कि मैं उनके नाम पे राइड कर रहा हूँ। और प्रतीत होने से ज्यादा खुद से स्वयं से भी अंदर से भी वो इच्छा होती है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि किसी तरह की बायोपिक पे आप राइड करके कि भाई बड़ा व्यक्ति है उसकी बायोपिक बनाने मिल गई तो अब ये अच्छा उसमें नंबर्स आएंगे, यू विल ऑलवेज गेट आई मीन अ लॉट ऑफ, आपको बहुत तालियां मिलेंगी, अप्रिशिएशन मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम समाज को क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के लेवल पे, तो ये आई थिंक उद्देश्य था। इसलिए हनुमान अंश और श्री नीलकंठ बाबा, दिस इज द रीजन एंड दिस इज हाउ उनकी आमद हुई।
4: तो नीम करोली बाबा को एक भक्ति भाव से लोग देखते हैं और कुछ चमत्कार के रूप में भी देखते हैं, भले ही वो चमत्कार न करते हो, और रहस्य के रूप में भी। तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व को फिल्म में आपने उतारने की कोशिश की है, तो किस तरह की चुनौतियां आई, कौन सा भाव पक्ष आप ज्यादा लाना चाहते थे और आपको लगा कि ये सही हुआ?
5: मुझे लगता है कि उनकी मैंने एक मानवीय कहानी बोलने का ज्यादा प्रयास किया है। चूंकि वो स्वयं चमत्कारों से बचते थे तो हम भी चमत्कारों से फिल्म में बचे हैं
4: जी।
5: लीलाएं होती हैं जब आपके कोई संत महात्मा आपके जीवन को देख लेता है, वो अकाल जो बोलते हैं ना कि वो उनको त्रिकालदर्शी होते हैं, वो समय को देख सकते हैं, आपके पास्ट को भी देख सकते हैं, आपके फ्यूचर को देख सकते हैं, तो वो आपको आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा चेंज लेके आते हैं जो ऑन अ ट्रेजेक्ट्री लेवल, अगर वो आज उन्होंने 0.5% का अगर उन्होंने एंगल चेंज आपकी लाइफ का डायरेक्शन रीडायरेक्ट किया आपको, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम 10 years और 20 years कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। लाइक मेरा अपना स्वयं का एक वो है कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहां पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है। और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम 20 इयर्स बैक। तो इसको लीला बोलते हैं, उसको चमत्कार नहीं बोल सकता मैं। चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर सकता है, वो होते ना कि हवा में ऐसे कुछ करते हैं कुछ ले आते हैं, तो चमत्कार ही व्यक्ति लोग उनके उनको चमत्कारी बोलते हैं पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने हरदम बोला कि हनुमान जी ने किया होगा, आपका राम जी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, ऊपर वाली कृपा होगी। तो इस तरह से तो मैं मानवी उनके साइड को ज्यादा तवज्जो देने का प्रयत्न मैंने किया है।
4: जी, ये फिल्म में आपने दर्शाया भी है जब वो क्रांतिकारी अंदर कमरे में है और वो बेल बजाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है, तो ये क्लियर है कि जैसे वो चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं या इंट्यूशन हुआ है, इस बात को आपने दर्शाया भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज का जो युग है इसमें जरूरी है कि चमत्कार से दूर जाया जाए। और आपने बताया कि, और हम सभी जानते हैं कि आपने मेडिकल की पढ़ाई की, MBBS पढ़ रहे थे और अचानक फिल्मों की ओर रुख कर लिया, कैसे ये संभव हुआ, कहाँ से आपके मन में ये बदलाव आया?
5: मुझे लगता है कि लखनऊ, जब मैं रहने वाला बुंदेलखंड का हूँ, वहीं पढ़ाई पला बड़ा भी वहीं पे हूँ और पढ़ाई भी वहीं से की है। जालौन जिले में एक छोटी सी जगह है कोंच, वहाँ पे मैंने अपनी 10+2 तक पढ़ाई की, उसके बाद एक साल ग्वालियर था, वहाँ से लखनऊ आ गए। और लखनऊ में जो एक जैसे बोलते हैं वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो इतनी अपनी तहजीब है
4: जी।
5: वो कहीं ना कहीं मैंने उसको इम्बाइब करना शुरू किया। तो पहले तो भाषा सुधरी वहाँ जाके, एक ठेठ बुंदेलखंडी और खड़ी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, एक थोड़ी नफासत आ जाती है, एक आपकी जबान में थोड़ा उर्दू आ जाती है। तो पोइट्री वहीं से फूटी, वहीं से मैंने म्यूजिक में इंटरेस्ट मेरा आया। मैं जिस गली में रहता था वहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जी, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनकी हवेली जस्ट घर के सामने थी, छन्नूलाल जी मिश्रा और ये सब लोग जो है ना वो गली का ही पार्ट थे। तो उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ, फिर मैं भातखंडे जाना शुरू किया। फिर मैंने भातखंडे में कुछ एक साल विशारद का प्रथम वर्ष भी किया, मतलब संगीत में गायकी में।
4: अच्छा।
5: और वो एक साल ने मुझे काफी हद तक जो है ना परिवर्तित कर दिया। एक मेरा जो एक क्रिएटिव साइड होगा जो मुझे पता नहीं था, वो सडनली स्फुटित हो गया। और उस वजह से मुझे लगता है कि लखनऊ हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। तो बेसिकली वो मेडिकल का सिलेक्शन होने से पहले ये सब मेरे अंदर इम्बाइब हो गया था। तो तैयारी करता था, शाम को 6 बजे से वहां की क्लास होती थी, तो शाम को 6 बजे तक सब फिनिश हो जाता था। तो वहीं से अपने कोचिंग से लौटता था मैं और 1 घंटे की वो क्लास करके घर आता था। और उसी बीच में आगे कहीं प्ले हुआ कोई तो देख लिया, या कुछ ऐसा कार्यक्रम चलता रहता, राय उमरनाथ बली नाम का एक वहाँ पे एक प्रेक्षागृह है, तो वहाँ पे प्रेक्षागृह में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो वो एक रूटीन बन गया। और फिर वो सिलेक्शन होने के बाद में मैं नहीं चाहता था कि मैं MBBS करने जाऊँ। तब तक मेरा काफी इंटरेस्ट चला गया था इसमें। तो मेरी माता जी ने मुझे बोला कि तुम ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तो कर लेना। एंड मेरा जब मैं गया, मुझे कॉलेज जो मिला वो गोरखपुर था।
4: जी,
5: तो गोरखपुर का थोड़ा कला वगैरह से थोड़ा सा कम लेना देना है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर और हमारा कॉलेज भी बिल्कुल मेडिकल कॉलेज
4: ग्रामीण परिवेश है, बिल्कुल आंचलिक
5: जी, और शहर से बाहर भी है। तो वो करीबन 7-8 किलोमीटर दूर था, तो शहर जाने के लिए फिल्म देखने के लिए जाते थे हम लोग बस। बाकी वो हमारा जो 12-15-50-40-50 acres की जो कॉलेज कैंपस था, वो वही दुनिया थी हमारी
4: जी।
5: तो उसके अंदर की जो खैर, कहने का मतलब ये है कि MBBS किया तो उस बीच में जितनी भी क्रिएटिव परसुइट्स थी उनको फॉलो भी किया वहाँ पे, बट इवेंचुअलिटी में अब होता ये कि आप किसी चीज़ के साथ में बहुत समय तक रहने लगे तो आपको वो भी अच्छा लगने लगता है। तो मैं लास्ट फाइनल प्रोफेशनल तक मैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता था
4: जी, जी।
5: फाइनल प्रोफेशनल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सडनली मेडिसिन अच्छी लगने लगी, एज द वे पीपल जब वो अच्छे हो जाते हैं, जब वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, प्लस आप जो मानवीय शरीर है उसको आप बहुत डिटेल में देख रहे हो और कैसे रिएक्ट करता है, ऑल ऑफ दैट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया
4: जी।
5: तो फिर मैंने कहा कि अब जॉब भी करते हैं, और पहला जॉब इसीलिए हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में था एक्चुअली, कुछ महीने के बाद मैंने वो छोड़ के हल्द्वानी में आ गया था मैं, और वहां से ये नई ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई, जिसे हनुमान अंश की यात्रा जिसे बोलेंगे, वहां से शुरू हुई जी।
4: तो अब यहाँ पर आपने बहुत सारा जिक्र किया, गाने का भी जिक्र किया, मतलब कि ऐसा लगा कि आप गाते भी हैं, और हनुमान अंश में आपकी आवाज में एक गाना है जो काफी प्रचलित भी है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनना।
5: आप जो कहेंगे वो सारे गाने मुझे बहुत प्रिय हैं, हृदय में जिनकी सीताराम जो मैंने गाना गाया है वो भी बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, और वो बहुत ही कमाल की बात है कि उसको मैंने कंपोज नहीं किया, वो अचानक से मेरे दिमाग कहीं से उतर आया हूँ।
4: जी जी।
5: और वो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फिल्म में अपने म्यूजिक को ना इंक्लूड करूँ। मैं आया तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने ही था सबसे पहले मुंबई में, और विशाल भारद्वाज मेरे लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत ही मेरे लिए आइडियल थे।
4: जी जी।
5: लेकिन विशाल जी को मैंने बहुत ज्यादा उनकी फिल्म जो है ना मकबूल को मैंने 27-28 बार देखा, मतलब
4: लिटरली
5: उनकी वो जो सीडी थी मेरे पास में वो घिस दिया था, मतलब ऐसा हो गया था कि स्क्रैच आ गए थे उसमें, इतना देखा मैंने मकबूल।
4: क्या बात है।
5: तो कहने का मतलब ये कि होता ये है कि आप जब आते हो कुछ करने के लिए फिर आपको समझ में आता है कि नहीं आपका अल्टीमेट गोल ये है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो। कोशिश मैंने बहुत की कि अपने आप को अवे रखूं म्यूजिक से, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरी अपनी आत्म शांति के लिए मैं म्यूजिक करता हूं। मेरा सुबह का रूटीन अभी पिछले एक साल से तो बिगड़ गया, लेकिन सुबह का रूटीन मेरा एक हनुमान चालीसा जो मैं गाता हूं अपनी खुद से, मैंने कंपोज की थी वो मैं अपने लिए गाता हूं, उसको रिलीज ही नहीं किया मैंने, इट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों को बहुत सारों के पास। तो हृदय में जिनके सीताराम आई से कि इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बट यू specifically ask me any of the song, I love all the songs, I can sing any one of it, I won't mind.
4: लेकिन मैंने आपकी आवाज के गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आपकी आवाज में यहाँ पर हम चाहते हैं कि श्रोताओं को भी सुनवा दें।
5: चलिए, तो मैं पहले हृदय में जिनकी सीताराम ही गा देता
4: हूं। जी, एक लाइन सुना दीजिए।
5: जी, एक ही लाइन है, उसमें दूसरा लाइन है भी नहीं।
4: जी।

0: क्या बात है, एक साधक की मुद्रा में आप आ गए थे और वो ऐसा लग रहा था कि कहीं आपने जैसे साधना की हो बैठ के। तो यहाँ पूरी फिल्म में हनुमान अंश में हनुमान चालीसा को कथा के रूप में कहीं कहीं पिरोया है आपने, तो ये कहाँ से आपके मन में विचार आया, कुछ पहले से सोच रखा था या फिल्म बनते समय?
1: तो एक तो वो इवेंट जो है वो रियल इवेंट है
0: जी,
1: जो फिल्म में आपने देखा है, लेकिन मैं 2021 में जब कोविड बहुत पीक पे था और मेरे बहुत परिवार के और मेरे दोस्तों के, मेरे मित्रों के फैमिली मेंबर्स एक एक करके जा रहे थे, तो मेरे फर्स्ट कजिन, मेरे लोकल गार्जियन थे कॉलेज में, वो ऐसे करते करते मेरे मामा जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रघुवेंद्र सिंह है, उनकी माता जी, ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ 5-7 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोग चले गए। और वो एक एज ए डॉक्टर मुझे जो है ना, मैं घर पे बैठा था, मैं क्योंकि मेडिसिन प्रैक्टिस छोड़ के बहुत साल हो गया है और बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अब मैं एज अ मेडिकल मतलब डॉक्टर आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए था और मेरे पास कोई सच कोई डायरेक्ट कनेक्ट बचा नहीं था, तो जितना हेल्प कर पा रहा था मैं कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन थी जहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक अलग चीज बन गई थी जहाँ पे सब लोग वॉइस में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिल में ऐसा ख्याल आया कि जितने लोगों को शांति चाहिए है वो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो शायद होप देगी लोगों को। तो हमने हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चालू किया 2021 में, अप्रैल का महीना था, पहले दिन ही लोग 8 घंटे तक उसमें हनुमान चालीसा होते हैं, लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं और वो हमारे क्लब को सुन रहे हैं, पीपल रिकवर्ड फ्रॉम देयर आईसीयू, जो कि आईसीयू से बहुत कम लोग निकलते थे उस वक्त, तो आईसीयू से बाहर निकले, फिर वो हमारे मॉडरेटर्स बन गए, तो वो क्लब आज भी वो क्लब चला रहे हैं।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: एक 12,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए, लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे और वो हनुमान चालीसा, तो ऐसे में मेरा एज अ फाउंडर ऑफ दैट क्लब मेरा रूटीन बन गया कि 2-2.5 घंटे तो हनुमान चालीसा को डिकोड करना शुरू किया मैंने।
0: जी जी जी।
1: उसके पहले तो पढ़ना होता था, फिर हनुमान चालीसा को डिकोड करना, वो मेरी एक तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बन गया। तो कहें तो हनुमान अंश का कोर जो है वो हनुमान चालीसा है, अगर आप वो, उसमें भी एक डायलॉग है फिल्म के अंदर जहाँ पे बच्चा पूछते हैं मान जी उससे के, मान जी पूछते हैं कि आपका जो है क्यों हनुमान जी का ही पाठ क्यों है, ओके ओके, तो कहते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है, तो क्या तो तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तो वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं माँ से था क्यों, बोले माँ राम जी के पास चली गई, और करना क्या चाहते हो, राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा के पास पहुंचना है। तो ये पूरी फिल्म को हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और एक बच्चे की भावना अपने माँ के प्रति क्या है और वो कितना अकेला अपने को महसूस कर रहा होगा कि वो जो है ना अपनी माँ से इतना प्रेम था कि वो उन तक पहुंचना चाहता है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि राम जी के पास चली गई, तो उसने पूरा अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे राम जी तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा तक पहुंचना है। एंड प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो लाइन लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मदर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं उस लाइन से, वो हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आई सॉर्ट ऑफ डिकोडेड हनुमान चालीसा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। अब अगर मुझसे आप बात करेंगे तो आई विल लव टू चैट अबाउट हनुमान चालीसा फॉर आवर्स।
0: अभी सुनाइए
1: हनुमान चालीसा चैट,
0: थोड़ा सा तो सुना सकते हैं। देखिए वहाँ एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहती हूँ, वो जो दृश्य है जिसका आपने जिक्र किया सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य है कि एक पिता अपनी दूसरी शादी करके आ रहे हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे राम जी के पास जाना है, तो ये बहुत मार्मिक था और हम सबको यहाँ पर इमोशनल भी किया आपने, मतलब देखा कि लोग रो रहे हैं वहाँ पर। और इस पूरी फिल्म में कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम कहीं, आपने जो साधक के रूप में दिखाया वो साधना में हम सब लीन हो रहे हैं, कई ऐसे दृश्य आए।
1: जी, जी।
0: तो यहाँ फिर से वापस लौटते हैं हनुमान चालीसा पर, तो वो अगर आप गाते हैं तो
1: नहीं, हनुमान चालीसा मैं गा दूंगा, बट मैं हनुमान चालीसा को जो डिकोड करता हूँ, मैं हनुमान चालीसा को, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, आई विल ऑल्सो सिंग कपल ऑफ लाइन्स। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा जो है ना बहुत ही मल्टीपल कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका संकलन है, और आपके जीवन में आप कैसे आध्यात्म की तरफ जब आप बढ़ते हो और आपको जब अल्टीमेट को जो आप पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति जो आप करना चाहते हो, तो उसका राह वो आपकी सुगम करती है, आपके जीवन को भी बहुत सॉर्ट करती है। जैसा कि श्री नीपकोली बाबा भी बोलते थे कि वो कहते थे राम नाम का जप करते रहना, राम नाम लिखते रहना, और हनुमान जी की भक्ति के लिए हरदम बोलते थे। तो आप भक्त क्या होता है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि वो अपने ईस्ट से ज्यादा बलशाली है, पर वो सरेंडर उनको ही करते हैं,
0: ईस्ट
1: को ही करते हैं, भक्ति इसको बोलते हैं कि आप किसी भी, तो ये एक तो चीज है, और प्लस जो है ना उसमें तीन और कोड्स हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे, तो हनुमान जी की भक्ति के बिना, हनुमान जी को समझे बिना, उनकी आज्ञा के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती. दैट इज वन. अनदर लाइन इज दैट राम रसायन तुम्हारे पास. सो यू हैव द कॉस्मिक कोड और द कोड द फॉर्मूला टू रीच राम. सदा रहो रघुपति के दासा. तीसरी लाइन है तुम्हारे भजन राम जी को पावे. एज एन अगर आप हनुमान जी को भजते हो या आप हनुमान चालीसा करते हो तो आप भगवान राम को की प्राप्ति आप कर सकते हो. ये तीन लाइनों के अलावा पवन तनय संकटन मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसम सुरभु. हृदय भसम सुरभु का मतलब क्या है कि आपको उनको दिल में, आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको हृदय में रखना है. इसीलिए वो हृदय में जिनके सीताराम जैसे लाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता. आठ सिद्धियां आप ही दे सकते हैं और यही प्रॉब्ली नीम गौरी बाबा के उनकी लाइफ में भी आप देखें जो सिद्धियां जिनकी प्रचलित सिद्धियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको हनुमत भक्ति से आई हैं. क्योंकि हनुमत भक्ति जो है ना कलयुग में शायद वही एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है अष्ट दिन दाता असबर दिन ऐसा वर सीता दीन दीन जानकी माता. तो जो जगत जननी माता सीता है उन्होंने आपको एक वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं. ऐसा ही एक भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि सहस बंधन तुम रो जसगावे इसका श्रीपति कंठ लगावे. जब लाए सजीवन लखन जी आए, जब वो संजीवनी लेके आए तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया सहस बंधन तुम रो जसगावे. इसलिए आज भी भगवान राम से भी ज्यादा पॉपुलर हनुमान जी हैं
0: जी,
1: क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं. या तो आपको साउथ अमेरिका चले जाएंगे आपको वहां पे जो टेम्पल्स हैं वो पेरू वगैरह में वहां पे भी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती है जो कि 5,000-5,000 साल पुराने टेम्पल्स हैं.
0: जी बिल्कुल.
1: ही वाज सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्टिल इट इज पॉपुलर कि आपका जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो पिछले राष्ट्रपति थे वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते थे बराक ओबामा.
0: बिल्कुल.
1: तो
0: हनुमान चालीसा लोग अपने पास रखते हैं, सिरहाने रख के सोते हैं, पर्स में रखते हैं डर से निजात पाने के लिए. हम सब भी वो करते डर लगता
1: था. डर लगता तो हनुमान चालीसा पढ़ना
0: चाहिए. हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अंधेरे कमरे में पार करना है.
1: Correct.
0: तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना है.
1: वो फिल्म में वो सीन जो है ना वो डेडिकेटेड टू दैट लाइन है कि आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा इसलिए हो क्योंकि आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे उस लाइन के लिए पढ़ते हो आप. लेकिन वो लाइन तो बीच में आती है तो आपको पढ़नी तो पूरी है.
0: जी जी.
1: तो मन से पढ़ना बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइज करना. और आपको जिस भी आप देवता जिस भी भगवान को आप ईष्ट हैं आपके उनको अंदर से मन से उनका ध्यान करना. मन क्रम वचन ध्यान जुलावे. संकट हनुमान छोड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे. जी
0: बिल्कुल. सकारात्मक भाव पैदा होता है. यहाँ पर एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का. कौन सा गाना सुनते
1: हैं? मैं भी आपको हनुमान चालीसा ड्यू है. मैं आपको दो कम से कम लाइनें सुनाता हूँ.
0: जी जी प्लीज सुनाइए.
1: जी जी. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुं लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम. महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा

0: अभी मतलब मैं तो गाता रहूंगा तो 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे। बट
1: गाने की बात चलिए, हनुमान चालीसा आप गा ही रहे तो हम आपकी ठीक की ओर बचपन की ओर ले चलते हैं, बचपन की गलियारों में। वहाँ आपने जिक्र भी किया कि आप विशारद करना चाहते थे, पंडित चन्नूलाल मिश्र का जिक्र किया, तो क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप गायकी की दुनिया में आएंगे या फिर सोचा था उस समय क्या सपना था आपका?
0: मुझे लगता है कि बचपन में सपने तो थे पायलट बनने के, फिर लग गया चश्मा, फिर पता चला कि वो तो नहीं कर सकते, फिर लगा के फिर ऐसा लगा कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सुदूर जो जगह है वहाँ पे
1: डॉक्टर
0: इंजीनियर आईएएस, तो मेरा थोड़ा पायलट सोचता था, मैं थोड़ा आगे की सोचता था, लेकिन वो शायद एनीवेज। तो हुआ ये कि लखनऊ आने से मैंने डिस्कवर किया कि आई कैन सिंग, उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो 17 साल तक की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या मैं एक पोइट्री लिख सकता हूँ, ये भी नहीं मुझे पता था। तो लखनऊ आके वो परस्यूट्स डेवलप फिर से वापस स्फुटित हुए, अंकुरित हुए, या मुझे आई डिस्कवर्ड देम, सेल्फ डिस्कवरी हुई मेरी, हनुमान जी की तरह से उनको अपनी शक्तियां पता चली मुझे, एंड दैट टुक मी। वरना बचपन चंबल में बीता तो वहां पे बुंदेलखंड में, तो जहां पे ये आपने जो बैंडिट क्वीन देख रहे हैं, पान सिंह तोमर देख रहे हैं, वो एक और फिल्म थी तिशु की, एक और तिशु के बाद में अभिषेक चौबे की एक फिल्म आई थी फॉरगॉट द नेम, सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो सारी फिल्में, वो सारी दुनिया जो है ना बुंदेलखंड है, वो है जो हमने जिया है देखा है। से कॉन्ट्रास्टिंग आई रीच्ड लखनऊ, और लखनऊ में जो जीवन जैसे बोलते हैं कि परिवर्तन हुआ, तो वहां पे मैंने विशारद के लिए एडमिशन के लिए मैंने टेस्ट दिया जिसमें 30 सीटें थी, 30वां नंबर रैंक मेरा आया।
1: अच्छा।
0: और वो तेज सिंह टाक जी वहाँ पे मेरे टीचर थे, और उन्होंने जो भी सिखाया वो इतना काम भविष्य में आया कि मतलब एक ही साल किया था मैंने, 5 साल में से एक ही साल करके फिर आई टू गो फॉर द मेडिकल मेडिसिन। तो 4-5 साल वहाँ पे फिर वो रॉक वॉक गाते थे और पॉप रॉक में दुनिया में चले गए, फिर क्लासिकल भूल गए। क्लासिकल को दोबारा से मैंने पिछले 4-5 साल में फिर से दोबारा से आई स्टार्टेड यू नो practicing and working on it, and I do it primarily for myself. तो मतलब वो completely मेरे उसको commercialize करता नहीं हूँ, music को कुछ भी commercialize नहीं करता. So it's a very soul satisfying sort of an event for me every day. लेकिन neck for music, finding great music, recognizing great talent, musical talent is probably one art I developed over the period of मतलब multiple years, decades I'll say. तो अनुभव सिन्हा जी के साथ में मैंने करीबन 3 साल काम किया, उसमें भी ऐसा हुआ कि वो साल भर के बाद उनको पता चला कि मेरा म्यूजिक सेंसिबिलिटीज ऐसी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे म्यूजिक भी सारा दे दिया करने के लिए। तो बनारस बीट नाम का उनका एक अपना एक छोटा सा
1: जी,
0: था। तो बनारस बीट मैं हैंडल करता था,
1: उसी के नाम से उन्होंने अपना रखा, फोन नंबर भी।
0: हाँ जी जी जी तो बनारस बीट जो है मैंने काफी समय तक वो भी चलाया, बहुत सारा म्यूजिक मैं सिलेक्ट करता था उनके लिए, या एटलीस्ट चूज करता था कि सुनिए आपको क्या अच्छा लगता है, एंड दैट्स हाउ प्रॉब्ली आई थिंक द फिल्म बिकेम अ म्यूजिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एंड आई बिलीव द ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट साउंड, 45% विजुअल्स होते हैं, 55% जो है ना वो साउंड होता है, और वही आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट भी करता है, अफेक्ट भी करता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग डिलीवरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग संबोधन जो है उसमें भी जो पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वी सिलेक्ट एंड वी गो फॉर। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे, मैं सारे फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट करता हूँ जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज एन इंडस्ट्री, कि लिप सिंकिंग करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देना है, गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का, 3rd week ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं। अच्छा आप अच्छा है खराब है मुझे पता नहीं, पर पहले 2 वीक तक कोई गाना चला ही नहीं, और वही कारण था कि फिल्म भी डिप करी थी, फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होना शुरू गए 4th week से,
1: और गाने बजने
0: और फिर गाने ऐसे बजने लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया।
1: हाँ, और रील बनने लगे,
0: हजारों की संख्या, मतलब अनगिनत है, तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया, जो मिलता है उसको रीशेयर कर देते हैं, वरना तो हाँ निकल ही रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली इतना बन रहा है कि हम वी कांट सी, 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: इतना कॉन्टेंट बन रहा है।
1: तो यहाँ पर गानों का जिक्र चला है और आपकी फिल्म के गाने के रील बन रहे हैं, और ज्यादातर इस गाने के पार्वती
0: जी
1: जो है, तो वो सुना दे श्रोताओं को
0: जी। मतलब वैसे साधु तिवारी जी का गाना है, उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ वैसे, लेकिन चलिए मैं सुनाता हूँ। जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्त ऋषि, सप्त ऋषि ही सप्त

आप जाके शीस पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप। इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ भोलेनाथ। शंभो शिव शंभो।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का
2: जी।
1: अनुभव सिन्हा जी विविध भारती के स्टूडियो
2: में आ रहे हैं,
1: उनसे सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था, बातचीत की थी
2: जी।
1: तो उनसे कुछ निर्देशन की कुछ बारीकियां भी आपको मिली क्या गानों के बारे में ही?
2: मुझे लगता है कि उनके

0: में काम करना, मैं उनके अंडर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया,
1: जी जी
0: उनके सानिध्य में काम किया,
1: जी
0: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जिस तरह से इलेवेट करते हैं चीजों को ना
1: एक खास तरह
0: सिनेमा,
1: की
0: हाँ
1: मुद्दों की फिल्में
0: सिनेमा
1: हैं तो
0: में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब हम फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजीशन करते हो, जिस तरह से इलेवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नजर है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनके बहुत कान बहुत तेज हैं, उनके भी
1: जी
0: म्यूजिकल तेज, तुम बिन उनकी पहली फिल्म भी इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल
1: जी
0: हिट थी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और आप चाहे वो रावण का
1: मुल्क
0: म्यूजिक सुने या
1: मुल्क
0: मुल का,
1: का
0: हाँ
1: थप्पड़ के
0: थप्पड़ के गाने,
1: गाने
0: मुल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे, और वो उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की हैं, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
1: अनेक भीड़ बहुत
0: अनेक
1: सारी
0: भीड़, तो ये
1: फिल्म
0: अभी की फिल्म्स
1: बात
0: हैं,
1: की
0: लेकिन
1: हाँ
0: एक वो जो कमर्शियल
1: हाँ
0: फिल्म्स
1: शुरू
0: बनाते थे
1: में
0: उनके
1: बिल्कुल हाँ
0: म्यूजिक एल्बम, ओ माय गॉड क्या क्या एल्बम्स उन्होंने चूज किए, तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही, जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार, लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके, आप क्या सोचते हो उस पर इंटरफेयर नहीं करते, और मैं उनके उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख पूरा, एक शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिसपे उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा फिल्म बना के लेके आया,
1: अच्छा
0: फिल्म का नाम था उस वक्त, उसका नाम डीमो था, फिर उसका नाम भसड़ हो गया, कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं और क्या होता है उस रात को, लेकिन उन्हें उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉब्ली उनको हो सकता ना ही पसंद आई हो, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया, और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो
1: जी
0: आप
1: जी
0: क्या सोच रहे हो वो
1: बिल्कुल
0: आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी सोच है, हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो चीज सीखी है उनसे मैंने वो यही सीखी है, और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ और हर बार यही बात बोलता हूँ, और
1: क्या
0: मेरी बात उनसे 2 साल दो बार ही होती है, और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतने ही उनके लिए हृदय में
1: बिल्कुल
0: उतना ही सम्मान है जी।
1: बेहतरीन बातचीत हुई थी और बेहतरीन इंसान। यहाँ पर आपकी फिल्म का हम गाना सुनना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र करना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे।
0: जी
1: ये सुनील लोधी बुंदेलखंड के
0: जी जी
1: गायक
0: जी
1: हैं, तो ये कैसे मिले आपको, कहाँ से, क्यों बुंदेलखंडी गाते हैं वो?
0: हाँ, तो मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ, जैसे मैंने बताया बुंदेली मुझे बहुत पसंद है, अभी भी सोते, मेरी पहली फर्स्ट लैंग्वेज भी आप बुंदेली बोल सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोली है, क्योंकि बोली है वो तो लैंग्वेज नहीं है, तो बुंदेली मुझे चूंकि, तो मैं क्या हो रहा था पिछले 2-3 साल से ना, एक बुंदेली दुनिया नाम का एक चैनल था,
1: जी
0: तो मैं बहुत सारे ऐसे बुंदेली गीतों को के लोग
1: सुना
0: जो बनाते तो
1: करते थे।
0: उनको फॉलो कर लेता था मैं,
1: अच्छा,
0: तो उसमें देखा कि मैंने ये लड़का जो है ट्रेन में गाता है और
1: और
0: उसका
1: नेत्रहीन है,
0: नेत्रहीन है
1: नेत्रहीन
0: वो,
1: है।
0: और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते हुए किसी ने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में लड़का गाता है। अच्छा, मैं काफी दिन फॉलो कर रहा था, एक दिन मैंने दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे कोई पिक्चर दी, वर्सोवा बीच पे है वो,
1: ओ
0: मैंने कहा ये कहाँ से वो आ गया, एंड मैं उसको अप्रोच करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको किसी को बोलता हूँ कि इसको अप्रोच करके बुलाओ मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं, और
1: जी
0: हमारी
1: जी
0: बहुत छोटी फिल्म है, हम ऐसा नहीं है फ्लाइट टिकट देंगे भाई आ जा तू, बट चूंकि ये मौका था कि वहां पर था, तो मैंने उसको रात में ही 11:30 बजे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा, और हैपन सो दैट इन हाफ एन आवर ही वॉज इन द स्टूडियो, इन आर ऑफिस एंड स्टूडियो, फिर हमने उसके बाद में सेटल किया कि भाई कब जा रहा है वो, क्या है कैसा, तो पता चला कि वो 11 बजे सुबह निकल रहा है, 12 बजे, तो उसके पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में वो उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरे ही भरोसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसने अपने ही उस पे तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया, मैंने कुछ इसमें लाभ लगे बट कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट, और वो लोग बोले थे इसके ऊपर कुछ म्यूजिक नहीं करोगे, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पर कुछ कराया नहीं, और तो मैंने कहा कि नहीं इस पर कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क करेगा, क्योंकि स्ट्रेट इट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं, स्ट्रेट टू द हार्ट, कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमानो, बहुत गूढ़ शब्द है उसमें, सागर में नैया डार दे, कौन उसमें लाइनें हैं कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई, अरे काहे की वो नाव बनाई काहे की
1: हाँ
0: पतवार,
1: जी, बिल्कुल याद आई।
0: और काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डार दे, सो बेसिकली इट्स अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नैया डार दे, मतलब, और हनुमत कौन है खेवन हार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवन हार कौन है, देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, अब आंसर क्या है, सीता सखी वा में बैठन हारी
1: जी
0: शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे, लेकिन खेवन हार कौन है, हनुमत खेवन हार सागर में नैया डार दे, मैंने
1: बात
0: तेरे ही
1: सही
0: भरोसे
1: है
0: आप ही खेवन हार हो, यू विल
1: जी
0: टेक मी दैट साइड,
1: जी
0: सो इतनी सिंप्लीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत

0: अगर गीत में है तो मैं उसमें क्यों लाग लपेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डालूं और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, वाइल इट इज वर्किंग सो वेल, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है, इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है. दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑन इंटरनेट. यू कैन सी थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड. मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था, 2.5 लाख रील्स थी उसकी. पिछले 15 दिन पहले 2.5 लाख रील्स थी, भी पता नहीं हुई, अभी देखेंगे तो लगता है मिलियन हो गई या 500 के हो गए.
1: बिल्कुल, बहुत तेजी से ये चर्चित हो रही फिल्म और गाने हिट
0: गाने
1: हैं, गाने लोगों के जुबान पर. बहुत मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना, और गाने हिट हो रहे हैं, रीले बन रही, तो बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ पर वही गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं
0: जी.

0: गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरी फिल्म आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या बात है?
1: हुआ ऐसा कि मैं सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूँ, तो मैं पेन एंड पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया, पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे उनको उतारने के लिए जब मैं लिखने बैठता था तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइसेज आर सो डिस्ट्रैक्टिव बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो कोई कॉल कर रहा है या तो किसी मैसेज कर रहा है उसको आपको रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, तो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग एंड ऑल्सो आप अगर उसको सर्च करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे तो वो भी आपको कहीं से कहीं ले जाता है,
0: दिख जाता है
1: और समय बहुत जाता है उसमें। तो मैं एकदम तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी डिवाइसेस बाहर निकाल दी।
0: क्या बात है,
1: मैं सब कमरे से बाहर। तो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है, जो उसको हम गुफा भी बोलते हैं कि तो मैं वो गया, वो सेट हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है, सारी डिवाइसेस बाहर की, पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। पहला सीन जैसे क्रैक हुआ मैं गया अंदर, मैंने लिखना शुरू किया। इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी। आपको बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया है, देयर इज नो चेंज इन द फिल्म, इज स्ट्रेट एक बार में। तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव, जब भी आपको लेखन करना है, जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: मोबाइल में है, जबकि
1: मोबाइल में आप लिख सकते हो, पर आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन से कनेक्ट फील होता है ना आपको,
0: जी,
1: आपका माइंड वो बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोलिए जो भी बोलिए, कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है, वो हाथ से जब लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है वो हो रहा है, और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो डिवाइस आपके आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है, वो ऊपर से एक मैसेज नहीं आ रहा उसमें और बीच में से कॉल नहीं आ रही है, ऑल दैट हैपेंस एंड देयर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है ना मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना वो सैंक्टिटी चली जाती है,
0: बिल्कुल कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन
1: होते रहते हैं।
0: सही कह रहे हैं, और ये बात है कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ लेकिन कागज रखा है साथ में,
1: हाँ।
0: ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुना है?
1: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल टाइम
0: फेवरेट, हाँ।
1: प्रेम पुजारी
0: साहब का लिखा हुआ, सचिन देव बर्मन संगीतकार, तो सुनते हैं।

0: प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना था और इस गाने के साथ एक बार हम आपको फिर बुंदेलखंड ले चलते हैं। बुंदेलखंड की कोई ऐसी यादगार घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बुंदेलखंड में जब मैं पढ़ने से पहले भी, मतलब मुझे लगता है मैं स्कूल में भी नहीं गया था, तो मैंने हमारी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरे माता जी पिताजी के साथ में ट्रैवल कर रहा था एक कालपी से उरई के बीच में, और वहां पे रास्ते में एक भवानी मंदिर, भवानी जी का, माता का मंदिर होता है। फर्स्ट मेमोरी मेरी वही है सबसे स्ट्रांग। और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे मतलब डकैत डकैत ऐसा नहीं। एंड गाड़ी रुक जाती, सब सहम जाते हैं, पर मैं बहुत इंटरेस्ट से आगे चला जाता हूँ। लिटरली वो तो ग्लास जो होता है उसके पास, मैं बच्चा हूँ मैं, वो मेरी बहुत स्ट्रांग मेमोरी है, जहाँ पे फिर मैं देख रहा हूँ वो बड़ा सा खोड़ा और उस पर छोटी सी महिला, उसने जो है ना पट्टा बांध रखा है, उसके हाथ में बंदूक है,

0: वो बड़ा फैसिनेटिंग था, मतलब फॉर फॉर अ किड अचानक से इतना कोई आया है जिसको, और ऐसी वेशभूषा में किसी को देखा नहीं। तो वो ये फिर वो दर्शन वर्शन करती हैं, वो भवानी मंदिर में अपने सर झुकाती हैं और फिर वो चली जाती हैं वहां से, किसी को कुछ होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो लूट के नहीं आई थी, वो दर्शन करने के लिए आई थी। तो एक वो है, और दूसरा जब मेरे स्कूल के समय, जब मैं स्कूल और कॉलेज जब मैं पढ़ रहा था, कौंच भी जो ना कुंच ऋषि की धरती थी वो, मुझे बहुत लेटर समझ में आया। वहां पे रानी लक्ष्मीबाई जब जब वहां से निकली थी और वो चोटिल थी, घायल थी, तो कौंच में एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने रात गुजारी थी, मलहम वगैरह भी वहीं पे हुई थी उनके। तो ये सारी चीजें जो थी, और प्लस बुंदेलखंड में वो जो भाषा है बहुत ही, मतलब ब्रज की लठमार, और थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा भाव और प्रेम भी आ जाता है।
1: जी जी
0: तो वो लहजा जो है ना, मुझे हरदम से बहुत फैसिनेट करता है, स्पेशली पानसिंह तोमर और बैंडिट क्वीन वगैरह जो फिल्म्स हैं इन सब के अंदर। इनफैक्ट वो नत्था, वो यूज टू स्पीक उसमें पीपली लाइव में, वो भी बुंदेली बोलता है। फिर वो
1: जी
0: एक
1: जी जी
0: एक और बहुत भाभी जी घर पे हैं, वो एक सीरियल है, वो मेरे बहुत क्लोज
1: जी
0: मित्र
1: जी
0: थे, जिनके जिनके अभी उनका देहांत हो गया, जिन्होंने जो राइटर थे उसके, वो उन्होंने वो एक कैरेक्टर हप्पू सिंह। तो ये सब बहुत बुंदेली बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, एक्चुअली पॉपुलर बोली है, पर वो कभी ऐसा मेन स्ट्रीम में, वो गाने मेन स्ट्रीम नहीं हुए थे। और ऐसा नहीं कि मैंने बुंदेली ढूंढने के लिए बुंदेली ढूंढा था, मुझे तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की बोलियों में गाने चाहिए थे। तो लगभग 50% सॉन्ग से ऐसे जो है ना, सासा आले हंसा चाले अवधी है, फिर ये ब्रज है, आवागमन थोड़ा ब्रज और इसके बीच का है, आवागमन
1: जी
0: मिटा दो भोले शंकर। तो ये सारे गाने जो है ना, कि करके वो आइडिया ये था कि जितना हो सके हम मिट्टी की खुशबू इस फिल्म के अंदर लेके आए।
1: तो यहां पर गाना सुनवाते हैं।
0: हर हर महादेव।

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश, फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनिएगा अगले सप्ताह इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची का हरमू चौक अब विकसित भारत संकल्प सेवा चौक के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर इस चौक का नामकरण किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि प्रदेश भाजपा की अगुवाई में इस चौक का नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को दर्शाता है। सरायकेला में भाजपा की ओर से सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। इससे पहले टाउन हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष हरे कृष्णा प्रधान ने किया। गोड्डा के गांधी मैदान में भाजपा ने विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित की। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन संबोधन सुना और विकसित भारत की शपथ ली। 25 वर्ष पूरे होने पर मशाल जुलूस भी निकाला गया। प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने जनजागरण अभियान की जानकारी दी। पलामू के नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्यों और भुगतान से जुड़े NCCF विवाद को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने दो पूर्व परीक्षा नियंत्रकों से बिंदुवार लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। कुलसचिव ने NCCF के कार्यों को संतोषजनक मानकर एग्रीमेंट विस्तार की अनुशंसा, बाद में भुगतान और उठी आपत्तियों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर पलामू के हुसैनाबाद में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। SDPO दिव्यांश शुक्ल ने दंगवार इंटरस्टेट चेकनाका, विभिन्न पूजा पंडालों और विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में 24 घंटे सतर्कता, संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच तथा नियमित गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में बिंदल मॉल के ODP रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार दो कथित मुख्य शूटर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हथियार बरामदगी के दौरान दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पहचाना सा चेहरा चारों ओर दिखाई देता है, जे चाहता है बस उसी का दामन थाम जिंदगी की राहों पर चलते रहें और जिंदगी का ये सफर कभी खत्म न हो।

पता था जुड़ेंगे दो दिलों के तार, किसे पता था दिल समंदर बन जाएगा, किसे पता था कि मिलेगा कोई साझीदार और बांट लेगा सारे गम और खुशियां। नर्मो नाजुक रेशमी अल्फाज से जमाने की तलखी सोख लेगा। कहां पता था आंखों की नमी पर मुस्कानों के मोती सजा देगा, कहां पता था वो खुशियों के चांद को जिंदगी में धर देगा। नहीं पता था दो दिलों का, दो मौसम का, दो शहरों का चांद एक ही होगा।

0: चांद के पार चल।
1: कभी कभी मोहब्बत का जादू इतना हसीन होता है कि जिस मोड़ पर हम कदम रखें वहां कोई अपने आप मौजूद मिलता है। रिश्तों की वही मिठास, वही चुपचाप साथ चलने का, हम चले तो साया भी कदमों के साथ था, राहें अजनबी थी मगर वो पास था। प्यार जब

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज में बयां करना मुश्किल होता है। कुछ लम्हे यूं गुजरते हैं जैसे मुट्ठी में बंद रेत, मुट्ठी से फिसल कर झर जाते हैं। कुछ लम्हे सदी की तरह ठहर जाते हैं। इन ठहरे हुए लम्हों में दिल बेकरार रहता है, बेचैन दिल को सुनाई देती है कोई पुकार।

जिंदगी की राहों में कभी फूल बिछे होते हैं तो कभी कांटे, मगर दिल कहता है अगर साथ में प्यार हो तो हर सफर आसान हो जाता है। ये राहें अक्सर हमें कई मोड़ पर ले जाती हैं, कभी मुश्किलें, कभी इम्तिहान और कभी दिलकश सपनों की डगर। लेकिन इन सब के बीच एक जज्बा है जो हमें आगे बढ़ाता है, वो है प्यार। अगर प्यार करने वाले का साथ अधूरा ही छूट जाए तो जिंदगी वीरान निर्जन जंगल सी हो जाती है।

जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमेशा हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं, कोई अपना हमें छोड़कर जाने ही नहीं देता। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका साथ हमें अपने गिरफ्त में ले लेती है। हम कई बार उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहां छोड़ पाते हैं, बस ये गीत गुनगुना कर रह जाते हैं।

हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। स्वागत है आपका सायंकालीन सभा में।

आइए आज अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले अपने खास खास कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आपको बता दें। शाम 5:35 पर हमारे श्रोता सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन लाइफ का उद्देश्य विषय पर चर्चा होगी। पूनम सहाय की एक वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वन्य जीवों का महत्व।

ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा 6:02 पर, जिसके अंतर्गत सरसों की खेती की तैयारी और खेतों की गहरी जुताई से लाभ विषय पर चर्चा होगी। 6:30 पर कृषक भाइयों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेतीबाड़ी। कार्यक्रम में समसामयिक कृषि कार्य पर चर्चा होगी। इसके साथ ही चना एवं मटर की खेती की तैयारी पर भी जानकारियां साझा की जाएंगी। शाम 7:15 फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा सूर संध्या। 7:45 अपेंडिक्स कारण एवं निदान विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार पांडे से की गई बातचीत आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम होगा कल्याण। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से हमारे श्रोता सुनेंगे शाम 8:00 से। आठ बजकर 30 मिनट पर हमारा कार्यक्रम होगा नई सोच नया कदम। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक से की गई बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। लाभुक होंगे अनिरुद्ध महतो। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा शाम रात्रि 10:00। 10:30 पर कार्यक्रम एक रंग के अंतर्गत एक ही फनकार के कुछ नगमे आप सुन सकेंगे। ये थी रूपरेखा आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले अपने खास खास कार्यक्रमों।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

0: बहनों, इस गीत के बाद आइए चर्चा करते हैं मिशन लाइफ का उद्देश्य के बारे में। तो मिशन लाइफ का मतलब है पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल। यह भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। मिशन लाइफ का उद्देश्य एक अस्थायी और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य संरक्षण, संयम और पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली जीवन शैली को अपनाने की दिशा में एक जन आंदोलन बनाना है। यह पहल परंपराओं, मूल्यों और प्रथाओं के महत्व पर जोर देती है, जो एक स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली में योगदान करती है।
1: बहनों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आप कैसे ला सकते हैं? लोगों की दैनिक जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं हम। 2022 से

0: अनुकूल कार्य से जोड़ना इसका मुख्य लक्ष्य है। 2028 तक भारत के कम 80% गांवों और शहरी निकायों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्यों में से एक है। P3 की अवधारणा भी इसमें है, जैसे इस प्रकार के लोगों का वैश्विक नेटवर्क तैयार करना जो धरती को सुरक्षित रखने की साझा जिम्मेदारी उठा सकते हैं। सतत विकास में योगदान भी ये देता है। ये कार्यक्रम भारत के नेट जीरो के लक्ष्य और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस मिशन के तहत 75 से अधिक पर्यावरण अनुकूल कार्य सुझाए गए हैं जो मुख्य रूप से 7 विषयों पर आधारित है, जैसे पानी बचाएं, ऊर्जा बचाएं, कचरा कम करें, ई कचरा कम करें, सिंगल यूज प्लास्टिक कम करें, स्थायी खाद्य प्रणालियों को अपनाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं।
1: अर्बानो मिशन लाइफ के बहुत सारे लाभ भी हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बचत, जरूरत न होने पर नल बंद रखने, बिजली बचाने और पानी के सही उपयोग से करोड़ों लीटर पानी और ऊर्जा की बचत संभव है। कार्बन उत्सर्जन में भी कमी होती है। व्यक्तिगत स्तर पर छोटे बदलाव जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, साइकिल चलाना, LED बल्ब का प्रयोग से कार्बन फुटप्रिंट को भी कम किया जा सकता है। कपड़े के थैलों का उपयोग और सही कचरा प्रबंधन से प्लास्टिक प्रदूषण और ई कचरे पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह मिशन भारत की प्राचीन संस्कृति और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने की परंपरा को भी आधुनिक जीवन से जोड़ता है। तो बहनों, ये हुई बातें मिशन लाइफ का।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम सहाय। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल जंगलों और वन्य जीवों से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि सीधे हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वन्य जीवों का महत्व। हम यह वन्य जीवों की बात करते हैं तो हमारे मन में अक्सर शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू या हाथी जैसे बड़े जानवरों की तस्वीरें उभरती है, लेकिन वास्तव में वन्य जीवन की दुनिया इससे कहीं अधिक विस्तृत है। इसमें छोटे बड़े स्तनधारी पक्षी, शरीरी उभयचर, कीट पतंगे और असंख्य जीव शामिल हैं। प्रकृति में कोई भी जीव छोटा या बड़ा, महत्वपूर्ण या गैर महत्वपूर्ण नहीं होता। प्रत्येक जीव की अपनी एक भूमिका होती है और यही भूमिकाएं मिलकर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखती है। हमारी पृथ्वी एक विशाल परिवार की तरह है। इस परिवार में मनुष्य अकेला नहीं रहता। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, पक्षी, कीट और वन्य जीव सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि इस परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य समाप्त होने लगे तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरी व्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि जैव विविधता का संरक्षण केवल वन्य जीवों को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि प्रकृति के संतुलन और मानव जीवन की सुरक्षा का प्रयास भी है। अब सवाल उठता है कि आखिर वन्य जीव पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जंगल में शाकाहारी जीव घास और वनस्पतियां को खाते हैं, दूसरी ओर मांसाहारी जीव इन शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। मान लीजिए किसी जंगल से बाघ और दूसरे बड़े शिकारी पूरी तरह समाप्त हो जाएं, तब हिरण और दूसरे शाकाहारी जीवों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। वे अत्यधिक मात्रा में वनस्पतियां खाने लगेंगी, जिससे जंगल का प्राकृतिक पुनर्जनन प्रभावित हो सकता है और वनस्पति कम होने लगेगी। इस प्रकार एक प्रजाति का कम होना या समाप्त होना दूसरी प्रजातियां और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसी को हम प्रकृति का खाद्य जाल कहते हैं। प्रकृति में प्रत्येक जीव किसी न किसी दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है। कोई भोजन बनता है, कोई भोजन करता है, कोई परागण में मदद करता है, कोई बीजों को फैलाता है और कोई मृत जीवों तथा जैविक पदार्थों को विघटित करने की प्रक्रिया में

नाम देता है। इसलिए जंगल में दिखाई देने वाले प्रत्येक जीव वास्तव में प्रकृति की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब बात करते हैं पक्षियों की। हम सुबह जब पक्षियों की चहचहाट सुनते हैं तो एक केवल मधुर संगीत नहीं होता, अनेक पक्षी कीट पतंगों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। कुछ पक्षी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। इसी प्रकार मधुमक्खियाँ और तितलियाँ जैसे कीट पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल्पना कीजिए, यदि परागण करने वाले जीव बड़ी संख्या में कम हो जाएं, तो अनेक पौधों के प्रजनन और फसलों के उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए एक छोटी सी मधुमक्खी भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी भूमिका निभाती है। वन्य जीवों का एक और महत्वपूर्ण योगदान है बीजों का प्रसार। कई पशु और पक्षी फलों को खाते हैं और उनके बीजों को दूसरे स्थानों तक पहुँचाते हैं। इस तरह जंगलों और वनस्पतियों का प्राकृतिक विस्तार होता है। कई प्रकार हम देखते हैं कि किसी जंगल में पेड़ पौधों की नई पीढ़ी अपने आप विकसित होती रहती है। इसके पीछे प्रकृति की ऐसी ही अनेक प्रक्रियाएं काम करती है जिनमें वन्य जीवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वन्य जीव मिट्टी और जंगल और प्राकृतिक क्रियाओं में भी योगदान देते हैं। अब जीव जंतु जंगल में विचरण करते हैं, भोजन करते हैं और अपना प्राकृतिक जीवन जीते हैं, तो उनके माध्यम से पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है। मृत जैविक पदार्थों के विघटन और पोषक तत्वों के पुनः चक्रण की प्रक्रिया से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। अर्थात जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है, जंगल एक जीवंत व्यवस्था है जिसमें हर जीव की अपनी भूमिका है। अब प्रश्न यह है कि यदि वन्य जीव इतने महत्वपूर्ण हैं, तो आज उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। बढ़ती जनसंख्या, अनियोजित निर्माण, जंगल की कटाई, सड़कों और अन्य विकास कार्यों के कारण अनेक वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित होते हैं। अब जंगल छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं, तो वन्य जीवों के लिए भोजन, पानी और सुरक्षित आवागमन की समस्या पैदा हो सकती है। दूसरी बड़ी समस्या है वन्य जीवों का अवैध शिकार और तस्करी। कुछ वन्य जीवों के शरीर के अंगों, खाल, दांत, सिंह या अन्य उत्पादों की अवैध मांग के कारण उनका शिकार किया जाता है। यह जानवर की हत्या नहीं होती, बल्कि प्रकृति की पूरी श्रृंखला को प्रभावित करने वाला कार्य हो सकता है। तीसरी चुनौती है प्रदूषण। प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ, जहरीले अवशिष्ट और जल प्रदूषण वन्य जीवों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। नदियों और तालाबों में प्रदूषण बढ़ने से जलीय जीव प्रभावित होते हैं। प्लास्टिक का कचरा और कई बार पशु पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होता है। चौथी चुनौती है जलवायु परिवर्तन। तापमान में बदलाव, वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और जंगलों में आग जैसी घटनाएं वन्य जीवों के प्राकृतिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में वन्य जीवों का संरक्षण केवल सरकार का या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें प्रकृति के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं और वन्य जीवन केवल देखने या मनोरंजन के लिए नहीं है। वे प्रकृति की उस व्यवस्था का हिस्सा है जिस पर हमारा जीवन भी निर्भर है। हम जंगलों में कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, जल स्रोतों को प्रदूषित ना करें, वन्य जीवों को परेशान ना करें, उनके प्राकृतिक आवासों में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। यदि हमें किसी घायल या संकट में पड़े वन्य जीव के बारे में जानकारी मिले, तो स्वयं उसे पकड़ने या नुकसान पहुंचाने के बजाय संबंधित वन विभाग या अधिकृत वन्य जीव बचाव संस्था से संपर्क करें। बच्चों को भी प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के नागरिक और नीति निर्माता होंगे। अगर बचपन से ही उन्हें यह सिखाया जाए कि चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव प्रकृति का हिस्सा है, तो आने वाली पीढ़ियाँ पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार बन सकता है। हम वन्य जीवों का संरक्षण और मानव विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वास्तविक विकास वही है जिसमें सड़कें और इमारतें भी बने, लेकिन जंगल और प्राकृतिक संसाधन भी सुरक्षित रहे। हमें ऐसी विकास प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। भारत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध देश है। हमारे यहाँ हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट तक
रेगिस्तानी क्षेत्रों से लेकर घने जंगलों और समुद्री इन अलग अलग परिस्थिति तंत्र में अनेक प्रकार के वन्य जीव निवास करते हैं। हमारे लिए यह केवल गर्व की बात नहीं बल्कि यह जिम्मेदारी भी है। हमें अपनी इस प्राकृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना होगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति के प्रयास से क्या बदल सकता है, लेकिन प्रकृति संरक्षण की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से होती है। एक व्यक्ति पेड़ बचाता है, एक परिवार प्लास्टिक का उपयोग कम करता है, एक विद्यालय बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करता है, एक समुदाय अपने स्थानीय जल स्रोत को स्वच्छ रखता है, और धीरे धीरे यही छोटे प्रयास एक बड़े परिवर्तन का रूप ले लेते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, लेकिन प्रकृति पर हमारा स्वामित्व नहीं है। हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं बल्कि उसके एक हिस्से हैं। यदि जंगल सुरक्षित है तो जल स्रोत सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ती है। यदि जैव विविधता सुरक्षित है तो पारिस्थितिकी तंत्र अधिक मजबूत और संतुलित रह सकता है, और यदि पर्यावरण स्वस्थ है तो मानव जीवन भी अधिक सुरक्षित और स्वस्थ रह सकता है। इसलिए वन्य जीवों की रक्षा करना वास्तव में अपने भविष्य की रक्षा करना है। आइए आज हम एक संकल्प लें, हम वन्य जीवों का सम्मान करेंगे, उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा में सहयोग करेंगे, जंगलों और जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करेंगे, प्लास्टिक और अन्य कचरे का जिम्मेदारी से निपटारा करेंगे, वन्य जीवों से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधि को बढ़ावा नहीं देंगे, और सबसे महत्वपूर्ण अपने परिवार बच्चों और समाज को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाएंगे। क्योंकि जब जंगल में बाघ सुरक्षित होता है तब आकाश में पक्षी स्वतंत्र उड़ते हैं, जब नदी में मछलियाँ सुरक्षित रहती हैं और जब मधुमक्खियाँ फूलों पर मंडराती हैं, तब केवल वे जीव सुरक्षित नहीं होते बल्कि प्रकृति की पूरी श्रृंखला जीवित रहती है, और उस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी हम भी हैं। इसलिए आइए वन्य जीवों को केवल जंगलों की संपत्ति ना समझें, उन्हें प्रकृति के सहयात्री समझें। उनके अस्तित्व से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। प्रकृति बचेगी तो जैव विविधता बचेगी, जैव विविधता बचेगी तो पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, और पर्यावरण का संतुलन रहेगा तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्रकृति से प्रेम कीजिए, वन्य जीवों का सम्मान कीजिए, और अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।

बहनों, अभी आप सुन रहे थे पूनम सहाय की वार्ता जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वन्य जीवों का महत्व। आइए बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये जो विषय है ये कोई नया विषय नहीं है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य का संकल्प है। बेटी परिवार की खुशियों के साथ साथ समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को जन्म से पहले और बाद में सुरक्षा देना, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। हमें बेटियों और बेटों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियों को भी समान अवसर, अच्छी शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता मिलनी

0: बेटी अपने अधिकारों को समझती है, सही निर्णय लेना सीखती है और आगे चलकर अपने परिवार और समाज को भी शिक्षित और सशक्त बनाती है। तो बहनों, न बेटी को बोझ समझें, न उनकी शिक्षा रोकेंगे, बेटी को देंगे समान अधिकार, तभी बनेगा देश सशक्त और खुशहाल।
1: बिल्कुल सही कहा। और बेटी परिवार की मुस्कान है, बहनों समाज की शक्ति है, देश का उज्जवल भविष्य है। आज बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, कला और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। आवश्यकता है तो बस उन्हें समान अवसर और सही मार्गदर्शन देने की। कई बार सामाजिक सोच, भेदभाव और शिक्षा के कारण बेटियों को उनके अधिकारों और अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। हमें इस सोच को बदलना होगा। बेटी के जन्म पर खुशी मनाना, उनकी शिक्षा जारी रखना, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना और उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना हर परिवार की जिम्मेदारी है। एक बेटी को पढ़ाना केवल एक बच्चे को शिक्षित करना नहीं है, बल्कि एक परिवार और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करना है। बेटी घर में जन्म लेती है तो खुशियाँ लाती है, लेकिन उसकी असली पहचान तब बनती है जब उसे समान अवसर, अच्छी शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार मिलता है। आज की बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। शिक्षा हो, खेल हो, चिकित्सा हो, विज्ञान हो या प्रशासन, बेटियाँ अपनी मेहनत और प्रतिभा से नई पहचान बना रही हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है हम बचपन से ही बेटियों को प्रोत्साहित करें। हमें समझना होगा कि बेटी की शिक्षा परिवार पर बोझ नहीं, बल्कि परिवार और समाज के भविष्य में किया गया सबसे अच्छा निवेश है। बेटियों की शिक्षा के साथ साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। घर में बेटे और बेटी के बीच भेदभाव ना हो, दोनों को समान प्यार, समान अवसर और आगे बढ़ने का समान अधिकार मिले। बेटी को जन्म लेने का अधिकार देंगे, बेटी को पढ़ने का अवसर देंगे, बेटी को आगे बढ़ने का हौसला देंगे। बेटियों को बचाएं, बेटियों को पढ़ाएं और उनके सपनों को नई उड़ान दें। बिल्कुल बहनों, क्या हम बेटियों को वह अवसर दे रहे हैं जिसकी वे हकदार हैं? उस बेटी की बात कर रहे हैं जो कभी किसी गोद में मुस्काती है, कभी घर में चहकती है तो और एक दिन अपने ज्ञान, आत्मविश्वास और मेहनत से पूरे परिवार का नाम रोशन करती है। अक्सर बेटियों से कहा जाता है तुम्हें तो एक दिन दूसरे घर जाना है, लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बेटी चाहे जिस घर में जाए, वह अपने ज्ञान और संस्कारों से दो परिवारों को मजबूत बनाती है। एक बेटी जब पढ़ती है तो केवल उसकी ज़िंदगी नहीं बदलती, उसके साथ बदलता है पूरा परिवार और उसकी सोच। वह अपने अधिकारों को समझती है, सही फैसले ना सीखती है और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। इसलिए बेटियों की पढ़ाई को कभी बीच में ना रोकें, उनकी रुचि को पहचानें, उनके सपनों को बुनें और उन्हें आगे बढ़ने का विश्वास दें। आइए बहनों, सुनते हैं एक गीत।

0: बहनों बेटियों को बचाएं और बेटियों को आगे बढ़ने का भी हक दें। बेटियां परिवार की शान और समाज की पहचान है। उन्हें जन्म लेने, पढ़ने और देखने और अपने जीवन में आगे बढ़ने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। बेटियों के साथ भेदभाव ना करें और उनकी शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। देखिए कुछ
1: बिल्कुल बहनों, जिस घर में बेटी मुस्कुराती है उस घर में खुशियां खुद चली आती हैं। लेकिन केवल बेटी का जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सुरक्षित वातावरण देना, अच्छी शिक्षा देना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उसे अपने सपने पूरे करने का अवसर देना भी उतना ही ज़रूरी है। यही है बदलती सोच की शुरुआत। बेटी को केवल घर के काम तक सीमित न रखें, उसकी प्रतिभा को पहचानें। वो डॉक्टर बनना चाहती है, शिक्षक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कलाकार या किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहती है, उसे मेहनत करने का अवसर दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेटी की सुरक्षा केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। बेटों को ही बचपन सिखाएं कि लड़कियों का सम्मान करना उनका कर्तव्य है। घर में समानता की शुरुआत होगी तभी समाज में बदलाव आएगा। बेटी को बचाना पहला कदम है, बेटी को पढ़ाना दूसरा और उसे आत्मनिर्भर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है।
0: क्योंकि एक शिक्षित बेटी केवल अपना भविष्य नहीं संवारती, वह आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य भी बेहतर बनाती है।

0: बेटी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा बड़े साधनों की ज़रूरत नहीं होती। बहनों, कई बार माता पिता का एक प्रोत्साहन भरा शब्द, एक किताब और पढ़ने का अवसर ही उसके भविष्य की दिशा बदल देता है। हमारे समाज में आज भी कहीं कहीं बेटियों की शिक्षा को बेटे की शिक्षा से कम महत्व दिया जाता है। यह सोच बदलनी होगी। बेटी को स्कूल भेजना केवल उसकी पढ़ाई पूरी करना नहीं है। शिक्षा उसे अपने अधिकार समझने, सही और गलत में अंतर करने, आत्मविश्वास से निर्णय लेने और आत्मनिर्भर बनने की शक्ति देती है। माता पिता बेटियों को खुलकर अपनी बात कहने का अवसर दें, उनकी रुचि और प्रतिभा को पहचानें, उनकी पढ़ाई को बीच में ना रोकें और सबसे बढ़कर उन्हें यह एहसास कराएं कि वे किसी से कम नहीं हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए परिवार के साथ साथ समाज की को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ हर बेटी बिना डर के स्कूल जा सके, सीख सके और अपने सपनों की ओर बढ़ सके।
1: बहनों, इस योजना का उद्देश्य है कि बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं को शोषण से बचाना और उन्हें सही गलत के बारे में अवगत कराना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना और महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाएं वितरित करने में भी सुधार करना है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से लड़के और लड़कियों के लिंग अनुपात में ध्यान केंद्रित किया गया है और इस योजना का उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को बचाना और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है। शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाने और उनकी इसमें भागीदारी को सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है। तो बहनों, इस चर्चा के बाद हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें आज यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम घर आंगन से अब दीजिए रागनी कुमारी और
0: प्रतिमा वर्मा को
1: अनुमति।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: की रांची केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं, शाम के 6 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। धनबाद के जगजीवन नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से सेवा ज्योति यात्रा आयोजित की गई। सांसद ढुल्लू महतो और विधायकों ने मशाल जुलूस निकाला। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जनसेवा का संकल्प भी लिया। सिमडेगा के नगर भवन में आज पोषण माह समापन समारोह सह व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि बच्चों और महिलाओं को पोषण युक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी रखने की जरूरत है। इस अवसर पर पोषण को लेकर जागरूक रहने की शपथ भी ली गई। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में बिंदल मॉल के एक रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार दो कथित मुख्य शूटर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हथियार बरामदगी के दौरान दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी। घायल मोहन यादव और अजीत मंडल को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल बरामद किए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर पलामू के हुसैनाबाद में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। SDPO दिव्यांश शुक्ल ने दंगवार इंटरस्टेट चेकनाका, विभिन्न पूजा पंडालों और विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में 24 घंटे सतर्कता, संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच तथा नियमित गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही पूजा पंडालों और शहरी क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों को लगातार चालू रखने को कहा। दूसरे T20 मैच के लिए भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आज रांची पहुंच गई। हवाई अड्डे पर क्रिकेट प्रेमियों और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दोनों टीमों का स्वागत किया। इसके बाद दोनों टीमें बस से रेडिसन ब्लू होटल के लिए रवाना हुई। GSEA उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि कल पहले हाफ में वेस्टइंडीज और दूसरे हाफ में भारतीय टीम अभ्यास करेगी। 9 अक्टूबर को होने वाले मैच में करीब 50,000 दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ग्रामीण सभा में सबसे पहले बात करते हैं सरसों की खेत की तैयारी की। तो सरसों का रबी की तिलहनी फसलों में एक मुख्य स्थान है। श्रोताओं, सरसों की खेती सीमित सिंचाई की दशा में भी अधिक लाभदायक फसल है। इसकी फसल के लिए उन्नत विधियां अपनाने से उत्पादन और उत्पादकता में बहुत ही वृद्धि होती है। कुछ इसकी उन्नतशील प्रजातियां आपको बता दें, राई या सरसों के लिए बोई जाने वाली उन्नतशील प्रजातियां हैं जैसे क्रांति, माया, वरुणा, इसे हम T59 भी कहते हैं यानी T59, पूसा, बोल्ड, उर्वशी और नरेंद्र राई प्रजातियां की बुआई सिंचित दशा में की जाती है। और असिंचित दशा में बोई जाने वाली सरसों की प्रजातियां जैसे कि वरुणा, वैभव तथा वरदान इत्यादि प्रजातियों की बुआई करनी चाहिए।
1: और ग्रामीण भाइयों, इसमें जलवायु और भूमि की आवश्यकता होती है। सरसों की फसल के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। सरसों की फसल के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है जिससे कि जल निकास उचित प्रबंध होना चाहिए। इसकी खेती के लिए खेत की तैयारी सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इसके पश्चात से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करना चाहिए। इसकी जुताई करने के पश्चात पाटा लगाकर खेत को समतल करना बहुत ही जरूरी है। और इसका जो बीज दर है, सिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल की बुआई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना चाहिए। सरसों की फसल के लिए बीज जनित रोगों की सुरक्षा हेतु 2 से 5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए।
0: बुआई के लिए उपयुक्त समय आपको बता दें, सरसों की बुआई का उपयुक्त समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक है। सरसों की बुआई देशी हल के पास 5 से 6 सेंटीमीटर के हल के पीछे 5 से 6 सेंटीमीटर गहरे कूड़ों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। फसल में सिंचाई कब करें? तो सरसों के फसल में पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई फलियों में दाने भरने की अवस्था में करना चाहिए। यदि जाड़े में वर्षा हो जाती है तो दूसरी सिंचाई ना भी करें तो उपज अच्छी प्राप्त हो सकती है। सरसों की खेती के लिए 60 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद की बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए और सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के 25 से 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग रूप में प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण भी जरूरी है। सरसों की खेती में बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकालकर उनकी आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। खरपतवार नष्ट करने के लिए एक निराई गुड़ाई सिंचाई के पहले और दूसरी सिंचाई के बाद करें। रसायन द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडा मिथालिन 30 ईसी रसायन की 3.3 लीटर मात्रा की प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। बुआई के 2 से 3 दिन के अंतर पर यह छिड़काव करना अति आवश्यक है।
1: और फसल में लगने वाले रोगों से नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे? तो सरसों की फसल में प्रमुख रोग जैसे अल्टरनेरिया, पत्ती झुलसा रोग, सफ़ेद कीट रोग, चुनिल आसिता रोग और तुलासिता रोग फसल में लगते हैं। इन रोगों के नियंत्रण के लिए मेंकोजे 75% नामक रसायन की 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। सरसों में कीट अलग अलग तरह के होते हैं, तो सरसों की आरा मक्खी यह काले रंग की घरेलू मक्खी से होती है और मादा का अंडा रोपण आरी के आकार का होने के कारण इसे आरा मक्खी भी कहते हैं।

फीट की सुंडियाँ पत्तियों के किनारे पर छेद बनाती है और बहुत ही तेजी से खाती है। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियन 50 cc 1.5 लीटर की 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं।

किसान भाइयों, सरसों की अच्छी फसल केवल अच्छे बीज से नहीं बल्कि सही समय पर खेत की उचित तैयारी से शुरू होती है। यदि खेत अच्छी तरह तैयार हो, मिट्टी में पर्याप्त नमी हो और खरपतवार का नियंत्रण किया गया हो तो फसल की शुरुआत मजबूत होती है। सरसों की बुआई से पहले खेत की मिट्टी की जांच कराना लाभदायक है। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति का पता चलता है और उसी के अनुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है। खेत की अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा करें, खेत में बड़े बड़े ढीले ना रहें और खेत को समतल रखें। अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट उपलब्ध हो तो मिट्टी में मिला सकते हैं। साथ ही खेत को खरपतवार से मुक्त रखना जरूरी है। बुआई के समय मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। बहुत अधिक पानी या खेत में जलभराव सरसों की फसल के लिए उचित नहीं है।

0: और बीज का चुनाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण। अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित उन्नत और प्रमाणित बीज का ही चयन करें और बीज की मात्रा और बुआई की दूरी के लिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से कृषि विभाग की सलाह ले सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में खेतों में जब सरसों के पीले फूल खिलते हैं तो पूरा खेत जैसे पीली चादर से ढक जाता है, लेकिन इस सुंदर फसल के पीछे किसान की सही योजना और मेहनत जरूरी है। सबसे पहले खेत से पिछली फसल के अवशेष और खरपतवार को हटा दें और खेत को भुरभुरा और समतल करें। बीजों को अंकुरण के लिए अनुकूल वातावरण मिल सकता है और सरसों की बुआई के लिए उचित नमी भी जरूरी है। खेत में न तो बहुत सूखापन हो और न ही पानी जमा हो। अब बारी आती है कि बीज की, तो हमेशा प्रमाणित और क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्म के बीज का ही चयन करें। बुआई की दूरी और बीज उपचार के संबंध में स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह आप जरूर लें। ग्रामीण भाइयों, सरसों की फसल में समय पर खरपतवार नियंत्रण और पोषक तत्वों का संतुलित प्रबंधन आगे चलकर फसल की अच्छी बढ़वार में मदद करता है। तो बहनों, ग्रामीण भाइयों, ये हुई बातें सरसों की खेती की तैयारी की।
1: और अब आपको भेंटवार्ता सुनवाते हैं रबी के कृषि यंत्र। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, जो कृषि विशेषज्ञ हैं, और बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
2: तमाम किसान भाई बहन बालकों बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, हमारे किसान भाई लोग, जितने भी ग्रामीण भाई बहन हैं, अब खरीफ की तैयारी से अपनी फसल उत्पादन को प्राप्त करने की के पायदान पर पहुंच चुके हैं और बहुत से किसान भाई अब रबी की तैयारी में जुट गए हैं। रबी की तैयारी में बहुत सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाती है किसान भाइयों, विशेषकर यंत्र के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। कैसे हमें खेती करनी चाहिए, इसकी तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, इन सारी बातों पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। और आज हम यंत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा करेंगे पलामू जिला कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
3: नमस्कार, जोहार।
2: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि अभी रबी के लिए उनको किन किन यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन फसलों के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी।
3: जी हाँ, अभी किसान भाई खरीफ फसल के उत्पादन ले रहे हैं, लेकिन इस बार तो खरीफ फसल काफ़ी कम हुई है क्योंकि बारिश पलामू में बहुत कम हुई। पलामू क्या पूरा झारखंड में ही बारिश की काफ़ी कमी महसूस की गई है और खरीफ फसल बहुत कम में आच्छादन हुआ है। और अब किसान भाई रबी फसल की उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि जब खरीफ फसल नहीं तो रबी फसल लेना जरूरी है। किसान भाई को इस जीवन यापन के लिए रबी फसल जब तक नहीं अच्छी होगी उनकी जीविकोपार्जन में काफ़ी दिक्कत होगी। तो रबी फसल के उत्पादन में किसान भाई जो तैयारी कर रहे हैं खेत की, उसके लिए अब कुछ तो रबी फसल लगा भी रहे हैं, जैसे अभी जो है राई बहुत जगह लगा भी चुके होंगे और लगा रहे होंगे अभी।
2: अच्छा।
3: है ना, तो उसके लिए खेत की तैयारी, कुछ दिन में जो है गेहूं की भी बुआई करेंगे, है ना। तो ये सारे की तैयारी के लिए किसान भाई कृषि यंत्र का अगर उपयोग करेंगे तो काफ़ी उनको फायदा होगा, क्योंकि खेत की तैयारी से लेकर के जो फसल की कटाई तक भी है जो काफ़ी कृषि यंत्र का उपयोग उसमें होता है। अगर कृषि यंत्र का उपयोग किसान भाई करके खेती करते हैं तो उनकी लागत खर्च काफ़ी कम आएगी और उनका जो बचत होगा वो फायदे में महसूस होगा। तो इसके लिए किसान भाई कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी में आप जो है गेहूं की बुआई करना है, चाहे राई की बुआई करना है, या आप अभी जो कुल्थी की भी बुआई किए हैं, कुछ किसान भाई कर भी रहे हैं, है ना, उड़द की भी बुआई करना है, तो ये सारे में खेत की तैयारी एक विशेष महत्व रखता है कि खेत की तैयारी कैसे किया जाए। खेत की तैयारी में जैसे आप अगर आप मोल्ड बोल्ड जैसे हल आती है, एक मोल्ड बोल्ड हल से अगर खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें जो आपका बहुत सारा जो उसमें घास वगैरह है, खर पतवार है, वो मिट्टी में दब जाते हैं, और मिट्टी में दब जाने से क्या है कि वो उसका उत्पादन, उसका जो बढ़वार जो है कम हो जाता है।
2: अच्छा।
3: क्योंकि रबी फसल में एक मेन प्रॉब्लम आती है खर पतवार का, खर पतवार अगर ज़्यादा आ जाता है तो रबी फसल का उत्पादन काफ़ी घट जाती है। तो उसमें अगर उससे उपयोग करके फिर कल्टीवेटर चला करके खेत की तैयारी करते हैं, प्राइमरी जुताई, प्रथम जुताई, तो आपका उससे अच्छी होती है। उसके बाद बुआई के लिए आपको सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए।
2: अच्छा।
3: चीज की बुआई करते हैं तो सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए। सीड ड्रिल का उपयोग करने से क्या होता है कि वो लाइन में बुआई होती है और बीज से बीज की दूरी और कतार से कतार की दूरी जो है मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है, जिससे कि आपकी फसल का बढ़वार जो है अच्छा होगा और उसका उत्पादन अच्छा होगा और उसको मैनेज करने में भी आसानी सुविधा होती है। उसी तरह से जैसे गेहूं की बुआई कर, तो गेहूं की बुआई में भी एक खर्च आती है, खेत की जुताई में एक अच्छा खर्च किसान को हो जाता है। तो उसमें भी अगर जीरो टिलेज मशीन की से गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें भी किसान की काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि ऐसा किसान भाई देख रहे हैं कि गेहूं की बुआई में जो है थोड़ा ज़्यादा समय पर नहीं बो पाते हैं किसान भाई।
2: अच्छा।
3: समय के पर नहीं बोने से उसके उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। ऐसे देखा गया है रिसर्च से कि अगर गेहूं की बुआई में एक दिन की भी देरी होती है तो उसके उत्पादन में करीब प्रति कट्ठा 1 kg का उत्पादन घट जाता है। अगर सही सारे बीज और वही सेम रहे तो पर भी सिर्फ बुआई के लेट होने से आपका उत्पादन में 1 kg का प्रतिदिन के हिसाब से घट जाती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। लेकिन किसान भाई क्या होता है कि धान की जो खेती करते हैं उसी में गेहूं की खेती भी करते हैं, क्योंकि सिंचाई की सुविधा वहाँ उनको रहता है, जहाँ सिंचाई की सुविधा रहता है वहीं गेहूं की खेती करते हैं। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जिस खेत में धान की कटाई के बाद ही उसमें गेहूं की बुआई करते हैं, तो धान की कटाई में थोड़ा सा अगर देर हो जाती है और अगर खेत में नमी नहीं है तो खेत में नमी लाने के लिए उसमें सिंचाई भी करना पड़ता है। तो सिंचाई करने से क्या होता है कि आपका और देर एक कर कम से कम जो है 10-15 दिन और देरी हो जाती है, जब तक उसमें जोतने इतना नमी नहीं आती है फिर उसकी जुताई नहीं कर पाते हैं किसान भाई। तो धान काटने के बाद भी 15 दिन की देरी हो जाती है धान गेहूँ की बुआई में, तो इसके कारण जो है किसान को काफ़ी उसमें घाटा होता है। इसके लिए जो है तो धान काटने के बाद उसमें किसान भाई को गेहूं की बुआई में कम से कम 15 दिन की देरी हो जाती है। अगर उस स्थिति में किसान भाई जीरो टिलेज मशीन का उपयोग करते हैं तो समय पर उनकी बुआई हो जाती है, क्योंकि जीरो टिलेज मशीन में क्या होती है कि धान काटने के बाद उसमें तुरंत जो है जीरो टिलेज मशीन से गेहूँ की बुआई, चना की बुआई, मसूर की बुआई आप डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आज धान काटे तो अगर उसमें नमी कम भी है तो पर भी बुआई कर सकते हैं, और थोड़ा अगर नमी ज़्यादा भी है तो पर भी उसमें गेहूं की बुआई आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एडजस्टमेंट रहता है कि आपके बीज को किस डेप्थ पर गिराना है तो उसमें एडजस्टमेंट रहता है। तो इस मशीन से बुआई करने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो खेत की जुताई करने में जो खर्च आती है वो बच जाती है, जुताई करने नहीं पड़ती है खेत की। दूसरी जो है कि खेत की जब जुताई नहीं होती है तो उसमें जो खर पतवार उगते हैं वो खर पतवार नहीं के बराबर उगते हैं। तीसरी फायदा ये होती है कि उसमें जो है सिंचाई में जो पानी लगती है वो पानी कम लगेगा, कम पानी में आपका ज़्यादा जो है खेत की सिंचाई हो जाती है। किसान भाई को ट्रिपल फायदा होता है उसमें। और तीसरी चौथी फायदा ये होती है कि इस तरह से बुआई करने पर कम करीब करीब उत्पादन जो है 10% बढ़ जाती है।
2: अच्छा।
3: तो ये उत्पादन कैसे बढ़ती है, क्योंकि इस मशीन से बुआई करने पर क्या होता है कि ये जीरो टिलेज मशीन में बीज गिरने का और खाद गिरने का अलग अलग पाइप से जो बना हो रहा है, इसमें क्या होता है एक फाल होता है जीरो टिलेज मशीन में जो खेत में एक चीरा लगाते जाता है और उस चीरा में ही गेहूं का बीज और खाद दोनों गिरता है। खाद ऐसा एडजस्टमेंट रहता है उसमें कि खाद जो है बीज से नीचे गिरता है,
2: अच्छा,
3: बीज थोड़ा ऊपर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि बीज से जैसे ही अंकुरण निकलता है उसको तुरंत खाद से पौष्टिक पदार्थ मिलने लगता है।
2: अच्छा।
3: तो शुरू से ही पौधा जो है काफ़ी हेल्दी रहता है और पुष्ट रहता है, जिसके कारण उसका उत्पादन करीब करीब जो जनरल बोते हैं उससे 10% उत्पादन ज़्यादा आता है।
2: और राई वगैरह में?
3: राई सब सारे मेरे, राई थोड़ा सा इसमें जीरो टिल से बोने नहीं बोया जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है। इसमें आप चना बो सकते हैं, मसूर बो सकते हैं, थोड़ा मोटा जो बीज है उसको बोने में आसानी हो। तो इस तरह से अगर जीरो टिलेज मशीन से बुआई करते हैं तो काफ़ी किसान भाई को फायदा हो सकता है और उससे उत्पादन ज़्यादा आता है। तीसरी मशीन जो है कि जो मल्टी क्रॉप प्लांटर,
2: अच्छा।
3: मल्टी क्रॉप प्लांटर से भी जो है किसान भाई खेती कर सकते हैं और अपना जो गेहूं चना मसूर जो है उसकी रबी फसल की बुआई कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है खेत की, इसमें जो है खेत की तैयारी करना पड़ता है, खेत की तैयारी करके आप जो है मल्टी क्रॉप प्लांटर से आप जो है बीज को खेत में बो, इससे क्या होता है कि आपका पौधा से पौधा और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन रहती है और उसको मैनेज किया जा सकता है। तीसरी है कि अगर किसान भाई खेत की तैयारी करके बोना चाह रहे हैं कोई चीज़ तो उसमें सीड ड्रिल भी का भी उपयोग कर सकते हैं। सीड ड्रिल में क्या होता है कि सीड ड्रिल मैनुअल भी आती है और पावर चालित भी आती है और बैल चालित भी आती है।
2: अच्छा,
3: तो तीनों तरह के सीड ड्रिल आती है, उस सीड ड्रिल से किसान भाई बीज को बुआई कर सकते हैं। तो मैं किसान भाई से यही कहूँगा कि जो छीटा विधि से जो बुआई करते हैं किसान भाई, छीटा विधि से ना करके अगर ये सारे मशीन का उपयोग करके किसान भाई करते हैं तो आपका बीज भी कम लगेगा और उत्पादन भी अच्छा आएगा और खर्च में कमी आएगी। तो किसान भाई को ये मैं सजेशन दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप खेत में कृषि यंत्र का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो।
2: वास्तव में किसान भाइयों, कृषि यंत्रों का खेतीबाड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें ज़रूरत है कि जिस फसल के लिए जिस यंत्रों की आवश्यकता हो उसका हम उपयोग करें और उपयोग करके हम बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। चूँकि हम पूंजी लगा देते हैं किसान भाइयों, और पूंजी लगाने के बाद हमारी आशा होती है कि हम दोहरा तेहरा मुनाफा प्राप्त करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम, आज कृषि आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है, हमें कृषि यंत्रों का अवश्य सहयोग लेना चाहिए। हमें कृषि यंत्र अनुदानित दर पर भी मिलते हैं, हमें आत्मा से संपर्क करना चाहिए, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना चाहिए, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान से संपर्क करना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। आप थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी। आप कार्यक्रम से जुड़े और कृषि यंत्रों से जुड़ी जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।

ग्रामीण भाइयों, अभी आप सुन रहे थे रबी के कृषि यंत्र इस विषय पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ता कार थे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब बात करते हैं खेतों की गहरी जुताई के लाभ की। किसान भाइयों, खेती हमारी आजीविका का आधार है और अच्छी खेती के लिए मिट्टी की अच्छी तैयारी बहुत ज़रूरी है। जब खेत की मिट्टी की ऊपरी सतह के नीचे सख्त परत बन जाती है तो फसल की जड़ों को नीचे जाने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में उचित समय पर गहरी जुताई करने से यह सख्त परत टूटने में मदद मिलती है। गहरी जुताई से मिट्टी में हवा और पानी के आवागमन में सुधार होता है। बारिश का पानी मिट्टी में बेहतर तरीके से समा सकता है और फसल की जड़ें भी गहराई तक फैल सकती हैं। इससे खेत में उगे खरपतवारों को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। साथ ही मिट्टी के अंदर छिपे हुए कीटों के अंडे और रोगों के अवशेष सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने से कमजोर हो जाते हैं।

मिट्टी से होती है और मिट्टी की बेहतर तैयारी में गहरी जुताई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गहरी जुताई से मिट्टी की ऊपरी सख्त परत टूटती है और मिट्टी के अंदर हवा और पानी के आवागमन में भी सुधार होता है। वर्षा और सिंचाई का पानी मिट्टी में बेहतर तरीके से प्रवेश कर सकता है। गहरी जुताई के तो ये सब लाभ हैं ग्रामीण भाइयों। और फसल की जड़ें अधिक गहराई तक पहुंचने से पौधों के मिट्टी में नमी और पोषक तत्व लेने में सहायता मिलती है। खेत में मौजूद खरपतवारों की जड़ों और भूमिगत भागों को नष्ट और कमजोर करने में मदद मिलती है और वर्षा के पानी को मिट्टी में संरक्षित करने से सहायता मिल सकती है। मिट्टी भुरभुरी होने से बीज का अंकुरण और पौधों की शुरुआती वृद्धि बेहतर हो सकती है। और ग्रामीण भाइयों, हर फसल और हर मिट्टी में बार बार गहरी जुताई जरूरी नहीं होती। मिट्टी के प्रकार, फसल और स्थानीय कृषि सलाह के अनुसार ही जुताई की गहराई तय करें। अत्यधिक जुताई से मिट्टी की संरचना और नमी पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। खेतों की गहरी जुताई आमतौर पर 9 से 12 इंच या इससे अधिक गहराई तक करने से मिट्टी की गुणवत्ता और फसल के उत्पादन में भी सुधार होता है और मिट्टी पोली और भुरभुरी हो जाती है, जिससे बारिश या सिंचाई का पानी गहराई तक सोख लिया जाता है और पानी में खेत भरता नहीं है। और गर्मियों में गहरी जुताई करने से सूर्य की तेज धूप और पराबैंगनी किरणें मिट्टी की निचली सतह तक पहुंचती है, जिससे हानिकारक कीड़ों के अंडे, प्यूपा, लार्वा और फंगस के बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। मोथा और धूप जैसी जो खरपतवार है, जैसे जिद्दी घास और खरपतवारों की जड़ें और बीज धूप में सूखकर खत्म हो जाते हैं, जिससे अगली फसल में खरपतवार कम उगते हैं। नीचे दबी हुई मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर के पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होता है। पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर नीचे से नमी और जरूरी पोषक तत्व आसानी से खींच पाती है, जिससे फसल हवा या आंधी में गिरती नहीं है। इससे लागत में ही बचत होती है। कीड़े और खरपतवार कम होने से कीटनाशकों और निराई गुराई पर भी होने वाला खर्च घट जाता है।

किसान भाइयों, गहरी जुताई खेत की मिट्टी को पलटने और उसकी सख्त परत को तोड़ने में मदद करती है। इससे मिट्टी में मौजूद हवा और नमी का संतुलन बेहतर हो सकता है और फसल की जड़ें आसानी से फैल सकती हैं। गहरी जुताई का एक बड़ा फायदा यह भी है कि खेत में उगे खरपतवारों की जड़ें और अवशेष मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। कुछ कीटों और रोगों के जीवन चक्र को तोड़ने में इसे मदद मिल सकती है। बारिश का पानी खेत में अधिक अच्छी तरह समा सके, इसके लिए उचित जुताई उपयोगी हो सकती है। इससे मिट्टी में नमी को बनाए रखने में सहायता मिलती है और आने वाली फसल को लाभ मिलता है। ध्यान रखें कि गहरी जुताई जरूरत के अनुसार ही करें। बहुत अधिक जुताई करने से मिट्टी की संरचना प्रभावित हो सकती है और अनावश्यक लागत भी बढ़ सकती है, इसलिए अपने खेत की मिट्टी और फसल के अनुसार कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेना ज़्यादा बेहतर है। मिट्टी की सही तैयारी, फसल में खुशहाली की तैयारी। खेत की मिट्टी किसान भाइयों हमारी असली पूंजी है ना, तो और इसे केवल उपज का साधन ना समझें बल्कि इसकी सेहत का भी ध्यान रखें।

ग्रामीण भाइयों, खेत में यदि लंबे समय से खरपतवार की समस्या है तो गहरी जुताई उनके जड़ तंत्र को कमजोर करने में सहायक हो सकती है। पिछली फसल के अवशेष भी मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाए जा सकते हैं और गहरी जुताई के बाद जब मिट्टी कुछ समय तक सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहती है तो मिट्टी में छिपे कुछ कीटों और उनके अंडों को नियंत्रित करने में भी सहायता मिल सकती है। गहरी जुताई का एक और लाभ है बारिश के पानी का बेहतर संचयन, यानी पानी मिट्टी

0: में अधिक गहराई तक पहुंच सकता है और फसल के लिए नमी उपलब्ध रहने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन ग्रामीण भाइयों, एक बात हमेशा याद रखें कि गहरी जुताई हर खेत में हर वर्ष करना आवश्यक नहीं है। मिट्टी की प्रकृति, पिछली फसल और आने वाली फसल को ध्यान में रखकर ही इसका निर्णय करें। तो इस बार खेत की तैयारी करते समय मिट्टी की जरूरत को समझें, उचित कृषि तकनीक अपनाएं और मिट्टी की सेहत के साथ अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करें। तो ग्रामीण भाइयों, इसी चर्चा के साथ अब हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम ग्रामीण सभा से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: खेतीबाड़ी सुनने वाली तमाम कृषक बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार
1: और रागनी कुमारी का भी प्यार भरा नमस्कार।
0: कृषक बहनों, खेतीबाड़ी आपका अपना कार्यक्रम है, आइए इस बार में सबसे पहले बात करते हैं समसामयिक कृषि कार्य की। आप अपने खेतों की तैयारी कैसे करें और इस महीने कैसे अपने खेतों की देखभाल करें? तो सबसे पहले 7 से 11 अक्टूबर के बीच ध्यान रखें बहनों कि बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान और जोरदार सतही हवाएं चलने की संभावना है। अपने खेतों को जरूरी से बचाएं। तेज हवाओं के कारण मक्का और अरहर जैसी खड़ी फसलों के गिरने और सब्जी वाली फसलों के फल झड़ने की आशंका है। हम आपको सलाह देते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई खरीफ की जो फसल पककर तैयार हो रही है उसकी कटाई कर लें तथा उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। फसल काटने के बाद खाली हुए खेतों में 1 से 2 सिंचाई की सुविधा रहने पर तोरिया या फिर हरा चारा फसल की खेती करें और असीमित सिंचाई की सुविधा रहने पर आलू, हरा मटर या विभिन्न सब्जियों जैसे फूलगोभी, बंद गोभी, फ्रेंच बीन, टमाटर, प्याज आदि के साथ साथ मसाला वाली फसलों जैसे धनिया, अजवाइन, सौंफ, मेथी आदि की भी खेती कर सकते हैं। रबी फसल की समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी करें और आवश्यकता अनुसार बीज, उर्वरक, बीज को उपचारित करने के लिए आवश्यक रसायन, दलहनी फसल के लिए राइजोबियम कल्चर आदि का प्रबंध करें। वर्तमान मौसम की स्थिति में रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए जुताई और पाटा ठीक से लगाना चाहिए।
1: मक्का भुट्टा की अवस्था में है, मक्का भुट्टा बनने की अवस्था में है और एफिड्स और थ्रिप्स का प्रकोप भी हो सकता है। यदि देखा जाए तो इमीडा क्लोरोप्रीट 17.8 SL 50 मिलीलीटर याथिया मेथोक्साम 40 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें और किसानों को भी सलाह दी जाती है कि वे धान की फसल में फूल आने से लेकर दूध देने की अवस्था तक नियमित रूप से गंधी कीट की जांच करते रहें। यदि कीट की संख्या अधिक है तो उन्हें इमीडा क्लोरोप्रीट 0.6% और लैम्डा साई हेलोथ्रीन 4% SL 120 मिलीलीटर प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए और देर से रोपाई की गई धान जो पुष्प गुच्छ अवस्था में है उसे में लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर पानी जमा रखें और 17 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग डालें। अरहर की फसल अभी अपनी चरम वनस्पति

0: 1.0% ईसी 10,000 पीपीएम 2 मिलीलीटर का छिड़काव करें और शाम के समय वैसिल थुरिजियंसिस 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें।
1: जो किसान अगात आलू की खेती करना चाहते हैं वे उत्तम किस्म का बीज उर्वरक आदि का प्रबंध करें। अगात आलू की अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका या कुफरी पुखराज में से किसी एक का आप चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ में बुआई के लिए 12 क्विंटल बीज, 20 से 30 ग्राम का अंकुरित कंद हो, 40 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम DAP, 80 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 किलोग्राम गंधक की आवश्यकता होती है। बात करते हैं गोभी की। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सितंबर से अक्टूबर में पत्ता गोभी की अगेती बुआई करें। सामान्य किस्मों के लिए बीज दर 300 से 320 ग्राम प्रति एकड़ और संकर किस्मों के लिए 120 से 125 ग्राम प्रति एकड़ रखें। रोपण दूरी 60 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर रखें। उन्नत किस्में हैं गोल्डन एकर, अर्ली ड्रम हेड, प्राइड ऑफ इंडिया, संकर, गंगा, जमुना, कावेरी। और मुर्गी पालन की बात कर लेते हैं। मक्का एवं गेहूं के प्रोटीन युक्त हाइड्रोपोनिक्स चारा 10% मुर्गी दाना के अलावा दें। सफ़ेद दस्त से बचाव के लिए टेट्रा साइक्लिन पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर 100 मुर्गी को दें। अगर फिर भी दस्त की समस्या सही नहीं हो रही है तो टेट्रा साइक्लिन पाउडर 4 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर 100 मुर्गी को दें। आइए इसके बाद आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत भरत सिंह भारती की आवाज़ में।

0: शाम से लेके भेंट वार्ता है जो दिनेश मेहता गोदर्मा और शाम को प्लान करने वाले हैं। विषय है रबी की खेती की तैयारी और नर्सरी प्रबंधन। बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी संतोष कुमार।
1: तमाम श्रोताओं को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बात है एक सफल किसान से जो रबी की तैयारी हमारे ये किसान भाई कर रहे हैं और उसके लिए जितने भी रबी की फसलें हैं उनमें से जिन फसलों की इन्हें खेती करनी है उसकी नर्सरी ये तैयार कर रहे हैं। अभी आप हैं दिनेश कुमार मेहता, पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखंड के गोदर्मा कला गाँव के। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, स्वागत।
1: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों को बताइए कि अभी आप किस किस चीज़ की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, किस पौधों की तैयारी कर रहे हैं?
2: गोभी का पौधा नर्सरी बना रहे हैं, बैंगन का, मिर्ची का, पत्ता गोभी का और ब्रोकली का, यही सब का नर्सरी बन रहा है।
1: तो इसमें खासकर गोभी, ब्रोकली, बंदा गोभी वगैरह में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतते हैं आप?
2: देखिए, सावधानियाँ में तो अभी कुछ बारिश से भी गलने का संभव रहता है, तो उसके लिए पतला सा जाली टाइप के ऊपर कर देते हैं और नीचे कियारी बना के उसमें बिचड़ा को छोड़ देते हैं। ज़्यादा भी बारिश आएगा तो उस पर क्षति नहीं होगा। इसके बाद कुछ कीड़े मकोड़े लगते हैं उसमें दवा का भी छिड़काव कर देते हैं। हाँ, इसके बाद उसका बचाव देख रेख अच्छी तरह से करते हैं।
1: और खासकर किन कीड़ों का प्रकोप ज्यादा होता है?
2: ज्यादा कीड़ा जो है से उसका पत्ती जो है खाने लगते हैं, तो उसमें दवा का छिड़काव करते हैं तो वो बच जाता है और कुछ गलन भी होने लगता है, तो गलन का भी दवा देते हैं तो गलन भी सुधार हो जाता है।
1: अच्छा। और नर्सरी के बाद क्या क्या सावधानियाँ बरतते हैं और कैसे इसको खेतों में लगाने की तैयारी कैसे होती है?
2: देखिए, जब नर्सरी मेरा तैयार हो जाएगा तो खेत को अब तो बैल वगैरह से कोई किसान नहीं जोतवाते हैं, ट्रैक्टर से जोतवाते हैं और नहीं तो एक छोटा ट्रैक्टर 40-45 हज़ार मिलता है उससे भी जोत लेते हैं, कम जोतना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर से अच्छी तरह से जुताई करवा लेंगे और जब देखेंगे कि जुताई हो गया, इसके बाद उसको मेड़ बना देंगे और उसमें छोटा छोटा कियारी गढ़ देंगे, उसमें पत्ता गोभी लगा देंगे, चाहे जो नर्सरी तैयार हो, फूल लगा देंगे, पत्ता लगा देंगे, बैंगन लगा देंगे, मिर्ची लगा देंगे, ब्रोकली लगा देंगे, यही सब का जो है से खेती लगाएंगे।
1: अच्छा। और अभी किन किन किस्मों की खेती की जा रही है, जैसे बैंगन वगैरह तो हाइब्रिड करते हैं या देसी?
2: नहीं, देखिए, देसी करते हैं तो देसी भरपूर मात्रा में फायदा नहीं होता है, उससे किसान भाई खास पैसा नहीं कमा सकते हैं। जो भी हाइब्रिड का बीज रोपेंगे खेत में उसका पैदावार ज़्यादा है, इसलिए सभी किसान भाई जो हैं से हाइब्रिड का ही खेती करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा फायदा है और ज़्यादा मात्रा में भी निकलता भी है, इसलिए ज़्यादा बेनिफिट है हाइब्रिड में।
1: तो अभी जो भी है हमारे जो रबी की जो फसलें हैं उनमें इन सब्जियों की विशेषकर खेती की जा रही है अभी?
2: जी जी।
1: और यहाँ खेतों में फिर आपका क्या क्या प्रकोप पड़ता है, किन किन कीड़ों का प्रकोप पड़ता है जिससे फसल बर्बाद हो जाती है?
2: खेतों में जिसे कीड़ा लग जाते हैं तो उसका जो है से चाहे झुलसा रोग लग जाता है, ताना छेदक लग जाते हैं और पत्ती चाटने वाला कीड़ा लगते हैं, तो ये सब के देख रेख करने के बाद उसमें जो है से दवा

0: छिड़काव करते हैं तो दवा से खेती बच जाता है।
1: हाँ, और ये तो हुई सब्जी की बात।
0: जी जी,
1: अगर हम उद्यान की बात करें तो अभी कौन कौन से पेड़ पौधे हैं आपके पास?
0: अभी उद्यान की अगर बात कीजिएगा तो हमारे पास पेड़ पौधा है, नींबू है, नींबू तो ज़्यादा मात्रा में है, आंवला है, उसी में ओल है, आम है, मौसमी भी है और संतरा भी है।
1: तो अभी नींबू की क्या देख रेख कर रहे हैं?
0: नींबू का अभी देख रेख जिसे ज़्यादा, उसका पत्ती जो है से पीला हो जाता है, उसका डंठल पर दाग धाबा तरी आता है, चाहे बहुत सा मार्केट में जो पड़ता है
1: दाग धाबा पड़ जाता है।
0: हाँ, दाग धाबा पड़ जाता है, जिससे नींबू का डंठल पर जो दाग होता है धीरे धीरे दाग बढ़ते बढ़ते पूरा पौधा को सुखा देता है।
1: अच्छा,
0: तो इसके लिए जो है से कीटनाशक दवा का छिड़काव हम करते हैं, जिससे पत्ती खाने से बचे और चीती रोग जो दाग धाबा होता है उससे भी बचाव हो सके। ये दोनों को बचाने के लिए दवा का छिड़काव करते हैं।
1: और उस प्रकार से फिर फसल की उत्पादन ली जाती है।
0: जी जी,
1: और यहाँ अभी कौन कौन सी सब्जियाँ निकल रही हैं जिसकी खेती आपने अभी बरसात के मौसम में की थी?
0: देखिए, बरसात के मौसम में बैंगन किए थे, तो बैंगन तो कुछ पानी के चलते जो है से जलक गया, कुछ बाकी पौधा बचा हुआ है, उसमें कोड़ सोह के मिट्टी उत्ती दे दिया जाएगा तो बैंगन तैयार हो जाएगा।
1: अच्छा, और अभी फसलें कौन कौन सी जा रही हैं मार्केट में?
0: बाजार में अभी भिंडी जा रहा है, हाँ कुछ बैंगन भी निकलता है, वो भी जा रहा है।
1: अच्छा, और पशुपालन की अगर हम बात करें तो अभी कौन कौन से पशु हैं?
0: पशुपालन की अगर बात कीजिएगा तो हमारे पास पशुपालन में 10 से 15 बकरी मिलेगा।
1: अच्छा,
0: और 2 गाय है, दोनों गाय जो है से लगती है, हाँ 4 किलो सुबह 4 किलो शाम दूध भी देती है।
1: अच्छा
0: जी,
1: और बिक्री भी करते हैं?
0: हाँ, बिक्री भी करते हैं, दूध सुबह वाला बेच देते हैं और शाम वाला जो है से जिस घर में है जिसको दही खाना है दही खा लेते हैं, जिसको दूध खाना है दूध खा लेते हैं, शाम वाला नहीं बेचते, खाने के लिए रखते हैं।
1: और यहाँ की बाजार व्यवस्था कहाँ है?
0: बाजार व्यवस्था तो हम लोग के एकदम नज़दीक है, घर से 0.5 किलोमीटर दूर नहीं है। बी मोड़ भी मार्केट लगता है, रेहला में भी मार्केट लगता है, शुक्रवार की मार्केट लगता है रेहला में, रविवार के विश्रामपुर लगता है, इसे डेली मार्केट चौक पर है। जितना अगर साग सब्जी निकलेगा तो कहीं हम लोग के बाहर मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं।
1: हम लोग वर्तमान में आपने कोई सरकारी योजनाओं का लाभ लिया?
0: नहीं, अभी तो कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है।
1: अच्छा, पहले?
0: पहले मिला था तो पोलिंग हाउस था, वो तो सब खत्म हो गया, सब छेद हो गया।
1: तो फिर से पोलिंग हाउस लेना है?
0: हाँ, फिर से लेंगे, कहे कि पोलिंग हाउस में अनसीजन टाइम आप बिचड़ा डाल सकते हैं।
1: अच्छा,
0: जिससे पानी कितनों बारिश होगा और उसमें बिचड़ा, जिसे बैंगन हुआ, टमाटर हुआ, जितना भी बिचड़ा, फूल गोभी हुआ, बंधा गोभी हुआ, ब्रोकली हुआ, अगर उसमें हम करते हैं तो एक भी नुकसान न होता है, न उसमें कीड़े लगता है, न रोगे लगता है, कुछ नहीं लगता है पोलिंग हाउस में। इसलिए पोलिंग हाउस जो है किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। हम तो ये भी कहेंगे कि सब किसान भाई अपने खेत में पोलिंग हाउस लगावें और ज़्यादा से ज़्यादा बिचड़ा करने के लिए लाभ लें, उसमें कोई रोग नहीं लगता है।
1: तो मूलतः तो हमारे ग्रामीण बंधु बरसात में ये आपके के बाद अभी आपका सबसे अधिक आपके सब्जियां की खेती होती है।
0: जी जी,
1: और सरसों की भी खेती हमारे किसान भाई लोग, सरसों की क्या स्थिति है अभी? क्या
0: देखिए, अब तो सरसों बोआएगा, चूंकि खेत में मक्का लगा हुआ है तो मक्का काट के भी सरसों लगाते हैं, इसके बाद किसान भाई धान काट के भी सरसों बोते हैं, तो अभी दोनों फसल लगा है। अब धीरे धीरे जो है मक्का का खेती टूट रहा है, मक्का पक गया है, और वह खेत को सर सफाई करके किसान भाई बंधु उसमें सरसों का बुआई करेंगे।
1: सरसों के साथ और कोई?
0: सरसों के साथ अभी सरसों भी बुनेंगे, तब तक धीरे धीरे चना भी बुनने का समय आ जाएगा, चना भी उसमें बुन सकते हैं, चना भी बुनाएगा। हाँ, छोटा मोटा मान लीजिए कि मोटर भी बुनाएगा।
1: हाँ, तो मतलब तैयारियां आप शुरू कर देनी?
0: जी जी, हाँ तैयारियां तो अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब मकई सारे किसान अपने खेत को तोड़ रहे हैं, सब मक्का पक गया है। जी,
1: आप थे पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखंड के गोदरमा कला गांव के एक सफल कृषक दिनेश कुमार मेहता।

0: कल्टीवेटर या देशी हल से 2 से 3 बार गहरी जुताई करें। हर जुताई के बाद पाटा चलाएं ताकि खेत की नमी बनी रहे और मिट्टी समतल हो जाए।
1: गोबर की खाद आप डालें इसमें। अंतिम जुताई और बुआई से 10 से 15 दिन पहले प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रॉली या लगभग 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। रासायनिक खाद भी आप डाल सकते हैं। प्रति एकड़ के लिए आप ले चना के लिए लगभग 25 से 50 किलो डीएपी प्रति एकड़ डालना चाहिए। मटर के लिए 30-40 किलो डीएपी, 15 से 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और करीब 5 किलो सल्फर अंतिम जुताई से पहले डालें। बुआई का समय चने और मटर की बुआई का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के मध्य यानी 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक माना जाता है। इस समय तापमान अंकुरण के अनुकूल होता है, रोकटा रोग का खतरा कम होता है। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवा जैसे ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से उपचारित जरूर कर लें। आज पलामू का तापमान आपको बता दें, अधिकतम तापमान पलामू का आज 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और

0: आज के नसीहत की। चलते चलते आज की नसीहत बात करते हैं बकरी पालन की, कम लागत में अच्छी आमदनी का साधन कैसे है। ये ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक उपयोगी साधन है बकरी पालन। बकरी पालन शुरू करने के लिए बहुत बड़े खेत या बड़े निवेश की आवश्यकता हमेशा नहीं होती। यदि बकरियों की नस्ल, आवास, आहार और स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन किया जाए तो इसे छोटे स्तर से भी शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले बकरियों के लिए साफ, सूखा और हवादार बाड़ा तैयार करें। बाड़े में पानी जमा न हो और सफाई नियमित रूप से होती रहे। गीली और गंदी जगह से बकरियों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। बकरियों को हरा चारा, सूखा चारा और आवश्यकता के अनुसार संतुलित आहार दें। उन्हें हर समय साफ और ताज़ा पानी उपलब्ध कराएं। बकरियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। समय पर टीकाकरण, कृमिनाशक दवा और पशु चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। बीमार या कमजोर बकरी को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना भी उपयोगी होता है।
1: नई बकरी खरीदते समय उसके स्वास्थ्य, उम्र और नस्ल की जानकारी जरूर रखें। स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल अच्छी

ग्रामीण बहनों, गांव में बकरी को अक्सर गरीब की गाय भी कहा जाता है क्योंकि सीमित संसाधनों में भी इसका पालन किया जा सकता है। लेकिन बकरी पालन को लाभकारी बनाने के लिए पारंपरिक तरीके के साथ वैज्ञानिक तरीके प्रबंधन अपनाना जरूरी है। बकरियों के लिए आप ऐसा बाड़ा बनाएं जो साफ, सूखा, हवादार और सुरक्षित हो। फर्श पर नमी या गंदगी जमा ना होने दें। बाड़े की नियमित सफाई करें और बीमार बकरी को अलग रखें। बकरियों को मौसम के उपलब्धता के अनुसार हरा चारा, सूखा चारा, संतुलित आहार दे सकते हैं। चारे में अचानक बहुत ज़्यादा बदलाव ना करें, इस बात का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है। बकरियों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना और स्थानीय पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार टीकाकरण और कृमिनाशक उपचार करें। गर्भवती बकरी और छोटे बच्चों की विशेष देखभाल करें और बकरी खरीदते समय जल्दबाजी न करें। स्वस्थ सक्रिय और स्थानीय जलवायु के अनुकूल पशु का चयन करें। खरीद से पहले पशु की स्वास्थ्य स्थिति और उपलब्ध रिकॉर्ड की जानकारी लेना बहुत ही जरूरी होता है। बकरी पालन में सफलता केवल ज्यादा बकरियां रखने से नहीं मिलती, सफलता मिलती है सही नस्ल, अच्छा पोषण, स्वच्छ आवास और समय पर स्वास्थ्य देखभाल से। बकरी स्वस्थ तो पालन सफल, सही देखभाल तो आमदनी बेहतर। तो बकरी पालन को केवल पारंपरिक काम न मानकर व्यवस्थित और वैज्ञानिक व्यवसाय के रूप में अपनाएं और अपने परिवार की आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ें। तो इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए राजनी कुमारी और प्रतिमा वर्मा को अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे खेती बारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी रांची केंद्र प्रसारण सेवा में शामिल होंगे प्रादेशिक समाचार जिले में आज तक के लिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
2: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
1: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
2: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
1: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
6: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
7: कंडो,
6: गर्भ निरोधक गोलियाँ।
8: खुशी का मंत्र रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
9: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने राज्य भर में निकाली सेवा ज्योति यात्रा, विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा को नहीं मिली राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने जामताड़ा में किसानों और विद्यार्थियों के लिए विकास योजनाओं की रखी आधारशिला, कहा किसानों एवं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सरकार संकल्पित। जमशेदपुर के बिंदल मॉल फायरिंग मामले में हथियार बरामदगी के दौरान मुठभेड़, दो कथित शूटर घायल। और भारत वेस्टइंडीज T20 मैच के लिए दोनों टीमें पहुंची रांची, 9 अक्टूबर को दिखेगा मुकाबले का रोमांच। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची के OTC ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने और विकसित भारत के संकल्प को साथ लेकर सेवा ज्योति यात्रा के तहत सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का कार्यकाल करोड़ों लोगों के लिए गर्व की बात है।
1: गति शक्ति के आधार पर आएगा तो घर में घुस के हमने मारा, परेशान कर रही है, तो अब वह दिन दूर नहीं जब भारत अपना विमान बनाएगा। उन्होंने कहा वी विल डू इट, और वी विल डू इट के नारे से हम 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे।
0: इधर रांची के हरमू चौक अब विकसित भारत संकल्प सेवा चौक के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर इस चौक का नामकरण किया गया है। इधर गिरिडीह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा की ओर से सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मशाल लेकर सेवा ज्योति यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को प्रेरणादायक बताया।
2: देश के अंदर में पहले 74 एयरपोर्ट था, आज तो 150 से भी अधिक एयरपोर्ट इस देश में काम कर रहे। हम बगल में ही देखते हैं देवघर हमारे एयरपोर्ट है, तो आप जरा सोचे इस प्रकार से देश के बड़े महानगरों के साथ हम जुड़े हैं, तो ये अगर संभव हो सका है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण तो मौजूद है।
0: वहीं चतरा के कॉलेज मैदान में भी आज सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा ज्योति यात्रा आयोजित की गई। चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने मशाल लेकर यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से पूरा होगा। इधर जामताड़ा के गांधी मैदान में जिला भाजपा की ओर से संकल्प सभा एवं संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। मौके पर पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को पूरा करने में देश के लोग संकल्पित हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सुजित नारायण प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मधु कोड़ा ने ईडी के आरोप पत्र में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में किए गए बदलाव को चुनौती दी थी। इससे पहले निचली अदालत भी उनकी याचिका खारिज कर चुकी थी। मामले में ईडी ने याचिका का विरोध किया था। जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड के बरमसिया में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम और उत्क्रमित आदिवासी आवासीय बालिका विद्यालय में 6 अतिरिक्त कमरों के निर्माण की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई में परेशानी न हो इसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। किसानों को अनाज रखने की सुविधा देने के लिए गोदाम का निर्माण किया जा रहा है।
3: यहाँ के विद्यार्थियों का रुचि इतना बढ़ा है कि जो भी आधारभूत संरचना है ये कम पड़ रहा है, और पढ़ाई लिखाई भी अच्छा है कि दूर दूर से, यहाँ तक कि दुमका जिला से भी विद्यार्थी यहाँ आकर के अपना नामांकन कराना चाहता है। हम लोगों ने इस विषय को देखा और सोचा, सोचने के बाद सोचे इस विद्यालय में जो भी आधारभूत संरचना है उसमें अगर विस्तार नहीं करेंगे तो आने वाला समय में विद्यार्थियों का पठन पाठन में दिक्कत होगा।
0: राज्य सरकार की आज होने वाली कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इससे पहले 25 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक भी स्थगित हुई थी। इसके बाद 7 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई थी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। ग्रामीण सड़क लोगों के जीवन में काफी बदलाव लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कहा कि हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना, इसलिए सरकार जनजातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक बल दे रहे हैं।
4: सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना, इसलिए हम जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दे रहे हैं।
0: वहीं आकांक्षी जिला गढ़वा के लाभुकों ने बताया कि अच्छी सड़कें बनने से ग्रामीणों को आने जाने की सहूलियत हुई है।
5: असाधारण जीव लागत है, रोड भी बन गेलै और हम इनके आराम से गाड़ियों में बाजार मन चल जाले। तो पहले बोदी पैदल रेंगत रही, थक जात रही।
6: रोड बनने से फायदा ये हुआ कि यहाँ का आने जाने का पॉपुलेशन बढ़ा, उससे हम लोग का दुकानदारी का थोड़ा सा संख्या कमाने खाने का रूट अच्छा लगा। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को धन्यवाद।
0: जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में बिंदल मॉल के एक रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार दो कथित मुख्य शूटर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हथियार बरामदगी के दौरान दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की।

0: जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी। घायल मोहन यादव और अजित मंडल को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल बरामद किए हैं। खूंटी में ओबीसी समाज और बुद्धिजीवियों ने ओबीसी अधिकारों और पेशा कानूनों को लेकर प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कई जिलों में ओबीसी के कॉलम को शून्य या समाप्त किया जा रहा है। जेएलकेएम जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर ने ऐसे जिलों में ओबीसी कॉलम बहाल करने की मांग की। पेशा कानून के तहत भूमि और अधिकारों को लेकर भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई। रांची के किशोरगंज निवासी योग शिक्षक राजा वर्मा का वियतनाम के सड़क दुर्घटना में विगत दिनों मौत हो गई थी। सरकार के पहल से राजा वर्मा का पार्थिव शरीर वियतनाम से रांची लाया गया था। आज श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और सांसद महुआ मांझी उनके आवास पहुंचे। उन्होंने श्रम विभाग की तरफ से परिवार को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। दूसरे टी20 मैच के लिए भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आज रांची पहुंच गई। हवाई अड्डे पर क्रिकेट प्रेमियों और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दोनों टीमों का स्वागत किया। जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि कल पहले हाफ में वेस्टइंडीज और दूसरे हाफ में भारतीय टीम अभ्यास करेगी। 9 अक्टूबर को होने वाले मैच में करीब 50,000 दर्शकों के पहुँचने की उम्मीद है।
1: 9 तारीख का इंतजार था, वो अपने अंतिम चरण में आ गया। कल जो मैच था तो कल मैच के बाद आज ये लोग ट्रैवल करके आए हैं, तो आज इनका आराम का दिन है। और कल का 8 तारीख का दिन टीम की प्रैक्टिस का दिन है। पहले हाफ में वेस्टइंडीज की टीम प्रैक्टिस करेगी और दूसरे हाफ में भारत की टीम प्रैक्टिस करेगी। उसके बाद जस्ट 9 तारीख को एक शानदार मैच जिसका कि इंतजार कुछ लोग कर रहे थे वो पल आ जाएगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने राज्य भर में निकाली सेवा ज्योति यात्रा, विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को नहीं मिली राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने जामताड़ा में किसानों और विद्यार्थियों के लिए विकास योजनाओं की रखी आधारशिला, कहा किसानों एवं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सरकार संकल्पित। जमशेदपुर के बिंदल मॉल फायरिंग मामले में हथियार बरामदगी के दौरान मुठभेड़, 2 कथित शूटर घायल। और भारत वेस्टइंडीज टी20 मैच के लिए दोनों टीमें पहुंची रांची, 9 अक्टूबर को दिखेगा मुकाबले का रोमांच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
3: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
2: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
3: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
4: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
7: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
8: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
9: बढ़ती बच्ची किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
8: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
9: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
8: माहवारी प्रारंभ होती है,
9: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
8: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
11: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
12: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: जमशेदपुर में नशे और अवैध कारोबार के खिलाफ विचार क्रांति सम्मेलन आयोजित किया गया। विधायक सरयू राय की अगुवाई में समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों ने ड्रग्स, गांजा, अफीम, जुआ और लॉटरी के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने की बात कही। वक्ताओं ने पुलिस की विशेष टास्क फोर्स बनाकर ऐसे कारोबार पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सरयू राय ने कहा कि
2: इसका समाधान हम स्थानीय स्तर पर ही निकाल सकते हैं। थाना क्षेत्र है या पंचायत का क्षेत्र है, उसके स्तर पर ऐसे लोग हों खड़ा जो बच्चों को समझा बुझा भी सके, उनके परिवार वालों से भी जानना चाहिए बात कर सके, और जो ही उदंड हो चुका है उसके बारे में हम लोगों को खत्म हम लोगों को ये सूचना दे सके। थाना में यहाँ भी एक जगह है जहाँ ऐसा हो रहा है।
1: यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हीरक जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर कंपनी की 6 दशक की उपलब्धियों, सुरक्षित यूरेनियम खनन और देश की परमाणु ऊर्जा में योगदान को रेखांकित किया गया। इस मौके पर UCIL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर के आनंद राव ने कहा कि देश में पिछले करीब 60 वर्षों से यूरेनियम का सुरक्षित तरीके से खनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूरेनियम और रेडिएशन को लेकर लोगों के बीच मौजूदा भ्रम दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में यूरेनियम की उपलब्धता अहम होगी।
3: देख रहे हैं 60 ईयर से हमने यूरेनियम का माइनिंग कर रहे हैं इधर, और बहुत सेफ्टी के चलते हुए हम कर रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो भी नेगेटिव परसेप्शन है, जो स्किन डिजीज वगैरह, वो क्योंकि बैकवर्ड एरिया है उसके वजह से, ये नहीं हुआ कि ये रेडिएशन से कुछ हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमारा स्टडीज भी किए बहुत सारा, तो कुछ भी उसमें यूरेनियम के वजह से ये पूरा हो रहा है, दैट इज अ नेगेटिव परसेप्शन। वो हम पॉजिटिव परसेप्शन बढ़ाने के लिए ये पूरा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो यूरेनियम हम निकाल रहे हैं ये आपको क्लीन एनर्जी देने के लिए बहुत उपयोग होता है। फर्स्ट पॉइंट इधर ही से पूरा एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम स्टार्ट होता है इंडिया में, यहाँ से फिर आपका प्रोडक्ट जाएगा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, और जो 100 गीगावाट न्यूक्लियर प्रोग्राम टारगेट दिया है भाई विकसित भारत 2047 के लिए, यूरेनियम का जरूरी है, तो ये यूरेनियम इधर ही प्रोड्यूस होता है स्टार्टिंग पॉइंट हमारा माइंड से। और अभी आगे चलते हुए 60 ईयर्स के बाद में जो है हम लोग और यूरेनियम बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग माइन का एक्सपेंशन कर रहे हैं, और नया माइन भी खोलेंगे राजस्थान और आंध्र प्रदेश और हिंदुस्तान। और एक बात है, हिंदुस्तान कॉपर प्लांट टेलिंग से भी हम यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं।
1: दुर्गा पूजा को लेकर शहर में तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। विभिन्न पूजा समितियों की ओर से पंडाल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। वहीं मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पंडालों को आकर्षक रूप देने के लिए कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। पूजा समितियां सजावट, विद्युत व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा प्रादेशिक समाचार जिले में। आजकल हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र के बोल रहे हैं 100 MHz पर। कुछ ही पलों में श्रोताओं लेकर हाजिर होंगे सुर संध्या फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

मैं तुलसी तेरे आंगन की, लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुर संध्या की पहली पेशकश सुनी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत, आनंद बख्शी के बोल।

आर डी बर्मन के संगीत, गुलशन बावरा के बोल, सनम तेरी कसम फिल्म के इस गाने को आपने सुना असला भोसले की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं सुर संध्या फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम लौटते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

सुर संध्या फिल्म संगीत के कार्यक्रम में भी आपने सुना मनन उदास और कंचन की आवाज़ में इस गाने को, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के

0: अभी आप सुन रहे थे सूर्य संध्या फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब आइए सुनते हैं कल्याणी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम भेंटवार्ता में अपेंडिक्स कारण एवं निदान। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर सुशील कुमार पांडे, भेंट करते हैं संजय कुमार मिश्रा।
1: कार्यक्रम कल्याणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे अपेंडिक्स पे। अपेंडिक्स का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन इससे संबंधित ढेर सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। आइए आज उन तमाम सवालों का जवाब आपको हम दिलवाएंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं शहर के जाने माने चिकित्सक, सर्जन और पलामू जिला अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर सुशील कुमार पांडे। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार
2: जी। नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, अपेंडिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बताएं अपेंडिक्स है क्या, किसे कहते हैं अपेंडिक्स?
2: ये अपेंडिक्स जो है एक ग्रंथि है शरीर में, यह छोटी आंत जहाँ पर ख़त्म होती है और बड़ी आंत जहाँ पर सीकम शुरू होता है, तो उस सीकम के उस हिस्से से एक छोटा सा अंग होता है बड़ी आंत से लगा हुआ, उसी को अपेंडिक्स कहते हैं।
1: अच्छा, ये इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं, ये बीमार होता है जिसकी वजह से अपेंडिक्स की चर्चा लोग करने लगते हैं, डॉक्टर पास जाना है, बात करनी है, इलाज करना है, तो क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं?
2: जैसे शरीर के कोई भी हिस्सा शरीर का बीमार ग्रस्त हो सकता है, उसी तरह से यह अपेंडिक्स नामक ग्रंथि जो है इसमें भी यह भी बीमार ग्रस्त हो सकता है, इसमें भी सूजन आ सकता है। तो इस जब वह बीमार ग्रस्त या अथवा सूजन ग्रस्त हो जाता है तो इस अवस्था को अपेंडिसाइटिस कहते हैं, तो यही रोग है।
1: अच्छा, तो इसमें क्या होता है? जैसे आपने कहा कि ये बीमार हो सकता है, बीमार होने के बाद किस तरह के लक्षण आने लगते हैं, क्या परेशानी बढ़ने लगती है आदमी में?
2: जब इसमें सूजन आ जाता है तो यह जो है दर्द देने लगता है। आमतौर पर जो इसके लक्षण हम देखते हैं मरीजों में वह होता है पेट में दर्द। तो पेट में दर्द आमतौर पर, हालांकि इसके लक्षण विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं, पर मुख्यतः जो आमतौर पर देखे जाते हैं वह मैं बताता हूँ। यह जो है दर्द जो है लगभग नाभि के आसपास में शुरू होता है, किसी किसी व्यक्ति में नाभि के ऊपर भी दर्द शुरू हो सकता है, अथवा दर्द शुरू होने के पश्चात धीरे धीरे यह दाहिनी तरफ, दाहिने पेट के दाहिने और नीचे निचले भाग में दाहिने तरफ यह धीरे धीरे जाके सेटल हो जाता है, और साथ में जो है उल्टी की भावना आने लगती है, और जो है भूख नहीं लगती है, हल्का बुखार आ सकता है, कभी कभी बहुत रेयरली जो है पेशाब में जलन भी हो सकता है, और कभी कभी पतला दस्त भी हो सकता है। मुख्यतः हम यही लक्षण देखते हैं।
1: और अगर इस तरह की कोई भी परेशानी किसी को शुरू हो तो वो सीधे ये समझ ले कि उसे अपेंडिक्स की परेशानी हो रही है, वो अपेंडिक्स उसका बीमार हो रहा है, या उसके लिए आपके चिकित्सक के पास आकर के उसके कुछ खास जाँच करवाने पड़ते हैं, कैसे पता चलता है ये
2: अपेंडिक्स का? अपेंडिसाइटिस में जिस तरह का दर्द होता है वैसा ही दर्द और भी अंगों में बीमारियां होने से भी ऐसे हो सकती हैं। मुख्यतः जो हम देखते हैं छोटी आंत में इन्फेक्शन, कभी कभी किडनी में पथरी होना या पेशाब की नली में इन्फेक्शन होना, यूटीआई जिसे बोलते हैं, बी कोलाई बोलते हैं आमतौर पर, वह उस स्थिति में, अथवा जो है कभी बच्चों में खासकर जैसे हम देखते हैं गिल्टियाँ बढ़ जाती हैं उस स्थिति में भी, और तो इस तरह का दर्द हो सकता है। तो अगर कभी भी पेट में दर्द हो तो आपको तो योग्य चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, और वही देखकर जो है कुछ जांच कराकर और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जो अपेंडिक्स है वह बीमार ग्रस्त है कि नहीं।
1: इसके लिए कोई खास उम्र सीमा तय की गई है, ऐसी खास उम्र के लोगों में परेशानी बढ़ती है, या किसी उम्र में किसी को बीमारी हो सकती है?
2: यह जो अपेंडिसाइटिस है वह किसी भी उम्र में हो सकती है, वो 1 साल के बच्चे में भी हो सकती है, और मैंने तो 80-90 साल के पुरुषों में भी यह बीमारी होते देखी है, पर मुख्यतः जो है यह जो हम जो देखते हैं आमतौर पर वह होता है यंग लोगों में ज्यादा होती है, विशेषकर लड़कियों में, पर यह शोध यह बतलाता है कि लड़कों में यह बीमारी ज्यादा होती है। तो मुख्यतः जो है अगर वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो यंग लोगों में, जैसे कि कॉलेज गोइंग बच्चों में या स्कूल गोइंग बच्चों में यह ज्यादा देखा जाता है।
1: डॉक्टर साहब, स्त्री और पुरुष लड़का हो या लड़की, तो ये जो बात जो जानकारी आपने दी, तो इसकी क्या जो फिजियोलॉजी है दोनों की, शारीरिक संरचना दो है, तो इसमें क्या अंतर है जो खास वर्ग में ज्यादा देखा जाता है ये परेशानी?
2: लड़कियों में ज्यादा होता आमतौर पर जो हम देखते हैं प्लमों में, वह देखते हैं कि जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल्स में ज्यादा देखा जाता है, पर इस ये उनकी शारीरिक संरचना लड़कों से या पुरुषों से अलग है, इसलिए होती है यह कहना बहुत कठिन है, इसलिए यह संभवतः ऐसा नहीं प्रतीत होता है। मुख्यतः जो अपेंडिक्स के बीमार होने के जो कारण देखे गए हैं, वह देखिए अपेंडिक्स जो है वह शरीर में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब कि उस अंग की विशेष जरूरत शरीर को नहीं है, इसलिए उसको वह नहीं भी शरीर में रहे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि कुछ लोग इसको एब्डोमिनल टॉन्सिल बोलते हैं कि वो इन्फेक्शन को छानने का काम करता है, ऐसा कहते हैं, पर यह एक शोध का विषय है, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है शरीर में इसके रहने से, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बीमार क्यों होता है? ये बीमार होता है इसमें सूजन आ जाता है, वो इसमें जैसे कि कुछ जो है लिम्फ ग्रंथियां होती हैं, वह फॉलिकल्स जो है कुछ इन्फेक्शन होने से वो सूजन आ जाती है उसके अंदर, या कभी कभी जो मल का कण जो है इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो इस कारण जो है वहाँ पे जो कीटाणु हैं वह ज्यादा जम जाते हैं बैक्टीरिया, और वह कुल मिलाकर उस चीज को बीमार बना देते हैं। तो ये पुरुष और स्त्रियों में संरचना में विभिन्नता है, इसलिए ऐसा होता है, यह कहना नहीं सही प्रतीत होता है जी।
1: और डॉक्टर साहब, लोगों के खान पान या रहन सहन या एक तरह की आदतें जो हैं, इस क्या प्रभाव डालती हैं इसमें?
2: नहीं, विशेष खान पान से विशेष प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है।
1: जैसे लोग कहते हैं कि आप नियमित जो नाश्ता खाना और टाइमली पेट में गैस का होना, क्योंकि वैक्यूम होने की वजह से ये ग्रो करता है, ये आम धारणा है, ये लोग क्या सही सोच है या गलत है?
2: नहीं, अपेंडिक्स के

0: मामले में यह तो सही धारणा नहीं है।
1: ये लोग जो कहते हैं, इसका मतलब है कि चिकित्सक की ये राय है कि ये गैस पेट में होने से ये ग्रो करता है, बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है कितना समय लगता है जब खतरनाक हो जाता है? जैसे ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा दर्द अगर हो तो पहली मर्तबा से ही स्थिति बिगड़ गई और तुरंत ये नुकसानदेह हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, लेकिन कितना समय लगता है इसको बड़ा होने में, बढ़ने में?
0: जी, अपेंडिक्स जो है आमतौर पर हम जो देखते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट गैंग्रिनस अपेंडिसाइटिस या एक्यूट कैटरल अपेंडिसाइटिस भी बोलते हैं, जिसमें कि तुरंत बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। और एक होता है रिकरेंट अपेंडिसाइटिस, मतलब वो बार बार दर्द होता रहता है इसमें। तो जो एक्यूट गैंग्रिनस अपेंडिसाइटिस होता है उसमें होता है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सूजन ग्रंथि में चली जाती है और जिससे उसको फटने की आशंका रहती है। ठीक है, तो यह एकदम इमरजेंसी है
1: जी।
0: और दूसरा प्रकार जो मैं बता रहा था, क्रोनिक या रिकरेंट होना, वो बार बार दर्द होता रहता है, वो होता है कि दर्द से परेशान करता रहता है, वह फटता नहीं है। तो ये दो बीमारियां हम देख रहे हैं। तो जो पहले वाला जो है एक्यूट गैंग्रीनस, उसकी तो बहुत इमरजेंसी में इलाज होनी चाहिए उसको, क्योंकि उसमें फटने की आशंका होती है। और एक बार अपेंडिक्स फट गया तो बहुत तरह की परेशानियां इलाज में चली आती हैं।
1: अगर इस तरह के दर्द हो और शुरुआती दौर में, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास अगर कोई मरीज आया तो आप ये भी कभी कहना पड़ता है कि ये परेशानी तो आप पिछले 1 साल से है, 3 साल से है, 6 महीने से है, या पहली मर्तबा जस्ट अभी शुरुआत है, ऐसी बातें भी होती हैं?
0: हाँ जी, वही जो मैं दूसरा प्रकार बता रहा था जिसमें कि रिकरेंट बार बार दर्द होने वाला जो अपेंडिक्स होता है, उसमें अक्सर जो मरीज आकर वो बताते हैं कि मुझे ये 2 साल से हो रहा है या मुझे 6 महीने से बार बार करके दर्द होता है, मैं कुछ दवाइयाँ लेता हूँ या लेती हूँ तो दर्द में मुझे आराम हो जाता है, लेकिन फिर से दर्द होने लगता है। तो यह जो सेकंड प्रकार का जो अपेंडिक्स है, इस ये तो समय देता है इंसान को, पर ये तो हम सलाह देते हैं कि अगर ये बार बार दर्द होकर परेशान कर रहा है आपको, पढ़ाई लिखाई में तंग कर रहा है आपको, या आपके जीवन जीने में आपको ये तकलीफ बाधा ले आ रहा है, तो उसको ऑपरेशन करके निकाल देना चाहिए। हाँ, अगर एक्यूट गैंग्रेनस अपेंडिसाइटिस हो तो बहुत बार जो है वह ज़्यादा समय नहीं देता है, वो बहुत दर्द ज़्यादा करता है और समय रहते अगर उसको नहीं उसका इलाज किया गया तो फटने की आशंका उसकी रहती है। तो उस क्षेत्र में भी इसे ऑपरेशन करके निकाल देना चाहिए।
1: डॉक्टर सुशील पांडे जी, जैसे आजकल आम धारणा लोगों की बन गई है कि लोग अस्पताल जाते हैं पेट दर्द की शिकायत को लेकर के और कहते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके अपेंडिक्स डॉक्टर ने निकाल दिया, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये इतनी ज़्यादा मात्रा में जो कहते हैं बड़े पैमाने पर लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जा रहा है या करवा ले रहे हैं लोग, तो ये क्या सही है?
0: मरीज को अगर अपेंडिसाइटिस है तो अपेंडिक्स का जो निदान है, डेफिनेटिव जो निदान है, वह तो ऑपरेशन ही है। हालांकि कुछ शोध आजकल आने लगे हैं जिसमें कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाए तो अपेंडिसाइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है, किंतु यह शोध में अभी भी निष्कर्ष नहीं हुआ है। देखा गया है कि जिन मरीजों में ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए वह जल्दी स्वस्थ होते हैं और कंपैरेटिवली वो जो है उनमें बार बार दर्द होने वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो वो जल्दी उसका जो है वो जल्दी स्वस्थ होते हैं और उसके इलाज में खर्च भी कम आता है, क्योंकि आप बार बार दवाई खाएंगे, काफ़ी लंबे समय तक दवाई खाएंगे तो उसमें खर्च भी आता है और परेशानी भी मरीज को होती है। हाँ, जहाँ तक प्रश्न है कि बहुत ज़्यादा संख्या में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, तो इसके मैं इसकी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स क्या है यह तो मैं नहीं जानता हूँ, पर चूंकि हमारे जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसकी आबादी भी हमारी बहुत ज़्यादा है, तो निसंदेह अगर ज़्यादा आबादी है तो ज़्यादा लोग भी इस रोग से ग्रस्त होंगे, तो हो सकता है कि इसलिए ही ऐसा प्रतीत होता हो कि ज़्यादा लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। अगर वो योग्य चिकित्सक के पास में जा रहे हैं तो यह कहना सही नहीं होगा कि वो अननेसेसरी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, हालांकि कहा जाता है कि देखिए अपेंडिक्स की जो बीमारी है वो कैसे पकड़ में, कैसे आप कैसे उसको डायग्नोसिस करेंगे कि भाई इसको अपेंडिक्स ही हुआ है इन मरीज को, तो यह तो है जो सबसे बड़ा जो डायग्नोस्टिक इसमें जो बात है वो है कि योग्य चिकित्सा का अनुभव। तो ये जो है जो सर्जन है वो अपने अनुभव के आधार पे उनको वो बताते हैं कि ये अपेंडिक्स उनको प्रतीत हो रहा है नहीं प्रतीत हो रहा है। कुछ सपोर्टिव जांच भी होते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड पे

0: अल्ट्रासाउंड के पेट में वो बहुत बार अपेंडिक्स जो है सूजन होने से वो नजर आ जाता है, कभी कभी नजर नहीं भी आता है। ब्लड खून की जब जांच करते हैं तो उसमें जो है जो श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC होती हैं उनकी संख्या बढ़ी हुई होती है, तो इस आधार पर जो है सर्जन इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इसको अपेंडिक्स है कि नहीं है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड के अलावा भी CT स्कैन भी करना पड़ सकता है, बहुत रेयरली कभी कभी बेरियम मेल फॉलो थ्रू भी करना पड़ सकता है। तो इन जांच के आधार पर जो है अपेंडिक्स के निष्कर्ष पहुंचते हैं कि इस मरीज को अपेंडिसाइटिस है कि नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब हम आपकी बात करें, आप भी एक सर्जन हैं और प्रतिदिन इतने सारे मरीज को देखते हैं, तो आपके पास जो भी मरीज आते हैं अपेंडिक्स की शिकायत को लेकर के, या आपको लगता है कि जो मरीज आते हैं उनको अपेंडिक्स की परेशानी उनको है, तो आपको क्या लगता है कि जितने मरीज आते हैं उसमें दवा से इलाज के लायक कितने मरीज होते हैं, यानी आमतौर पे दवा से ठीक होने वाले अपेंडिक्स हमारे क्षेत्र में कितना है और कितने प्रतिशत जो ऑपरेशन ही उसका इलाज है?
0: देखिए, मैं डेफिनेटिव सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स तो इसमें नहीं बता पाऊंगा आपको। सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि जो पेट में दर्द हो रहा है वो निर्णायक रूप से सिद्ध करना है कि यह अपेंडिक्स है कि नहीं है। अगर मुझे लगता है कि इस मरीज को बार बार जो परेशानी हो रही है या यह जो अधिक पेट का दर्द जो है एक्यूट अपेंडिसाइटिस से चलते हो रहा है, तो आमतौर पर हम सलाह देते हैं कि इसको ऑपरेशन होना चाहिए। पर हम कभी कभी देखते हैं कि नहीं, दर्द की जो परिमाण है, दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हल्का हल्का होता है और ज़्यादा तंग नहीं करता है, तो उस स्थिति में अगर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हो, जैसे कि अभी उसका कोई जीवन में जैसे परीक्षा देना है या कोई और काम है, सामाजिक काम है उसको, उसमें वह जरूरी है ज़्यादा, तो हम उसको दवाइयाँ देकर भी छोड़ देते हैं कि चलो भाई तुम अपना परीक्षा निकाल लो या आगे देख लो, अभी कुछ दिन दवाई खा लो, अगर तुम्हें ये बार बार परेशान करने लगे, रिकरेंट अपेंडिसाइटिस पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब करने लगे या जीवन जो आपको प्रोफेशन करने में दिक्कत करने लगे, तो आप इसको फिर ऑपरेशन करा लीजिए। पर यह बात जो है एक्यूट अपेंडिसाइटिस के लिए नहीं है। अगर वो एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, फटने की आशंका हो गई हो, अल्ट्रासाउंड में स्पष्ट दिख रहा हो, या पस जम गया हो, जैसे जटिलता कुछ आ गई है, या जांच में लगता है कि नहीं अपेंडिक्स तो फट चुका है उसका, तो इस स्थिति में ऑपरेशन छोड़कर दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है।
1: यानी ये भी कह सकते हैं कि अगर शुरुआती दौर में पहले अगर मरीज चिकित्सक की राय लें, उनके पास जाए, तो दवा से इसको पूरी तरह ठीक किया जा सकता है।
0: शुरुआत में वही मैं बता रहा था कि ये तो जो रोग है मुख्यतः दो प्रकार के हैं, तो अगर ये एक्यूट नहीं है, रिकरेंट वाला अपेंडिसाइटिस जिसमें हल्का हल्का करके दर्द होता रहता है, तो उसमें आपके पास में समय मिलता है आपको, और बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाया जाए तो वो कभी कभी अपने आप से भी ठीक हो जाता है और कंट्रोल में रहता है वो, तो उस स्थिति में ऑपरेशन नहीं करने की भी आवश्यकता हो सकती है।
1: डॉक्टर सुशील पांडे जी, बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी हमारे तमाम श्रोताओं को। दोबारा जब भी मौका मिला इस विषय पर और भी बातें करेंगे, आपकी बात तमाम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। हमारे कल्याणी कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: कार्यक्रम कल्याणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कल्याणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, खुशी पलों में हम लेकर हाजिर हैं।

और 8:10 पर हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में भारतीय वायुसेना के वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कैश के मार्शल अमरजीत सिंह का संदेश हम सुनेंगे 8:10 पर।

0: message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishist Seva Medal, Ati Vishist Seva Medal.
1: भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश.
2: नमस्कार. भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ. वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमयी यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की नींव पर रची गई है. सन 1932 में मात्र 4 वापिती विमानों से उड़ान भरने वाली हमारी वायुसेना आज एक अत्यंत सक्षम, नेटवर्क सेंट्रिक और बहुआयामी फोर्स बन चुकी है. आज की दुनिया अस्थिर, अनिश्चित और जटिल दौर से गुजर रही है. हितों और परिस्थितियों के लगातार बदलने के इस माहौल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं. इन संघर्षों में हमने देखा है कि वायु शक्ति राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है. देश की वायु शक्ति का प्राथमिक माध्यम होने के नाते भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है. लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर रीअफर्म द पिवोटल पावर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस, डेमोन्स्ट्रेटिंग आवर कैपेबिलिटी and capacity to defend our sovereignty. Through major milestones this year, including exercise Vayu Shakti, various bilateral exercises, Dronathon, and the ongoing historic multilateral air exercise Tarang Shakti, we are actively testing our combat readiness and rapidly absorbing niche technologies into our operational plans. Apni marak shamta ke alawa, Bharatiya Vayu Sena ne sankat ke samay mein हमेशा आगे बढ़कर देश और मानवता की सेवा की है. चाहे देश के विभिन्न प्रदेशों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान नागरिकों की सहायता हो या जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाना हो, हमारे वायु योद्धाओं ने हमेशा कौशल और साहस का परिचय दिया है. हमारी यह प्रतिबद्धता हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है. नेपाल और युगांडा से लेकर वेनेजुएला, फिलीपींस, मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा और जमैका तक हमारी वायुसेना ने HADR मिशनों के माध्यम से सेवा के इसी संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है, जो सेवा परमो धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है. आत्मनिर्भरता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है. लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंकुर ट्रेनर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अस्त्र आकाश तथा ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणालियां इसी संकल्प का प्रमाण है. आत्मनिर्भरता की इस नींव पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स वे इनटू एवरी

0: aspect of our functioning. Our vision is to build an AI-augmented force where technology supports us, but humans remain in command. Our roles and tasks naturally take us beyond the confines of Earth's atmosphere, as space is a natural extension of the air domain. Our deepening partnership with ISRO, including our contribution to Gaganyaan mission, reflects this commitment. These capabilities form an integral part of our vision for 2047. Technology is only an enabler. The foundation of decisive victory has always been in the unity of purpose. Modern wars are not won by the strength of a single service, but through the combined strength of the entire nation. For Indian Air Force, jointness is the only way forward. Our endeavor is to ensure that the reach, speed, and precision of air power are fully harnessed so that its effects are felt across every dimension of the battle space. इस अवसर पर मैं अपने आदरणीय एयर वेटरन्स को नमन करता हूँ. आपकी दूरदृष्टि, समर्पण और मार्गदर्शी नेतृत्व ने ही इस सशक्त भारतीय वायुसेना की नींव रखी है, जो आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है. साथ ही मैं अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग पर अपनी प्राणों की आहुति देकर तिरंगे का मान रखा. आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज that through every challenge, the unwavering support and encouragement of our fellow citizens have been a source of strength for the Indian Air Force. Desh ki raksha karna hamara kartavya hai, aur aap sabhi ka aashirwad hamari sabse badi taakat hai. Ant mein, hum samast vayu yodha, Bhartiya Vayu Sena, achuk, abhed evam sateek ki avdharna ka smaran karte hue, yeh sankalp lete hain ki rashtra ki raksha, uski samprabhuta और अखंडता के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे तथा अपने आदर्श वाक्य नभ प्रशम दीप्तम पर अडिग रहेंगे. जय हिंद.
1: ऑन द ईव ऑफ द 94th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स यू वर लिसनिंग टू अ मैसेज बाय द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: अभी आप भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश सुन रहे थे. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.

अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। अभी आपने सुना याराना फिल्म के इस गाने को, किशोर कुमार की आवाज़ में राजेश रोशन के संगीत और अनजान के बोल थे।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। अनु मलिक और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म उस्ताद के इस गाने को आप सुन रहे हैं। अनु मलिक के संगीत, इंदिवर के बोल, इसी गाने के साथ आज का फिल्म संगीत चित्रपट का सफ़र यहीं थमता है। रात्रि 8:45 पर हम जुड़ेंगे श्रोताओं हिंदी समाचार के लिए आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार, 9:30 पर विविध भारती की प्रसारण सेवा आज के फनकार। साथ ही रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 10:30 पर एक रंग एक ही फनकार। 11:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर मिस सभा का समापन करेंगे श्रोताओं।

0: प्रभु की मैं बंद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
2: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
3: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति जुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लाल कृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोफ, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनके यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: Is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
3: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
5: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
6: after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions.
7: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है. साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25% जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं.
6: एंड द बैंक रेट टू 5.75%.
1: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है. RBI ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है. भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया. इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और EFTA के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया. वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सोआई को देने की घोषणा की गई है. एक रिपोर्ट.
8: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है. उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया. दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है. उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है. ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है. समाचार कक्ष से शक्ति सिंह.
1: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे. ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे. और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा. उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की. भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की. कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है. रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया. प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे. स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को देने की घोषणा की है. और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक. और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
9: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with

0: Prime Minister Narendra Modi says India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Completes 25 years of continuous public service as head of government. India condemns attacks on commercial shipping in Black Sea region, says New Delhi engaging Moscow and Kiev to bring peace. Russia expresses gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. Prime Minister to inaugurate India Mobile Congress in New Delhi tomorrow. French-Japanese scientists duo Henri B. Caron and Kenzo Zui win 2026 Nobel Prize in Chemistry for solving molecular asymmetry mystery. And Paralympic champions Pramod Bhagat and Bhavina Patel to lead India as flag bearers at Asian Para Games beginning in Japan later this month. Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said, India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Mr. Modi said the present government's policy focuses on solutions for all citizens.
1: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye sushasan ka aadhaar raha hai. Samasya sabki hai, to samadhan bhi sabke liye hona chahiye. Aur isliye humne sushasan ko saturation se joda. Saturation yani har labharti jude. कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके.
0: The Prime Minister said India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said earlier, efforts were made to increase imports, while today India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. Mr. Modi said such transformation is possible when the intent is clear and policies are well defined.
1: Desh ne mujhe bahut kuch diya hai, isliye desh ke liye mera daitv bhi sabse adhik hai. Aur main hriday se ye manta hu ki desh ke har nagrik ka mujh par sabse bada hak hai. ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है. मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है.
0: Home Minister Amit Shah hailed the completion of 25 years of Prime Minister Modi's public service and described it as a golden and historic day, addressing the Vikasit Bharat Sankalp Sabha Seva Jyoti Yatra in Gurugram today. He stated that under Prime Minister Modi's leadership, significant work was accomplished, including the abrogation of Article 370, the elimination of Naxalism and the elevation of the country's infrastructure to the highest level. He mentioned that as part of this campaign, torchlight processions are being organized, during which young people will take out a Seva Jyoti Yatra and install the torch at the designated crossing. Mr. Shah urged everyone to join the Yatra in as large numbers as possible.
2: Whenever the history of India is written, these 25 years will be written in golden letters. These 25 years have seen freedom from poverty, a secure India, abrogation of Article 370, the end of Naxalism, construction of the Ram Janmabhoomi and Kashi Vishwanath temples, infrastructure being taken to unprecedented levels, and 25 crore poor people being lifted above the poverty line.
1: And 25 crore garibon ko garibi rekha se upar uthana.
0: Leaders from Japan, Bhutan, Nigeria, the Philippines, Belgium, Nepal, Botswana and Dominica have congratulated Mr. Modi on achieving this milestone. Prime Minister Modi's 25 years in public service has been a journey defined by the mantra of Jan Seva, Sidesh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through initiatives like the International Solar Alliance.
3: India and France had jointly launched the International Solar Alliance in November 2015 during the COP21 Climate Conference. The global intergovernmental organization is dedicated to accelerating the deployment of solar energy as a pathway to energy access, energy security and sustainable development. ISA was created to mobilize collective action against climate change through the widespread adoption of solar energy solutions. Today, ISA has evolved into a global platform for international cooperation on solar energy with 129 countries currently registered as members. Co-chairing the launch of International Solar Alliance during COP21 in Paris, Prime Minister Narendra Modi said that the alliance focuses on making solar energy cheap, reliable and widely accessible by driving research and development, streamlining regulations, building infrastructure and unlocking new financing models to draw investment.
1: This alliance is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
3: Talking to Akashvani News, Director General of International Solar Alliance, Ashish Khanna said that ISA signifies the strength of the vision of Prime Minister Narendra Modi and showcases India's ability to the Global South, bringing together countries for cleaner energy, livelihood and energy security.
4: When I look back at the creation of International Solar Alliance, I see the vision of Prime Minister Narendra Modi far ahead of its time. Way back in 2018, he set out an ambition to enable 1,000 gigawatt of solar when India had hardly done 10 to 20 gigawatts. Come today, the world has now seen 3,000 gigawatts of solar, reflecting how true his vision was.
3: The alliance represents a transformative movement towards sustainable energy future. With India leading this initiative, ISA not only aims to enhance energy access and security, but focuses to significantly reduce carbon emissions globally. With Priya Mondal, Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
0: This is Akashwani giving you the news.
5: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
0: Welcome back, you're with us on the news at 9. India has condemned the string of attacks that have taken place in the Black Sea region in the last one or two days. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said such attacks threaten commercial shipping and endanger the lives of seafaring communities. He added that a commercial vessel, MV Royad Mamadov, came under attack while it was plying in the Black Sea. There were three Indian nationals on board and all of them are safe, but one of them was injured and is receiving medical treatment. The second ship, a Togo-flagged ship, Alpha Watanalso, came under attack yesterday. Expanding on India's broader diplomatic efforts to address the root cause of regional volatility, Mr. Jaiswal emphasized New Delhi's ongoing communication channels with both Moscow and Kiev.
6: On the issue of Ukraine conflict, India has consistently maintained that dialogue and diplomacy are the way forward. You very well are aware of our position. Prime Minister on multiple occasions has expressed that this is not an era of war and no solution lies in the battlefield. In Bishkek, as you would recollect, when he met President Putin, he did note and underline that time has come for endless war to now give way to end of war.
0: Meanwhile, Russia has expressed gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Moscow appreciates New Delhi's willingness to offer ideas aimed at finding a peaceful solution to the crisis. After nearly 3.5 years, the Reserve Bank of India, RBI, today raised the key benchmark policy rate by 25 basis points to 5.5% in a bid to contain rising inflation amid continuing global and geopolitical uncertainties. The last repo rate hike was in February 2023, when the RBI raised the rate by 0.25% to 6.5%. It kept the rate unchanged through 2023-24 before beginning its rate cut cycle in 2025. Announcing the bi-monthly monetary policy, RBI Governor Sanjay Malhotra said the Monetary Policy Committee unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points. The RBI also projected real GDP growth for the current financial year at 7.1%, with growth projected at 7.2% in the second quarter, 6.9% in the third quarter, and 6.8% in the fourth quarter. This is Akashvani. You're listening to the news at 9.
5: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: Welcome back. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi tomorrow. It will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. Prime Minister Modi has called for a free, open and rule-based global maritime order that brings greater peace and progress for all. Mr. Modi said this in a written message to the third edition of Sagar Manthan, the Great Oceans Dialogue, which is being organized by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways and the Observer Research Foundation in New Delhi. The 2026 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to French chemist Henri B. Cargan and Japanese chemist Kenzo Soai for their pioneering discoveries of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis. The Royal Swedish Academy of Sciences today said Cargan and Soai solved a century-old mystery of how molecular asymmetry or homochirality can emerge spontaneously in nature. Paralympic champions Pramod Bhagat and Bhavina Patel will lead the Indian contingent as flag bearers at the opening ceremony of the Asian Para Games, which will get underway later this month. The games will be held from the 18th to the 24th of October at Aichi Nagoya in Japan, with athletes from across Asia competing in the grand sporting event. Para badminton star Pramod Bhagat has won 6 Asian Para Games medals, including 2 gold and 4 bronze between 2014 and 2023. Para table tennis player Bhavina Patel has also won 2 Asian Para Games medals, a silver and a bronze, between 2018 and 2023. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Completes 25 years of continuous public service as head of government. India condemns attacks on commercial shipping in Black Sea region, says New Delhi engaging Moscow and Kiev to bring peace. Russia expresses gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years, also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. Prime Minister to inaugurate India Mobile Congress in New Delhi tomorrow. French-Japanese scientist duo win 2026 Nobel Prize in Chemistry. That is all in the news at 9. Good night.
7: Adab. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नजरिया साज पॉलिसियों और सख्त मेहनत के जरिए साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अपना ख्वाब जरूर पूरा करेगा। उन्होंने हुकूमत के सरबराह के तौर पर अवामी खिदमत के 25 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं। भारत ने बहरे अस्वद खित्ते में कमर्शियल जहाजरानी पर होने वाले हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि वो कयाम अमन के लिए रूस और यूक्रेन के साथ राबते में है। रूस ने यूक्रेन तनाजे को हल करने में तावुन के लिए भारत की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। आरबीआई ने मौजूदा माली बरस के लिए जीडीपी की शरह तरक्की 7.1% रहने का भी तखमीना लगाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। फ्रांस और जापान के साइंसदानों की जोड़ी हेनरी बी कैगन और केंसो साय ने मोलिक्यूलर अदम तवाजुन के राज को हल करने पर 2026 का केमिस्ट्री का नोबेल इनाम जीता है। और पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भाविना पटेल इस माह के आखिर में जापान में शुरू होने वाले एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय दस्ते के परचम बरदार होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अपना ख्वाब नजरिया साज पॉलिसियों और मेहनत के जरिए जरूर पूरा करेगा। आज नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी तमाम शहरियों के मसाइल के हल पर मरकूज है।
1: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
7: वजीर आजम ने कहा कि एक वक्त था जब भारत का तज़किरा कमजोर पॉलिसी के लिए किया जाता था, लेकिन अब दुनिया भारत की बढ़ती हुई ताकत और मुश्किलात का मुकाबला करने की उसकी सलाहियत के बारे में बात कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 12 बरस के दौरान हालात में यकसर तब्दीली आई है। जनाब मोदी ने कहा कि पहले भारत की दरामदात बढ़ाने की कोशिशें की जाती थी, जबकि आज भारत बरामदात के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि इस तरह की तब्दीली उसी वक्त मुमकिन होती है जब नीयत दुरुस्त और वाजे हो, नीज पॉलिसियां बेहतर तौर पर वजा की गई हों।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है, और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है, और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
7: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है, और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि कैसे बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA जैसी पहलों के जरिए इस विजन पर अमल दरामद किया जा रहा है।
8: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में COP21 माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA का मुश्तरका तौर से आगाज किया था। यह आलमी बैन हुकूमती तंजीम तवानाई तक रसाई, तवानाई की सलामती और पायदार तरक्की के लिए शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए वक्फ है। ISA शमसी तवानाई से मुतालिक बैनुल अक़वामी इश्तराक के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आज 129 रुकन ममालिक शामिल हैं। पेरिस में COP21 के दौरान बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद के आगाज की मुश्तरका तौर पर सदारत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह इत्तेहाद शमसी तवानाई को किफायती, काबिल इन्हिसार और काबिल रसाई बनाने पर तवज्जो मरकूज करता है।
1: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
8: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बैन अलावामी शमसी इत्तेहाद के डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना ने कहा कि ISA वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन की अक्कासी करता है और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, रोजगार और तवानाई की सलामती के लिए मुल्कों को यकजा करने की भारत की सलाहियत का मजहर है। भारत की क्यादत में ISA का मकसद सिर्फ तवानाई तक रसाई को बढ़ाना नहीं बल्कि आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में नुमाया कमी लाना भी है। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
7: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हुकूमत के सरबरा के तौर पर अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने को एक सुनहरा और तारीखी दिन करार दिया। आज गुड़गांव में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में मुल्क में कई अहम काम अंजाम दिए गए हैं जिनमें दफा 370 की मनसूखी, नक्सलिज्म का खात्मा और मुल्क के बुनियादी ढांचे को आला तरीन सतह तक पहुंचाना शामिल हैं।
1: आज गरीब से गरीब घर में जन्मे हुए एक व्यक्ति ने अपने गुणों के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर और करोड़ों करोड़ों लोगों को साथ में लेकर लगातार 25 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है और वो व्यक्ति है हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी।
7: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करने वाले आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। नाइजीरिया, डोमिनिका, बेल्जियम, फिलीपींस, भूटान और बोत्सवाना के रहनुमाओं की जानिब से मौसूल होने वाले पैगामात का जवाब देते हुए वजीर आजम मोदी ने इन मुल्कों के साथ भारत की शराकत दारी और ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पिछले एक दो दिन के दौरान बहरे अस्वद के इलाके में होने वाले सिलसिलावार हमलों की मजम्मत की है। नई दिल्ली में सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमलों से कमर्शियल जहाजरानी को खतरा लाहिक होता है और समंदरी शोबे से वाबस्ता अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ती हैं।
9: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे, उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
7: कैप्टन स्मिथ मच्छर की सेहत के बारे में वजारत खारिजा के तर्जुमान ने बताया कि वो इस वक्त अबू जहबी में हैं और तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। उनकी सेहत में मुसलसल बेहतरी आ रही है। रूस की फौज में मौजूद भारतीय शहरियों के बारे में तर्जुमान ने बताया कि दस्तियाब मालूमात के मुताबिक 259 भारतीय शहरियों को रूस की मुसल्ला अफवाज में भर्ती किया गया है। भारत की कोशिशों के नतीजे में इनमें से 139 भारतीय शहरियों को कबल अज वक्त फौज से फारिग कराया जा चुका है। रूस ने यूक्रेन तनाजे को हल करने के लिए भारत की आमादगी के लिए उसके तई तशक्कुर का इजहार किया है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को इस बहरान के पुरमन हल के लिए भारत की तजावीज पेश करने की आमादगी की सताइश करता है। उन्होंने ये बात मॉस्को में भारत की जानिब से यूक्रेन तनाजे के पुरमन हल के लिए 3 हिस्सों पर मुश्तमिल तजवीज पेश करने से मुतालिक मीडिया के सवालों के जवाब में कही। उनका ये बयान यूक्रेन के वजीर खारिजा एंद्री सिबिहा की जानिब से भारत की तजवीज को 4 पेशकशों में वसी तर बताने के बाद सामने आया है। भारत के अलावा तुर्की, मिस्र और अमरीका ने तजावीज पेश की है। रूस यूक्रेन जंग अब अपने 5वें साल में है और इसकी वजह से हजारों शहरी हलाक जबकि लाखों बेघर हुए हैं। भारत ने मुसलसल तनाजे के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है। तकरीबन 3.5 साल के वक्फे के बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आज महंगाई में इजाफे को रोकने के लिए अपनी अहम पॉलिसी शरह में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। ये फैसला आलमी और जुग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के दरमियान किया गया है। दो माही मालियाती पॉलिसी का ऐलान करते हुए RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि माली पॉलिसी कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे का फैसला किया है। RBI ने पिछली मरतबा फरवरी 2023 में रेपो रेट में इजाफा किया था जब इसमें 0.25% का इजाफा करके इसे 6.5% किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये कांग्रेस टेलीमुवासलात, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी इख्तिरा के शोबों में भारत की नुमाया पेशरफ्त को उजागर करेगी। इसके अलावा ये आलमी सतह पर तआवुन, सरमायाकारी और मालूमात के इश्तराक के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करेगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का मौजू है लामहदूद तौसी, जो भारत की डिजिटल जिद्दत तराजी, अगले सिलसिले की कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी पर मबनी इकतसादी तरक्की की बढ़ती सलाहियतों की अक्कासी करता है। चार रोजा ये प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है और इसे टेलीमुवासलात का महकमा और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुश्तरका तौर पर मुनक्किद कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 से कबल आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ के मकाम पर मोबाइल के मुवासलाती निजाम से मुतालिक एसोसिएशन GSMA के बोर्ड मेंबरान से बातचीत की। GSMA एक आलमी तंजीम है जो मोबाइल के इको निजाम को यकजा करती है, मोबाइल ऑपरेटर्स और मोबाइल इको निजाम और इससे मुंसलिक सनतों की तमाम तंजीमों की नुमाइंदगी करती है। बातचीत के दौरान वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक को सबकी शमूलियत और पायदार तरक्की का एक आला बनना होगा। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते हुए चैलेंज का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस मसले के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी हल तलाश करने की जरूरत है। साल 2026 का केमिस्ट्री का नोबेल इनाम फ्रांस के केमिस्ट हेनरी बी कैगन और जापानी केमिस्ट केन्सो साई को नामियाती केमिस्ट्री में गैर खत्ती असरात और ऑटोकैटालिसिस से मुतालिक उनकी अहम दरियाफ्तों के लिए दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आज कहा कि कैगन और साई ने एक सदी पुराने इस मामले को हल किया है कि मॉलिक्यूलर अदम तवाजुन, जिसे होमोकायरैलिटी कहा जाता है, फितरत में खुद ब खुद किस तरह पैदा हो सकता है। नोबेल कमेटी के मुताबिक केमिस्ट रिवायती तौर पर तजर्बागाह में मॉलिक्यूल्स की तैयारी के दौरान एक दूसरे के आईने में नजर आने वाली शक्लों यानी अक्स नुमा मॉलिक्यूल्स की बराबर मकदार हासिल करते हैं। दोनों नोबेल इनाम याफ्ता अफराद 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर की इनामी रकम मुश्तरका तौर पर हासिल करेंगे। भारत के बराह रास्त नशर होने वाली तकारीब के शोबे में गुज़श्ता साल 44% से जायद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुज़श्ता साल मुल्क भर में ऐसी 34,000 तकारीब मुनक़िद की गयी। इत्तला'आत व नशरियात की वजारत में सेक्रेटरी चंचल कुमार ने आज नई दिल्ली में मुनक़िदा बराह रास्त नशर होने वाली तकारीब की तरक्की से मुतालिक सेल की 5वीं मीटिंग में अपने खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त ये शोबा 1 करोड़ से जायद अफराद के रोजगार का जरिया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक और तेज हवाओं के चलने का इम्कान है। पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियन पैरा गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में परचम बरदार की हैसियत से भारतीय खिलाड़ियों की कयादत करेंगे। एशियन पैरा गेम्स जापान के आईची नागोया में 18 से 24 अक्टूबर तक मुनक़िद होंगे। इसमें एशिया भर से खिलाड़ी खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने साल 2014 से 2023 के दरमियान सोने के 2 और कांसे के 4 तमगों समेत कुल 6 एशियन पैरा गेम्स तमगे जीते हैं। और पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने 2018 से 2023 के दरमियान चांदी का 1 और कांसे का 1 तमगा समेत कुल 2 एशियन पैरा गेम्स तमगे हासिल किए हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नजरिया साज पॉलिसियों और सख्त मेहनत के जरिए साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अपना ख्वाब जरूर पूरा करेगा। उन्होंने हुकूमत के सरबराह के तौर पर अवामी खिदमत के 25 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं। भारत ने बहरे अस्वद खित्ते में कमर्शियल जहाजरानी पर होने वाले हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि वो कयाम अमन के लिए रूस और यूक्रेन के साथ राबते में है। रूस ने यूक्रेन तनाजे को हल करने में तआवुन के लिए भारत की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। RBI ने मौजूदा माली बरस के लिए GDP की शरह तरक्की 7.1% रहने का तखमीना लगाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे और पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भाविना पटेल इस माह के आखिर में जापान में शुरू होने वाले एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय दस्ते के परचम बरदार होंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
10: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवां बैठी मिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

जबकि संगीत तकरीबन चोर में बदलता जा रहा है। गजलों का वो सुनहरा दौर, गजलों की वो रोशन महफिलें बार बार याद आती हैं। हमारे जहन में अक्सर ये सवाल उठता है, वो शम्मा क्यों मद्धम पड़ गई।

भीतर वो सब्र नहीं रहा जो गजल सुनने के लिए लाजमी है। आइए आज के इन लम्हों को यादगार बना दें अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर की याद से।

0: जो हम।
1: अख्तरी भाई फैजाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में हुआ था। बचपन से संगीत की तरफ रुझान था, परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन चाचा ने साथ दिया। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सरंगी के उस्ताद ईमान खां और अता मोहम्मद खां से संगीत की शुरुआती तालीम ली। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बचपन की एक बहुत ही यादगार घटना है। उन दिनों अख्तरी बाई सही सुर नहीं लगा पाती थीं। उनके गुरु ने इसके बारे में कई बार सिखाया और जब वो सीख नहीं पाई तो डांट दिया। उसके बाद बेगम अख्तर रोने लगी और कहा, हमसे नहीं बनता नाना जी, मैं गाना नहीं सीख पाऊंगी। तब उनके उस्ताद ने कहा, बिटिया इतने में हार मान लिए? नहीं बिट्टू, ऐसे हिम्मत नहीं हारते मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ। उनकी ये बात सुनकर बेगम अख्तर ने रियाज शुरू किया और सही सुर लगाए।

तीस के दशक में जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो बेगम अख्तर के सामने कोलकाता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने अपनी फिल्मों में अभिनय की पेशकश की। इस तरह सन 1933 में बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद मशहूर निर्देशक महबूब खान ने उन्हें सन 1942 में आई अपनी फिल्म रोटी की नायिका बनाया। इस फिल्म में चंद्रमोहन और शेख मुख्तार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था और फिल्म के तकरीबन 6 गीत बेगम अख्तर की आवाज में रिकॉर्ड किए।

1945 में जब बेगम अख्तर की शोहरत अपने शबाब पर थी, तब उन्होंने इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया और अख्तरी बाई फैजाबादी बेगम अख्तर बन गईं। वो गायकी छोड़कर पर्दा नशी हो गईं। उन दिनों में वो बीमार रहने लगीं। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी की एक वजह ये है कि वो अपने पहले प्यार यानी गायकी से दूर हैं और उनके शौहर ने उन्हें प्रेरित किया। सन 1949 में एक बार फिर वो गायकी की दुनिया में लौटी और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाना गाने लगी।

रेडियो में गाना शुरू हुआ तो बेगम अख्तर संगीत सम्मेलनों में जाने लगी। इस बीच फिल्मों में भी वापसी हुई। महान संगीतकार मदन मोहन के कहने पर बेगम अख्तर ने 1953 में प्रदर्शित फिल्म दाना पानी का एक गाना गाया।

सन 1954 में उन्होंने फिल्म एहसान का एक गाना गाया। सन 1958 में सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में भी उन्होंने गाना गाया।

बेगम अख्तर मदन मोहन को तब से जानती थीं, जब वो लखनऊ रेडियो स्टेशन पर थे। बेगम अख्तर दिल्ली आई हुई थीं और उन्होंने रेडियो पर मदन मोहन का एक गाना सुना। फिर आधी रात को बेगम अख्तर ने मदन मोहन को फोन किया और कहा कि वही गाना सुनाओ, कदर जानी ना। मदन मोहन ने फोन पर ही गजलों की रानी बेगम अख्तर को यह गाना सुनाया और करीब 22 मिनट तक मदन मोहन फोन पर ट्रंक कॉल के जमाने में बार बार ये गाना सुनवाते रहे और बेगम अख्तर सुनती रही।

0: बेगम अख्तर की सबसे बड़ी खासियत है उनका क्लासिकी गजलों को गाना और क्लासिकी अंदाज में गाना। गजलों की शुद्ध दुनिया को उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा रखा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, नए साजों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। बेगम अख्तर गजलों की दुनिया की एक क्लासिकी आवाज के तौर पर हमेशा बहुत इज्जत के साथ याद की जाती हैं।
1: बदलते हुए जमाने ने जहां हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहां मुसीकी ने भी नई कदरों की कदर की है। मैं नएपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहां तक आज के फनकार और मुसीकार नएपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

0: भारत सरकार ने बेगम अख्तर को सन 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 1972 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला और सन 1975 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: गजल में एक ऐसी कैफियत है और अच्छे शोरा की गजलों में तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुन के तबीयत खुश हो जाती है। तो बताइए ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है और गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा कि अगर वो उस अंदाज से गाई जाए जिस तरह गजल गाया करते थे तो मेरा ख्याल है कि इंसान बगैर रोए तो नहीं उठना चाहिए उसको।

बेगम अख्तर की आवाज का जादू अपने शबाब पर था। उन्होंने गजलों की दुनिया को रोशन कर रखा था, पर तभी 30 अक्टूबर 1974 को अचानक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गजलों की दुनिया की एक शम्मा हमेशा के लिए बुझ गई, लेकिन शुक्रगुजार हैं उन रिकॉर्ड्स का जिनके जरिए बेगम अख्तर की आवाज को हमने संजो कर रखा।

ये था बेगम अख्तर की याद में हमारा विशेष कार्यक्रम। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आज के फनकार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए, हम इस सफ़र में लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। हम आकाशवाणी के लालटेनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अभी आपने सुना कार्यक्रम की शुरुआत अपने की बेनी दयाल की आवाज़ में, अभिजीत भट्टाचार्य श्रेया घोषाल की आवाज़ में, राजीव वर्मा के संगीत, ललित पंडित के संगीत, राजीव वर्मा के बोल हैं। फिल्म का नाम था बेशरम। और अब आइए सुनते हैं बेनी दयाल की आवाज़ में, प्रीतम के बोल संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:29 और 40 सेकेंड हो चुके हैं। हम कुछ ही पलों में लेकर हाजिर हैं श्रोताओं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही रंग एक ही फन।

अभी आपने सुना कार्यक्रम के आरंभ में पाकीज़ा फिल्म के इस गाने को लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलाम मोहम्मद के बोल थे और मजरू संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के बोल। आप सुन रहे हैं एक ही फनकार एक रंग फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज मीना कुमारी के गाने से आज की इस महफिल को हमने सजाया।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग एक ही फनकार के आज ही खूबसूरत महफिल को हमने सजाया है हमारे ट्रेजरी क्वीन मीना कुमारी के सुनहरे गानों के साथ। इसके पहले आपने सुना फिल्म साहेब बीबी और गुलाम के खूबसूरत से गाने को गीता दत्त की आवाज़ में, हेमंत कुमार के संगीत और शकील विद्वानी के बोलते। और अब आइए सुनते हैं दिल एक मंदिर का भी आपने सुना गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, शंकर जयकिशन के संगीत और शैलेंद्र के बोल थे।

अभी आपने सुना भींगी रात। इस फिल्म के गाने को लता मंगेशकर की आवाज़ में, रोशन के संगीत मजरू सुल्तानपुरी के बोल, और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत में फिल्म यहूदी के इस खूबसूरत से नगमे को।

रोशन के संगीत मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं। फिल्म आरती के इस गाने के साथ ही आज के खूबसूरत सफ़र को यहीं हम थामते हैं। रात्रि 11 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में हिंदी समाचार और 11:05 में अंग्रेजी समाचार के लिए।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यही एक रंग आज के फनकार यही समाप्त होता है। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।